0: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में सुबह के 7 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 7 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।
1: Yeah, I'm gonna get you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 8 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना and it's 9 AM in India. Keep listening to रेडियो गाना. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। यू आर लिसनिंग टू रेडियो गाना एंड इट्स 10 AM इन इंडिया। कीप लिसनिंग टू रेडियो गाना। थैंक यू।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं वर्ड मस्ती आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में सुनिए 1960 से लेकर 1985 तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।
1: गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रेडियो हॉटस्टार के मेरे प्यारे प्यारे दीवाने और दीवानियों को गुड मॉर्निंग, एंड मैं हूं आपका रेडियो होस्ट एंड दोस्त अमन। आ चुका हूँ लेकर आज का वर्ड मस्ती, और आज के वर्ड मस्ती के जो शब्द हैं बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। वह है दिन रात, महीना साल, सुबह शाम, गोरा काला, वक्त घड़ी, नींद ख्वाब, सूरज चांद, आजकल और बात मुलाकात, मिलना बिछड़ना। इन शब्दों से गाने भेजने हैं आपको, और गाने की डिमांड करने से पहले आप लिस्ट को जरूर चेक कर लेंगे। जिस गाने की डिमांड आ चुकी है उसे न भेजेंगे प्लीज। एक आदमी एक ही गाने को एक ही गाने की डिमांड कर सकता है, ओके। और ये कोशिश करना है कि अधिक से अधिक, हाँ बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि तीन तीन गाने भेजने हैं। नहीं नहीं नहीं, तीन गाने की डिमांड नहीं करनी, आपको एक ही गाने की डिमांड करती है। अगर वो गाना यानी प्ले अगर प्ले हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा गाना फिर दोबारा भेज सकते हैं, ये नियम चलता रहेगा, ओके। ऐसा नहीं कि अगर आपका गाना प्ले नहीं होता है तो आप निराश हो जाएंगे, भाई इन शब्द से तो मेरा गाना निकल गया। देखिए बहुत सारे गाने आएंगे, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अधिक मेरी कोशिश होगी कि यानी कि कम से कम तो वहाँ तीन गाने प्ले हो, क्योंकि तीन गाने में तो उसका काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई गाना नहीं आया होता है मैंने किन्हीं शब्दों पर, तो वो किसी और भी शब्द पर गाना प्ले हो सकता है, इतना ख्याल रखेंगे आप। लेकिन हर शब्द से कम तो तीन गाने जरूर प्ले होने वाले हैं। तो अब आप शामिल हो जाइए जल्दी से जल्दी और फटाफट भेजना शुरू कर दीजिए अपने डिमांड को रेडियो हॉटस्टार के एप्लीकेशन में जाकर सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से। फिलहाल मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए, आते हैं इस गाने के बाद आप सभी का वेलकम करने।

0: कुछ बिल्कुल आजकल कुछ याद नहीं रहता भाई, क्या करें। वैसे बहुत से दोस्त जुड़ते जा रहे हैं, सभी का वेलकम करते हैं। आज सबसे पहले जुड़ने वाले हैं हमारे कौन से साहब हैं, एमडी फैज आलम जी। अच्छा, बहुत बहुत वेलकम एमडी फैज आलम जी। और मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। साथ ही साथ आरिफ सिंधी जी, बहुत बहुत वेलकम है गांधीनगर गुजरात से। अनिल कश्यप जी जुड़ चुके हैं छोटपुर सिवान से। और राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। साथ ही साथ नाहिद अंसारी जी, वालेकुम सलाम, वेलकम है आपका भी। अकबर खान जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और सर्वजीत शेट्टी जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और नीलेश वीरोकार जी, वेलकम है आपका भी। साथ ही साथ ये क्या कहते हैं सर्वेश भगत जी,
1: ये अमन सर जी, नमस्कार जी,
0: नमस्कार
1: है। और हमारा गाना और अशोक भाई का गाना एक ही गाना है, दोनों आदमी का मिलीजुली फरमाइश में।
0: अच्छा अच्छा,
1: आप चला दीजिएगा सर।
0: बिल्कुल चला देंगे,
1: सर्वेश भगत बोल रहे हैं। धन्यवाद सर।
0: ओके जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल चला देंगे, आप दोनों का ही गाना चलाएंगे। सबसे पहले टेंशन मत लीजिए। ज्योति खड़बड़ी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और अभी अच्छा, ज्योति जी लिखते हैं कि नंबर सॉन्ग, अभी नंबर सॉन्ग नहीं बजना है। नंबर सॉन्ग के लिए दोपहर 2 बजे से लेकर यानी 3 बजे के बीच फरमाइश करनी है। चाहे तो लाइव शो में भी आप अपनी डिमांड को भेज सकते हैं। लेकिन नंबर सॉन्ग का मतलब क्या हुआ जी, मैं बता रहा हूँ। नंबर सॉन्ग ऐसे गाने जिसमें नंबर आए, जैसे 1 2 3 4 प्यार चाहिए कितनी बार, 5 6 7 8 9 10 बस बस, समझ गए ना। या बता मुझको

है तू, डू यू लव मी, यस आई लव यू, ये मतलब कहने का मतलब के ऐसे गाने हो जिसमें नंबर हो, है ना, नंबर वाले गाने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 समझ रहे ना, ऐसे कोई भी मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, वो चाहे वो 100 हो, चाहे 1 to 10 हो या 1 to 100, मतलब कुछ भी कोई भी नंबर उस गाने में आना चाहिए। जैसे एक दिल है, मतलब यानी कि तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, एक दिल है, एक इसमें नंबर आ रहा है ना, वो एक ना एक दिल है, वो हो जाएगा। ओके, तो चलिए फिलहाल अभी मैं प्रोग्राम का आगाज करता हूँ और सबसे पहले सर्वेश भगत जी और अशोक देशमुख जी के गाने को मैं प्ले करना चाहता हूँ, तो इनके ऑडियो को सुनवा दूं, मैं सुनवाता हूँ, नहीं ऑडियो नहीं है, चलिए सीधे गाना प्ले करता हूँ सुबह से लेकर शाम तक। और भाई मुझे प्यार करो, मुझे भी प्यार करो भाई, कोई इसमें अशोक देशमुख जी भी शामिल है और सर्वेश भगत।

ये जरूरी नहीं कि एक गाने में यानी सुबह भी हो शाम भी हो, यानी दोनों में कोई हो सकता है, या तो सुबह भी भेज सकते हैं शाम भी भेज सकते हैं। मेरे कहने मतलब दो शब्द दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक शब्द पे गाने होने चाहिए।

0: ये मतलब सुबह पर बहुत ही प्यारा गाना है और इसे भेजा है हमारे रिस्पेक्टेड हनीफ सर जी ने। बहुत बहुत वेलकम है। और संजय पटेल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और अंचल कुमार जी लिखते हैं हम तो 9 बजे से सुन रहे हैं, बहुत बहुत वेलकम है अंचल कुमार जी आपका भी। और विजय राजी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। साथ ही साथ सुनीता गोग जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और ये क्या कहते हैं सुन लेते हैं।
1: जी अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद, थैंक यू सर, हम दोनों भाई का फरमाइश आप शामिल कर दिए, धन्यवाद सर।
0: ओके जी। और नीलेश मेरोकार जी यहाँ नहीं भेजना, सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेजना था, फिलहाल हनी सर जी ने भेज दिया है, बहुत ही प्यारा गाना। आज सुबह जब

बिल्कुल तूने मेरा नाम लिया है और तूने मुझे याद किया है बिल्कुल। और अगर जब तक क्या ही कहूँ, मैं तुम्हारा नाम नहीं लेता हूँ तो और तुमसे बात नहीं करता हूँ। ओ माय गॉड, मेरी तो सुबह होती नहीं है यार, मैं क्या करूँ। ओ माय गॉड, फिलहाल अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो प्ले करने वाला हूँ, मुझे संजय पटेल जी ने सबसे पहले भेज दिया है, आजा शाम होने आई। ओ हो, चलिए इस गाने का आप ये लुत्फ उठाइए, फिलहाल आते हैं इस गाने के बाद तो फीडबैक शामिल करते हैं। और अब बता दूं कि यानी कि सुबह शाम का कोटा फुल हो गया है, अब बाकी है दिन रात महीना साल गोरा काला वक्त घड़ी नींद ख्वाब सूरज चांद आजकल बात मुलाकात मिलना बिछड़ना।

वेलकम बैक। और बहुत सारे दोस्तों के फीडबैक भी आने शुरू हो चुके हैं। और यहाँ पे सैयद यूनुस जी लिखते हैं कि अशोक देशमुख जी सरोज भगत जी की मिली जुली फरमाइश मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। और अकबर खान जी लिखते हैं कि बहुत मजा आ रहा है आज तो सुबह सुबह जब मैं जगह ये वाला गाना सुनकर तो सच में मजा आ गया है। और नाहिद जी लिखते हैं कि सरोज भगत जी और आपकी पसंद बेहतरीन लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। एंड रामकेश जी लिखते हैं कि अमन जी गुड मॉर्निंग, जी जी गुड मॉर्निंग, वेलकम है आपका भी। और मोहम्मद कौशल नियाजी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी।

मीना कुमारी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और ओके, और यहाँ पे अभिषेक तिवारी जी भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम। इसी बात पर जो अगला गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, राजेश कुमार जी का, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे, बिल्कुल देख लेना भाई, देख लेना। ओके, तो राजेश कुमार जी, एंजॉय द ट्रैक, दिन महीने साल गुजरते जाएंगे। आप गाने पहले होंगे दिन वाले, मतलब दिन और रात वाले।

आपके तो फीडबैक भी आए हो भाई राम के जी, लिखते हैं कि बहुत ही शानदार पसंद है भाई राजेश जी। और यहाँ पे ये लिखते हैं, क्या नाम है, देवराज कुमार जी जुड़ चुके हैं रेशम नगर भगैया से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं देवराज जी। और इनके बाद है विजय राज जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो भी करना है वो सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेजना ही है। ओके, तो आपको सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से ही भेजना पड़ेगा। और मोहम्मद कौशल याजी जी लिखते हैं कि वेरी नाइस सॉन्ग है जी, थैंक यू सो मच। राजेश कुमार लिखते हैं कि थैंक यू सो मच अमन जी। और मीना जी लिखते हैं कि यही सॉन्ग सुनना, अच्छा तो उधर भेजिए, कहाँ, सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से। अगला गाना मैं प्ले कर रहा हूँ जिसकी डिमांड है सुभाष तिवारी जी का है। तो सुभाष तिवारी जी, Enjoy the track, साल के 12 महीने जी, बिल्कुल। एक गाना और प्ले होगा, वो साल महीना या साल जिसमें भी भेजेंगे।

एक गाना मुझे चाहिए महीना या साल पर। और जिनकी फरमाइश पूरी हो चुकी है वो नहीं भेजेंगे, जिनकी नहीं हुई है वो भेजेंगे। जल्दी डिमांड करें सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से।

0: ओके, और एक फुटबॉल गायक मैं शामिल करता हूँ और गाना भी आ चुका है मेरे पास।
1: थैंक यू सर मेरा गाना प्ले करने के लिए। सर हम गाने की रिक्वेस्ट कितनी बार कर सकते हैं?
0: हाँ, एक बार ही कर सकती है क्योंकि सभी को मौका देना चाहिए ना, इसीलिए। और मैं बता दूं कि अब मेरे पास आ चुका है 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है, कल भी रहेगा। बिल्कुल भाई, एंजॉय कीजिए रितु जी।

बिल्कुल रहेगा जी, एकदम 100% रहेगा। जब तक दिल, मतलब क्या बोलते हैं, जब तक जान है तब तक रहेगा, है ना। और 100 साल जितने साल तक। वैसे मैं बता दूं कि बहुत सारे फीडबैक भी आ गए हैं। जी आपका मैसेज मेरे पास आया हुआ है, टेंशन मत लीजिए, आपका गाना जरूर प्ले होगा। एमडी परवेज जी लिखते हैं कि प्रोग्राम अच्छा चल रहा है अमन जी। मैं परवेज आलम जी, बहुत बहुत वेलकम है। नाहिद जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत ये फरमाइश चल रही है, थैंक

इसी बात पर आरिफ सिंधी जी का जो यानी कि पसंद है, जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे, बिल्कुल वही बात करेंगे। तुम दिन को दिन कहोगे तो दिन कहेंगे, रात कहेंगे, जो भी कहेंगे। भाई सुनिए, इंजॉय कीजिए।

0: को।
1: बिल्कुल भाई, जो तुम कहोगे वही बात करेंगे, अपनी मन से कुछ भी नहीं कहेंगे, फीडबैक शामिल करते हैं।
0: सोसाइटी हिली,
1: अच्छा
0: मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है।

0: प्यार करे
1: सब लिख कर रखे हैं
0: आज सुबह जब मैं
1: लग रहा है
0: इन महीने साल गुजरते जाएंगे
1: जी बिल्कुल गुजरते जाएंगे।
2: बहुत ही शानदार गीत चल रहे हैं तो सुनते रहे रेडियो होस्ट चार्ज जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरवजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
1: ओके जी, और यहाँ पे रवि मौर्य जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और कौशल नियाजी जी लिखते हैं वेरी नाइस सॉन्ग है। आरिफ सिंधी जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी। और मिशाल अंगा जी जुड़ चुके हैं। इसी बात पे अगला जो गाना है डिमांड है अशोक पाल जी का कि सारा सारा दिन तुम काम करोगे प्यार कर, अरे रात में करेंगे ना।

बिल्कुल, और यहाँ पे मोहम्मद कौशल नियाजी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाने की फरमाइश चल रही है, और अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो बहुत ही प्यारा है वो भी, और जिसे लेकर आए हुए हैं इनकी डिमांड सैयद यूनुस जी ने किया है कि रात को आऊंगा मैं, तुझे ले जाऊंगा मैं, और मुझसे शादी करोगी। बिल्कुल, इंजॉय द ट्रैक, मुझसे शादी करोगी।

जो मेरे पास शब्द बचे हुए हैं वो है गोरा और काला, मतलब गोरा का भी गाना भेज सकते हैं और काला पर भी, कोई भी यानी कि काला शब्द पर भी गाना भेज सकते हैं, मतलब गोरा और काला है। और वक्त पर भेज सकते हैं अलग, घड़ी पर भेज सकते हैं अलग, नींद पर अलग भेज सकते हैं और ख्वाब पर अलग भेज सकते हैं, सूरज पर अलग भेज सकते हैं, चांद पर अलग भेज सकते हैं, आज पर भेज सकते हैं, कल पे भेज सकते हैं, बात पे भेज सकते हैं, मुलाकात पे भेज सकते हैं, मिलना पे भेज सकते हैं और बिछड़ना पर। मतलब ये गोरा काला, वक्त, घड़ी, नींद, ख्वाब, सूरज, चांद, आजकल, बात, मुलाकात,

0: मुझसे शादी करोगे। देवराज जी कहते की सैयद यूनुस जी का गाना मुझे बहुत पसंद आया है, और ये क्या कहते हैं सैयद?
1: थैंक यू आरजे अमन सर जी, मेरा गीत प्ले करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और आज का शो एकदम बहुत बेहतरीन चल रहा है सर जी, ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे। थैंक यू आरजे अमन सर जी,
0: वेलकम जी, और नाही दिल से सुपर ऑसम फरमाइश, थैंक यू सो मच सैयद यूनुस जी। और बता दूं के नाजिम जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो अनिल कश्यप जी का है, आजकल की लड़कियां कमाल करती हैं। ओह सच में का, एंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल, लेकिन अगला जो मैं ट्रैक प्ले करने वाला हूँ वो कुंता बिनी जी का आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पे, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई है, होने दीजिए भाई। लेकिन फीडबैक भी आई हुई है, लेकिन फीडबैक इस गाने के बाद।

बिल्कुल होने दे, कोई बात नहीं। फिलहाल मेरे पास कश्यप जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग एंड थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग दिस सॉन्ग। एंड यहाँ पे रोहित कुमार लिखते हैं कि गुड आफ्टरनून अमन जी, गुड आफ्टरनून जी, वेलकम है आपका भी। और कपूर चंद जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, वेलकम है आपका भी। और नहीं जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल फरमाइश है, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड यहाँ पे नाजिम जी लिखते हैं ऑसम सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कुंता बेनी जी गजल लिखते हैं कि कुंता बेनी जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। और कुंता जी लिखते हैं थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो हमारे यानी परवेज आलम जी का, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, वाह क्या बात है, एंजॉय द ट्रैक।

बात पर जो अगला मैं गाना स्पिन प्ले करने वाला हूँ, इसकी डिमांड आई है सर्वजीत सेठी जी की, और सुनना चाहते हैं बाजीगर का वो प्यारा सा नगमा जो मुझे बेहद पसंद है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग सर्वजीत सेठी जी, एंजॉय द ट्रैक समझ कर चांद जिसको। और ये गाना तो समझिए कि

बिल्कुल बहुत अनमोल है, वैसे फीडबैक भी अनमोल है आप सभी के। नाजिन जी लिखते हैं कि वॉसम सॉन्ग सुनने को मिल रहा है, मजा आ रहा है सुन के। कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल फरमाइश सरोजीत जी की, और पूजा भास्कर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और साथ ही साथ यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि सरोजीत जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है, और नाही जी लिखते हैं कि सरोजीत जी का पसंद मुझे क्या बताएं। वैसे अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला वो कपूर चंद जी का है, सूरज हुआ मध्यम, सुनवा दिया सूरज हुआ मध्यम।

बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे कपूर चंद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन सर जी गाना मेरा प्ले करने के लिए। एंड यहाँ पे कुंता जी लिखते हैं कि बहुत ही शानदार गाना प्ले हो रहा है। और यहाँ पे गजानंद जी लिखते हैं कि सूरज हुआ मध्यम, ये कपूर चंद जी की फरमाइश बहुत ही शानदार रही है। इसी बात पर अगला जो गाना मुझे दिख रहा है विपिन श्रीवास्तव जी का, ये चांद कोई दीवाना है सच में का, इंजॉय की।

अब जो जो गाने शामिल होने वाले हैं वो गोरा काला पर होगा, वक्त घड़ी पर, नींद ख्वाब पर, और बात बात और मुलाकात है, मिलना बिछड़ना, इन इन सब पर शामिल।

0: बिल्कुल, ये चांद कोई दीवाना है, आशिक पुराना है सच में का। वैसे मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं यहाँ पे, सर्वजीत जी का कहते हैं, सुन लेते हैं।
1: धन्यवाद अमन सर जी, आपने मेरा गीत चलाया और जिन्होंने मेरे गाने पर फीडबैक दिया उनका भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है और सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, तो सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे। मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
0: धन्यवाद जी आपका भी। और मोहम्मद कौशल ने अजीत जी लिखते हैं बहुत बेहतरीन सॉन्ग है जी, बिल्कुल है। नहीं जी लिखते हैं कि वाओ सुपर अमेजिंग, पसंद के लिए थैंक यू सो मच मेरे दोस्त। और गजानंद जी लिखते हैं कि ये चांद कोई दीवाना है, बहुत ही अच्छा लगा ये सुपर उत्तम का शानदार गाना सुनकर। रवि मोहन लिखते हैं कि जी अब सर जी एक्चुअली उस वर्ड पे खत्म हो गया है, यानी कि वर्ड खत्म हो गया है, अभी जो वर्ड बाकी है वो मैं बताना चाहूंगा। गोरा काला और यानी कि वक्त घड़ी, नींद ख्वाब और है यानी बात मुलाकात, मिलना बिछड़ना, इन पर गाने प्ले होने वाले हैं ये फीडबैक।
2: अरजे अमन सर जी प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है,
0: थैंक यू।
2: सबसे टॉप गाना लगा हमको तेरी टेलीफोन का बिल अब मेरा हो गया, ये वाला गाना सुन के मन एकदम आनंद हो गया।
0: क्या बात है,
2: थैंक यू सर। जो भाई भी गाना सुना है, सभी भाई का गाना बहुत अच्छा अच्छा चल रहा है
0: जी, बिल्कुल
2: धन्यवाद सर।
0: ओके जी, और यहाँ पे अजय भगत लिखते हैं कि नहीं आज सर वो शब्द खत्म हो गया है, अब जो मैंने शब्द बताया उन पर भेज सकते हैं। अगला जो शब्द है वो नींद या ख्वाब पर मैं प्ले कर रहा हूँ। नाजिम जी का पहला गाना मुझे नींद ना आए, एंजॉय द ट्रैक।

और ना ही दिल्ली सिंह ऑसम एंड सुपर फरमाइश नाजिम जी की। इसी बात पे अगला जो डिमांड है वो कायनात जी की है। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं, और मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। क्या बात है।

वेलकम बैक। और मेरे पास फ्रेंड है नाहिद जी, वाओ बहुत ही सुपर सुपर सुपर फरमाइश, मजा आ गया सुन के इस गाने को। एंड यहाँ पे नाजिम दिल से थैंक यू सो मच अमन जी, मेरा गाना आपने आपने प्ले किया। देवराज जी लिखते हैं अमन जी ये प्रोग्राम सुपर सुपर चल रहा है, सभी दोस्तों को बसाने एक से बढ़कर एक चल रहे हैं। और कुंता जी लिखती है कि बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है ये, बिल्कुल। अगले जो डिमांड है वो राधे जी का, राधे राधे जी, राधे जी सुनाता हूँ आपके पसंद ये मैं गाना, मैं पहली बार सुनने वाला हूँ, पता नहीं कैसा है, सुनने के बाद मालूम चलेगा।

0: बिल्कुल बहुत प्यारा गाना मैंने पहली बार सुना, थैंक यू सो मच राधे जी। वैसे अगला जो डिमांड मैं प्ले करने वाला हूँ वो आरती तिवारी जी का है, गोरे रंग पे ना इतना गुमान कर, गोरा रंग दो दिन में ढल जाएगा, बिल्कुल ढलने वाला है जी, लेकिन एड के बाद।
1: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं वर्ड मस्ती आरजे अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में सुनिए 1960 से लेकर 1985 तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार के ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना, बजाते रहो दिल से।

और यहाँ पे राधे जी ने हमसे एक सवाल किया था कि अगर ये सॉन्ग आप अगर इन किसी को डेडिकेट करना चाहेंगे तो आप किन को डेडिकेट करना चाहेंगे। भाई जाहिर सी बात है मैं अपने सामने स्पेशल को डेडिकेट करूंगा।

अब जो यहाँ पे शब्द बचे हुए हैं वो है वक्त या घड़ी। वक्त या घड़ी पर भेज सकते हैं, या ये बात या मुलाकात पे भेज सकते हैं, और मिलना बिछड़ना पर भेज सकते हैं। इतने शब्द बाकी हैं बस।

बिल्कुल गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा और देवराज लिखते हैं कि आरती जी का गाना मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच आरती जी। और नाजिम जी लिखते हैं कि सुपर हिट सॉन्ग चल रहा है, सभी दोस्तों की पसंद। एक से बढ़कर गजानंद जी लिखते हैं कि दोस्त नीलेश बिरोकार जी का पसंद का गाना मुझे बहुत शानदार लगा है। और मनीषा शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और जी मैं आपको शब्द बताता हूँ एक बार फिर से। और कुंता बेनी जी लिखते हैं कि वाह ब्यूटीफुल फरमाइश चल रहा है, ओके। और नाहिद जी लिखते हैं कि वाह लाजवाब गाने की डिमांड है, ओके। रोहित कुमार लिखते हैं कि जी बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा, शायद आपका गाना आ भी सकता है। और ओके तो मैं बता दूं कि जो जो अभी बाकी शब्द वह है इन वक्त और घड़ी, यानी कि वक्त या घड़ी, इनमें से कोई भी हो सकता है। और उसके बाद है इन बात और मुलाकात, मैंने दोनों में से कोई भी हो सकता है, या तो बात हो सकता है या मुलाकात हो सकता है या दोनों भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। और मिलना बिछड़ना, ये यही शब्द बाकी है, बाकी सभी पर गाने हो चुके हैं। और इन सब पर सभी गाने यानी पूरे होने के बाद अगर समय रहा तो किसी भी शब्द पर गाने आप भेज सकते हैं और मैं जरूर प्ले करूंगा। लेकिन अगला जो गाने की डिमांड है, मुंडा गोरा रंग देख के दीवाना हो गया, अभिषेक तिवारी जी, इंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल इसी बात पर अब तो चलते हैं भाई, तुमसे मिलने को दिल करता है, तुम ही हो जिस पे जान, मतलब जो भी है, ये बीके पंत जी इस डिमांड को लेकर आए हुए हैं अभी अभी, तो सुनवा रहा हूँ, एंजॉय द ट्रैक, तुमसे मिलने को दिल करता है।

करेंगे और इसी बात पर अगला जो डिमांड है वो नाहिद अंसारी जी का मिले तुमसे बिछड़ के हम फ्रॉम सलामी मूवी का, ये मतलब क्या बताए, बहुत ही बेहतरीन ये नगमा है, एंजॉय द ट्रैक। अब दो शब्द बचे हुए हैं, वो है बात मुलाकात और वक्त घड़ी।

बिल्कुल मिले तुमसे बिछड़ के हम, मेरे साजन दुआ करना, बहुत ही प्यारा नगमा था ये। और यहाँ पे क्या नाम है, यानी कि प्रमोद कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम। लिखते हैं कि प्रोग्राम शानदार चल रहा है, मैं सुन रहा हूँ अच्छा। और यहाँ पे आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि आज के प्रोग्राम में अमन सर जी एक से बढ़कर एक गाने की डिमांड आई थी, सभी ने अपने बेस्ट बेस्ट गाने भेजे हैं। जी बिल्कुल, अभी तो बहुत सारे बाकी भी है ना। बीके पंच जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अमन सर जी, आपने मेरा गाने को प्ले किया। और नाही जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरे भी गाने को प्ले किया। और अजय भगत जी, अच्छा इंतजार कीजिए, हो जाएगा शायद, हो सकता है। रोहित कुमार जी लिखते हैं कि मिले तुमसे बिछड़ के हम, बहुत ही शानदार पसंद है। इसी बात पर मिलने वाला तो काम खत्म हो गया, अब चलते हैं अगले, यानी कि वक्त और घड़ी के पास। तो वक्त घड़ी के लिए मुझे वो बिंदिया जी का गाना मुझे दिख रहा है, तो बिंदिया जी अब गाना मैं आपका प्ले कर रहा हूँ, एंजॉय द ट्रेक हर घड़ी।

और इसी बात पर जो अगला जो गाना है उसकी डिमांड हमारे नाम है उनका, यानी कि नीरू जी ने किया हुआ है, ये वक्त ना खो जाए। बिल्कुल, मैं तुझमें समा जाऊँ, तुम मुझमें समा जाओ। इंजॉय द ट्रैक।

बिल्कुल इसी बात पर जो मैं अगला गाना प्ले करने वाला हूँ वो है इन विष्णु चंद्र जी का, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। और टेंशन मत दीजिए, जितने दोस्तों ने गाने की अपने डिमांड किया है, मैं कोशिश करूंगा उनके भी गाने को प्ले करने की।

और एक और मैं यानी कि यहाँ पे घड़ी पे गाना मैं प्ले कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से दोस्तों की ये डिमांड आई हुई है, जैसे कि ये मोहम्मद अली कौशल न्याजी जी हैं, अकबर खान जी हैं, तो इन सब के लिए भी ये गाना मैं थोड़ा सा प्ले करता हूँ।

वेलकम बैक। और नाजिम दिल से नाई जी का पसंद मुझे बहुत पसंद आया था, थैंक यू सो मच। सुनीता को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने मेरा फरमाइश को प्ले किया था। कुंता जी लिखते हैं सभी गाने बहुत ही शानदार लगे हैं, और नाई जी लिखते हैं लाजवाब फरमाइश चल रही है, थैंक यू सो मच। एंड ओके अब अगला जो गाना है वो है रवि मोहरे जी का है, और भी बहुत से दोस्त इसमें शामिल हो रहे हैं, जैसे कि उनका नाम मैं लेना चाहूंगा, एक और साहब है उनका अजय भगत जी और हमारे ये रवि मोहरे जी, दोनों की पसंद एक ही है, एक मुलाकात जरूरी है सर।

0: बिल्कुल, जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात तो जरूरी है ना, बहुत जरूरी होती है एक मुलाकात, और एक मुलाकात से हाय क्या सुकून मिलता होगा ना, है कि नहीं। फिलहाल अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ उसकी डिमांड आई है अशोक कुमार जी का। अशोक कुमार जी, आपका गाना मैंने प्ले किया, और इसके बाद से कुछ ऐसे जैसे गाने मैं प्ले करूंगा जिनका मतलब बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: अच्छा, गुड नाइट।

0: से ज्यादा
1: है
0: समझा है तुझको,
1: मोहब्बत से ज्यादा,
0: मोहब्बत से ज्यादा ये मैं जानता हूँ या दिल जानता है।

मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूं, मगर मेरे लिए तू वो है जिसके लिए मैं सांस

लेकिन मनीषा जी गाना तो बहुत ही प्यारा था, लेकिन इसमें मुझे वो शब्द नहीं मिले क्योंकि मैं नहीं सुन पाया था, इसीलिए कोई बात नहीं है। अगला गाना मैं प्ले करता हूँ जावेद जी का, हर घड़ी बदल रही है, तो इंजॉय द ट्रैक, कल होना होगा।

और अब जाते जाते एक पसंद मैं अपनी पसंद का भी सुनवा के जा रहा हूँ सभी दोस्तों के लिए, और अब मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं आज ही शाम 6:30 बजे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुनते रहें रेडियो हॉट स्टार जो दीवाना बना दे।

बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 11 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you. आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 PM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to रेडियो गाना।

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आप सभी की आज वंशिका। मैं हूं आप सभी की आज वंशिका और आ चुकी हूं आज के संडे स्पेशल शो पे, जिसका नाम है संडे मस्ती सिर्फ वीडियो गाना पे जो बना दे दीवाना। और मेरे साथ है आज परमार जी। नमस्ते।
1: नमस्कार नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार और सभी को तहे दिल से नमस्कार कहता हूँ मैं। और लेके आ गए हैं मैं और आरजे विश्का जी नया, आपको नया प्रोग्राम जो सिर्फ आप ही के लिए है। तो सभी दोस्तों को मैं यही कहूँगा कि आप अपनी पसंद के गाने, जितने भी आपके कोई भी गाना हो, किसी भी तरह का गाना हो, तो आप उसको सॉन्ग रिक्वेस्ट में भेज सकते हैं। और आज हम फिल्म से रिलेटेड बातें करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टेड बातें होंगी। कुछ ऐसी बातें हैं जिनका आपको भी नहीं पता और वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो सुनते रहिए रेडियो गाना पर।
0: जी बिल्कुल, सुनते रहिए रेडियो गाना पे। आप सभी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लिसनर्स आ चुके हैं मेरे पास, जैसे रणवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं और यहाँ पे राजेश जी जुड़ चुके हैं, बहुत सारे लिसनर्स हैं। आप सभी का वेलकम करती हूँ आज के स्पेशल शो जिसका नाम है संडे मस्ती में। और चलिए शुरुआत करते हैं आज परमार जी के एक प्यारे से गाने के साथ में। सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए आप सभी।

0: वाह, क्या गाना सुनाया पुमा जी आपने!
1: बिल्कुल बिल्कुल। वंशिका जी, शायद इस गाने की फिल्म का आपको भी नहीं पता होगा। इस फिल्म का नाम था काली टोपी लाल रुमाल,
0: काली टोपी लाल
1: लाल
0: रुमाल।
1: रुमाल। और
0: अच्छा,
1: ये 1959 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो बातें होती हैं फिल्मों की, और तो इस फिल्मों के बारे में कुछ और बातें मैं आपकी नॉलेज में लाना चाहूँगा और रोशनी डालूंगा कई बातों पर। तो मैं सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि फिल्मी इतिहास क्या है, फिल्म का इतिहास क्या है, कहाँ से शुरू हुई है फिल्में। तो बात है ये 19वीं सदी की, और उसके अंत में पेरिस में एक इंसान हुआ करते थे जिनका नाम था ल्यूमियर, लूमियर बंधु थे, ये दो तीन भाई थे। उन्होंने सबसे पहले सार्वजनिक फिल्म प्रदर्शित की थी और उस फिल्म को साइलेंट
0: मूवी का नाम दिया था।
1: दिया था। उसके बाद बोलती फिल्म और रंगीन सिनेमा का दौर शुरू हुआ। तो दोस्तों और वंशिका जी, आपको भी मैं बता दूं,
0: जी,
1: ये
0: बिल्कुल।
1: जो फिल्मों की शुरुआत हुई थी ये पेरिस में लुमियर बंधुओं ने की थी, और उसके बाद की सारी बातें मैं बताता हूँ आपको। और उसके बाद जो विश्व में जो सिनेमा की शुरुआत हुई वो 1890 यानी 1890 यानी 1890 के दशक में हुई,
0: जी,
1: और इसकी शुरुआत सबने लुमियर ब्रदर्स ने की थी। उसकी उनकी जो पहली फिल्म आई थी उसको वर्कर्स लीविंग द लुमियर फैक्ट्री थी। और 19 के दशक में थॉमस एडिसन के आविष्कारों में फिल्म निर्माण को नई तकनीक दी गई, और जल्द ही अमेरिका में हॉलीवुड स्टूडियो प्रणाली का उदय हुआ। तो ये तो कुछ स्टार्टिंग की जानकारियां हैं वंशिका जी, जो मैं सभी श्रोताओं को बताऊंगा, चाहूंगा और आप भी सुनिए। तो ये जो फिल्मों की बात है, थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। तो भारतीय सिनेमा का जो गोल्डन ईरा था यानी कि स्वर्ण युग था, वो 1913 यानी 1913 लेकर 1960 था। ये जो साइलेंट मूवी जिन्हें मूक फिल्में कहते थे, इनका भारत में पहली बार 7 जुलाई 1896 को बॉम्बे में दिखाया गया, और दादा साहेब फाल्के ने 1913 में पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। तो सबसे पहली जो साइलेंट मूवी थी वंशिका जी, वो थी राजा हरिश्चंद्र,
0: जी, बिल्कुल।
1: जो
0: सबसे
1: उन
0: वैसे मैं सबसे पहली जो साइलेंट मूवी थी, मेरे ख्याल से आला मारा थी वो।
1: नहीं ये मूक उद ये वो बोलने वाली मूवी है, ये हरिश्चंद्र थी।
0: अच्छा, जी, आला
1: हाँ
0: मारा मतलब सबसे पहली बोलने वाली मूवी थी।
1: जी हाँ जी, 1913 में बनी थी और फिल्म। और बोलती फिल्मों का दौर जो शुरू हुआ था, वो उसको डेट भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका डेट था, जो बोलती हुई फिल्में होती, 14 मार्च 1931 को अंद्रे श्री ईरानी द्वारा निर्देशित आलम आरा फिल्म को भारत की पहली बोलती
0: बोलती हुई फिल्म का
1: फिल्म
0: नाम दिया गया।
1: दिया गया। तो
0: जी
1: ये थी ये हमारी जो शुरुआत की दौर। और आप देखिए कि किसी श्रोता का अगर कोई गाना
0: जी
1: आया हो
0: बिल्कुल।
1: तो
0: गाने
1: बताइए।
0: आए हैं और फीडबैक आए हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं, फीडबैक से नजर डालते हैं। तो यहाँ पे आरी सिद्धि जी लिखते हैं, बहुत ही सदाबहार गाना सुनवाया परमा जी आपने, थैंक यू सो मच। और संदीप सुतार जी जुड़ चुके हैं, आज वंशिका जी, आज परमा जी आपके प्रोग्राम में हम जुड़ चुके हैं, वेलकम, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। रणवीर सिंह जी लिखते हैं, मुरादाबाद यूपी से, वंशिका मैम हम भी आपके कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, स्वागत है आपका भी। और आप सभी को कहना चाहूंगी, अगर आप चाहते हैं पार्टिसिपेट करना, अपना गाने सुनना चाहते हैं, तो आप फरमाइशें भेज सकते हैं सॉन्ग रिक्वेस्ट के मेथड से, और चाहे तो व्हाट्सएप से भी फरमाइश को भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर
1: और
0: रहेगा 8404841232, 8404841232।
1: बीच बीच में अगर समय मिला तो मेरे श्रोताओं, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कोई प्रश्न भी पूछता हूँ जिसका आप आंसर देंगे। अगर वो आंसर सटीक और ठीक हुआ तो वंशिका जी उनसे बात भी करेंगी और उनकी पसंद का कोई एक गाना भी सुनाएंगी। तो ये कभी कभी बीच में होगा, लग
0: ये बहुत रेयर
1: कंटिन्यूअसली।
0: है कि एक या दो बार होगा, ज्यादा से ज्यादा बार नहीं। और सर्वजीत सेठी जी का फीडबैक है, वो भी सुन लेते हैं, क्या कहते हैं। हाँ
2: वंशिका मैम और
0: जी,
2: परमार सर जी, आप दोनों को नमस्ते।
0: नमस्ते जी।
2: मैं
1: नमस्कार जी,
2: सरबजीत
1: नमस्कार।
2: सेठी फाजिल का पंजाब से, कैसे हैं आप परमार
1: अच्छी हो
2: सर
1: जी,
2: जी।
1: बहुत अच्छे हैं
2: वंशिका
1: सरोजी
2: मैम
1: जी,
2: आप कैसी हैं।
0: अच्छी हो जी।
2: हम भी अपने स्थान पर ठीक हैं, हम भी आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं। आपका ओपनिंग सॉन्ग बहुत ही शानदार लगा परमार सर जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया
2: वंशिका मैम। और परमार्सा जी बताइएगा कि सॉन्ग कहाँ पर भेजना है, एप्लीकेशन के माध्यम से भेजना है, सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से भेजना है या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है, बताइएगा।
0: जी बिल्कुल, आप जो फरमाइश भेजना चाहते हैं सॉन्ग रिक्वेस्ट के थ्रू भी भेज सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं। आपके लिए आज सारे द्वार ओपन है, आप जहाँ से चाहें वहाँ से फरमाइश को भेज सकते हैं। चाहे वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8404841232 से भेजिए, चाहे आप हमारे रेडियो हॉटस्टार एप्लीकेशन के मैसेज से भेजिए, या चाहे रेडियो हॉटस्टार एप्लीकेशन के सॉन्ग रिक्वेस्ट के मेथड से भेजिए, आप किसी भी तरीके से भेज सकते हैं। और हमारे पास एक गाना आ चुका है जो कि यहाँ भेजा है हमें, यहाँ पे किन्होंने बता देती हूँ, ये पसंद है गोपाल पाटीदार जी की, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, बिल्कुल देर नहीं होगी क्योंकि हम जल्दी उठ के आए हैं और जल्दी ही समय से जाएंगे, तो देर तो होनी ही नहीं है। तो सुनवा दिया, कहते हैं वंशिका जी परमार जी सबको डेडिकेट है, तो चलिए सुनवा दिया हीना मूवी का बहुत ही प्यारा गाना, एंजॉय कीजिए।

0: बातें चल रही थी फिल्मों की, फिल्मों के इतिहास के बारे में, तो मैं आपको वहां तक बता चुका था कि जब ये फिल्म आलम आरा आई, और ये हमारी बोलती हुई पहली फिल्म थी।
1: जी बिल्कुल, बोलती हुई पहली फिल्म थी और
0: हाँ,
1: बहुत ज्यादा फेमस हुई थी क्योंकि उस समय फिल्में कम आया करती थी, तो बहुत
0: कर बहुत
1: साल में
0: ज्यादा
1: एक
0: हुई
1: साल
0: थी,
1: क्या
0: और
1: दस या
0: लोगों को,
1: साल में एक
0: हाँ
1: फिल्म
0: जी,
1: आती
0: और
1: हुई थी।
0: वंशिका जी, लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ था कि ये कैसे हुआ, कैसे ये हुआ, कैसे फिल्में बोलती हैं, कैसे पर्दे पर आती हैं। और लोगों को तो ये भी आइडिया नहीं था कि कोई ये प्रोजेक्टर के थ्रू कुछ ऐसी फिल्में आती हैं। तो ये बात हो गई 1931 की, यानी 14 मार्च 1931 की, और ये आदर्शीर ईरानी द्वारा निर्मित थी फिल्म। और इसके बाद आते हैं हम स्वर्ण युग की तरफ। तो स्वर्ण युग जो फिल्मों का शुरू हुआ वो हुआ जी 1940 से लेकर 1960 के दशक में, और इसे भारतीय सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसमें बिमल राय, सत्यजीत रे और महमूद खान जैसे निर्देशकों ने, जैसे डायरेक्टर थे, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई। इसके बाद आई थी मसाला फिल्में, और मसाला फिल्मों का विकास हुआ 1970 में, और इसमें साम सलीम जावेद जी ने बनाई, और जिन्होंने अमिताभ बच्चन को एंग्री मैन के रूप में स्थापित किया। और 1990 और 2000 के दशक में रोमांस और पारिवारिक ड्रामों वाली बोल चल रहा, जिसमें बॉलीवुड की में विश्व में इस जो हमारा सिनेमा जगत था उसको लोकप्रिय बना दिया। तो यहीं तक, अभी आगे मैं बातें फिर करूंगा। तो वंशिका जी, देखिए किसी हमारे मित्र का,
1: बिल्कुल
0: दोस्त का।
1: बातें करते हैं, और जो आपने जानकारी बताई बहुत ही प्यारी लगी। और यहाँ पे बहुत सारे लिसनर जुड़ चुके हैं, जैसे कि अमीना खान जी जुड़ चुकी हैं, लिखती आदाब आरजे परमार जी, आरजे वंशिका जी, आदाब आदाब, स्वागत है
0: लाल जी,
1: आपका।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत।
1: और आरिफ सिद्दीकी लिखते हैं, बहुत ही लाजवाब ऑल टाइम हिट गाना सुनने को मिला है। और रवि मोहदे जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका, फीडबैक के साथ जुड़े हैं।
2: अमन सर जी, गुड इवनिंग।
1: अमन सर जी
2: मैं
1: कहाँ
2: रवि
1: से आ
2: मोहन,
1: गए
2: बैतूल
1: हो?
2: मध्य प्रदेश से। आज स्टार मूवी चॉइस में
1: ओके जी, ठीक है, आपने अमन जी की फरमाइश मेरी तरफ भेज दी है, कोई बात नहीं, वहां तक ट्रांसफर करवा देंगे, ट्रांसफर बारे में हम नंबर वन है। ओके जी, और यहाँ पे चलते हैं हम गानों की तरफ, तो यहाँ पे गाना सुनवाने वाली हूँ। सबसे पहले जैसे कि गोपाल जी आपका गाना बज चुका है, तो आप फरमाइश यहाँ पे ना भेजें। और यहाँ पे अगर अगला गाना सुनवा रही हूँ, संदीप सितार जी की पसंद है, मामला गड़बड़ है। बिल्कुल मामला गड़बड़ हो गया है क्योंकि फरमाइशें इधर उधर हो
0: बिल्कुल
1: गई
0: बिल्कुल, ये
1: है।
0: फिल्म धर्म अधिकारी फिल्म का गाना
1: जी
0: है शायद।
1: बिल्कुल बिल्कुल, तो चलिए एस जानकी जी, किशोर कुमार जी की आवाज में सुनवा
0: और थोड़ा
1: दिया।
0: सा दिमाग लगा ये दोस्तों, बीच में मैं पहली बार यही पूछूंगा आपसे, 1,000 करोड़ की लागत से कौन सी फिल्म थी जो भारतीय सिनेमा के पर्दे पर आई, 1,000 करोड़ की बनी हुई कौन सी पहली फिल्म थी?
1: 1,000 करोड़,
0: हाँ जी,
1: वाह इतनी ज्यादा महंगी।
0: ये
1: चलिए ठीक है, आप
0: बताइए।
1: सभी बताइए, जब तक सुनवा दिया मैंने आप सभी को, संदीप जी की पसंद, एंजॉय कीजिए।

0: बिल्कुल मामला गड़बड़ है। और यहाँ मेरे पास आंसर्स में से अमीना खान जी का आंसर आया है, लिखती हैं कि मुगले आजम साहब से, है ना
1: जी
0: जी? नहीं, बिल
1: नहीं,
0: मुगले आजम नहीं है इसका आंसर। इसका आंसर मेरे ख्याल से बाहुबली में भी।
1: हाँ जी, हाँ जी, बाहुबली 2 आई थी जो
0: हाँ
1: ये थी, और इसने 1800 करोड़ की कमाई की थी, और इसके साथ ही ये आए एक फिल्म और थी दंगल, उसने भी रिकॉर्ड तोड़ा था जी। और
0: बनने
1: एक
0: में, आप जो बता रहे थे कि बनने में इतने पैसे लगे, बनने में किसको लगे इतने पैसे?
1: बनने में सबसे ज्यादा पैसे बाहुबली में लगे थे, इसके
0: अच्छा
1: बाद
0: जी
1: बाहुबली में।
0: जी जी बिल्कुल ओके। और यहाँ पे एमडी फैसल आलम जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं बिल्कुल आपको भी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार आपको, नमस्कार कहते हैं परमार
1: बहुत
0: जी।
1: बहुत नमस्कार जी, बहुत बहुत नमस्कार, और आपका स्वागत है रेडियो
0: गाना
1: गाना
0: पे
1: में।
0: और निकलस जी का फीडबैक।
2: वेरी गुड आफ्टरनून आरजे, वन सेकंड जी, आरजे एमएस, यस आई नो एमएस आरजे फॉर्मल।
1: थैंक यू
2: ओह
1: वेरी मच।
2: यस, टुडे संडे, आई जस्ट फिनिश्ड माय गोल्फ एंड आई एम जॉइनिंग यू पीपल। हैव अ वंडरफुल डे। आई होप वी आर गोइंग टू लिसन गुड म्यूजिक टुडे। मिस्टर फॉर्मल, यू ऑलवेज ब्रिंगिंग गुड। आरजे, टेक केयर। Good
0: ओके,
2: music, I'm listening to you. Bye bye.
1: थैंक यू वेरी मच निकलस, मिस्टर निकलस जी, थैंक
0: Thank you so
1: यू
0: very much
1: वैसे।
0: for this feedback. And whenever you want to listen a good songs, you can listen on our radio Hostel and Radio Ghana. Whether it is our show, RJ Pema ji show, RJ Aman ji shows, and RJ Vanshika ji like me, you can hear whenever you want to hear good songs, you can have here. Whether it is Radio Ghana and Radio Hostel. और यहाँ पे मेरे पास व्हाट्सएप पे बहुत सारे लिस्टर जुड़ चुके हैं। और अमीना खान जी लिखती हैं जी बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, गाना आपके यहाँ पहुंच गया। राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं आज वंशी का जी, राधे राधे। देवपाल मौर्य जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। ज्योति जी जुड़ चुकी है, नमस्ते। और जी क्वेश्चन का आंसर बताती हैं ज्योति जी, दंगल मूवी। जी बिल्कुल,
1: जी,
0: दो
1: दंगल
0: आंसर है ना, एक तो दंगल एक बाहुबली।
1: ने सबसे ज्यादा कमाई की थी उस टाइम में, ये बाहुबली से ज्यादा कमाई थी।

0: पड़ेगा। चलिए आपसे
1: तो
0: पहले
1: ये मैं
0: सोचिए।
1: बता देता हूँ, अभी आप मत सोचिए, मैं ही बता देता हूँ। ये थी धुरंधर टू।
0: अभी क्यों बताया आपने?
1: नहीं, मैं क्वेश्चन
0: धुरंधर टू
1: पूछा
0: का,
1: नहीं।
0: धुरंधर टू का नाम सुन के तो मुझे यहाँ पे दिमाग में गाना याद आ रहा है। क्या सुनवा सकती हूँ अपनी पसंद का गाना? क्योंकि
1: ना सुनाइए, जरूर सुनाइए। मुश्किल
0: धुरंधर वन का गाना याद आ रहा है मुझे, और ये गाना मैंने इतनी बार सुना है, इतनी बार सुना है, रातों को सुना है, दिन में सुना है, हर समय इस गाने को ही सुना है। इतना अच्छा लगता है मुझे गाना,
1: सुनाइए
0: और सभी
1: सुनाइए।
0: को सुनवा देती हूँ आप सभी को ये प्यारा सा गीत। इंजॉय कीजिएगा।

0: वाह वाह वाह वाह, आज प्रमाण जी क्या जिक्र छेड़ा आपने धुरंधर मूवी का, और मुझे गाना सुनने का मौका मिल गया।
1: बात चल रही थी अनुष्का जी, किस फिल्म ने, किस मूवी ने कितनी कलेक्शन की, उसके बारे में बात चल रही, तो आपको धुरंधर नाम याद आ गया और आपने पसंद का गाना भी सुना दिया इसी बहाने से। तो अब देखिए किसी श्रोता की और कोई की श्रोता
0: जी
1: की
0: बिल्कुल
1: पसंद
0: बिल्कुल,
1: देखिए,
0: यहाँ पे निकला
1: आप
0: सी लिखते
1: बताइए
0: हैं।
1: और उसके बाद मैं थोड़ा बताऊंगा फिल्मों के बारे में और बातें बताऊंगा मैं,
0: जी
1: उन्हें
0: बिल्कुल
1: भी ध्यान से सुनिएगा।
0: निकला सी लिखते हैं आज वंशिका जी, बहुत ही प्यारा गाना है, बहुत अच्छा लगा। अमीना खान जी लिखती हैं, आज जब मूवीज की बातें हो रही हैं तो मुझे मुगले आजम का भी जिक्र हो सकता है। जी बिल्कुल, तो परमा
1: बिल्कुल
0: जी
1: अनुष्का जी,
0: मुगले आजम की स्टोरी निकाल कर लाइए। और आरिफ जी कहते हैं बहुत ही प्यारा गाना वंशिका जी सुनने को मिला है। प्रवेश कुमार जी लिखते हैं राधे राधे, हम भी जुड़ चुके हैं, वेलकम। और सरफराज जी कहते हैं वंशिका मैम और प्रमा सर जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। और सब जी सेठी जी का फीडबैक आ चुका है, वो भी सुन लेते हैं।
2: वंशिका मैम और परमार सर जी, कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है और सभी गीत एक से बढ़कर एक चल रहे हैं। और परमार सर जी, आप पुराने फिल्मों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने एक गीत भेजा है सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से, वैसे यहाँ भी एप्लीकेशन के माध्यम से भी आपको बता देता हूँ कौन सा गीत भेजा है मैंने। मैंने मिस मैरी मूवी का गीत भेजा है, गीत के बोल हैं, ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है, तू फैसला सुना दे। तो सुन तेरे रेडियो हॉटस्टार जो सबको दीवाना बना दे, मैं सरवजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
1: वाह वाह वाह सरोजी जी, क्या गाना भेजा है। मिस मैरी काफी पुरानी फिल्म थी और बहुत ही प्यारी फिल्म थी। इसमें एक गाना वगैरह था, हुआ करता था, वृंदावन का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, वो गाना भी इसी फिल्म से में था। और आपकी जो पसंद है वो भी लाजवाब है और जो गाना आपने भेजा वो भी नंबर वन है। तो
0: जी बिल्कुल। और
1: वंशिका
0: देवपाल
1: जी
0: मौर्य जी लिखते
1: चलो
0: हैं,
1: ये गाना भी रुक के सुनाते हैं, पर मैं थोड़ी सी
0: देवपाल
1: जानकारी।
0: जी लिखते हैं वंशिका जी राधे राधे, हम भी जुड़ चुके हैं। और ज्योति जी लिखती है वंशिका जी आपकी पसंद बहुत ही लाजवाब सुनने को मिली है, थैंक यू सो मच। और जानकारी जैसे कि हम पूछ रहे थे मुगले आजम के बारे में कुछ बताइए ना परमार जी, आपके पिटारे
1: देखिए
0: में उसके बारे में
1: अभी
0: क्या है।
1: मुगले आजम का जब टाइम आएगा तो उसके बारे में बताऊंगा, अभी कुछ और बातें मैं बताना चाहूंगा अपने रेडियो जगत के, अपने फिल्म जगत के बारे में।
0: जी जी जरूर
1: तो वो
0: बताइए।
1: बातें पहले आप सुनिए, उसके बाद आता हूँ मैं इस पर, मुगले आजम की भी स्टोरी में आपको पूरी बताऊंगा, कैसे हुआ था, किसने बनाई थी और कैसे रंगीन बनी थी, कैसे कलर्ड हुई थी,
0: जी
1: ये
0: बिल्कुल, पहले
1: बताऊंगा
0: ब्लैक एंड
1: इस
0: व्हाइट थी
1: पर।
0: और इसमें गाना शूट है जहां तक मुझे पता है, जिसमें मतलब शीशे शीशे से थे ना।
1: सिर्फ वही गाना एक कलर था इस फिल्म में,
0: अच्छा,
1: बाकी सारी फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट ही थी। इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे हुआ
0: मैंने
1: था ये
0: जहां तक
1: सब,
0: सुना है कि उस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए बाहर से कैमरे मंगवाए गए थे।
1: आपको बताऊंगा मैं इस बारे में भी, आपको सब बताऊंगा इस बारे में भी, एक रोशनी दूंगा मैं आपको।
0: तो जब तक
1: तो
0: मैं
1: जब
0: सुनाऊं
1: तक आप
0: सरोजीत सेठी जी का गाना।
1: सरोजीत सेठी जी का गाना
0: जी
1: सुनाइए,
0: बिल्कुल,
1: फिर मैं
0: सरोजीत
1: बताऊंगा।
0: जी सुनवा दी आपकी पसंद का गाना। और दिगंबर सिंह जी अगर आप शो सुन रहे हैं तो प्लीज मुझे बताइएगा आपने गाना कौन सा भेजा है, यहाँ पे मुझे थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही है। कौन सा गाना है, मूवी का नाम अगर आप साथ में लिख के भेज दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और सरोजीत सेठी जी का गाना प्ले कर रही हूँ, मिस मैरी मूवी का, ओ रात के मुसाफिर चंदा जरा बता दे मेरा कसूर क्या है, फैसला तू सुना दे। जी बिल्कुल, फैसला सुनवाएंगे और ये गाना भी सुनवाएंगे, इंजॉय कीजिए।

0: क्या गाना सुनवाया सर्वजीत सेठी जी आपने, ये बहुत ही मेरी पसंद है। और इस गाने को मैं तो पहली बार सुन रही हूँ, परमार जी आपने तो बहुत बार सुना होगा मेरे ख्याल से। अच्छा
1: ये फिल्म भी बहुत ही ज्यादा हिट थी विश्का जी,
0: जी
1: और अपने टाइम की नंबर वन हिट फिल्म थी ये मिस मैरी, और इसके गाने सारे ही सुपर डुपर
0: मुझे
1: हिट
0: नाम
1: थे।
0: से ऐसा क्यों लग रहा है कि ये कोई हॉरर मूवी थी?
1: नहीं हॉरर मूवी नहीं थी जी, वैसी घरेलू मूवी थी,
0: अच्छा।
1: बहुत अच्छी फिल्म थी ये।
0: आरिफ जी कहते हैं सर्वजीत सेठी जी की पसंद बहुत ही प्यारी, ओल्ड इज गोल्ड गाना सुनवाया है। अमीना खान जी लिखती है बेहद ही हसीन फरमाइश है सर्वजीत जी आपकी, और निकलेस जी का फीडबैक है वो भी सुन लेते हैं।
2: Please ask Mr. M.S. Parmal
0: Yes, what I ask?
2: If he's remember. It's a very, very old movie. It's not my choice. It's my friend's mom. She asking me to ask Mr. Parmal about movie called Over Anarakali. Anarakali is a very old movie,
0: Anarkali.
2: And Dal
1: Yes,
2: Dalai
1: yes, Anarkali is very
2: Kumar.
1: old movie.
2: Dilip Kumar.
0: Dilip
2: Please
0: Kumar.
2: ask Mr. Ajay Parmar will answer this.
0: Okay, okay, I got it, I got it. निकलेस जी का मतलब ये है कि उनकी जो दोस्त की मम्मी हैं, जो कि बहुत उम्रदार हैं, वो चाहते हैं कि आरजे परमार जी से ये पूछा जाए क्या उनको पुरानी मूवी, सबसे बहुत ही पुरानी मूवी अनारकली मूवी के बारे में जानकारी है, जो कि दिलीप कुमार जी की। उनके बारे में कोई
1: बिल्कुल
0: जानकारी है तो
1: बिल्कुल
0: जरूर
1: बिल्कुल
0: साझा करें।
1: बिल्कुल, मैं आपको इससे साझा जरूर करना चाहूंगा।
0: परमार जी दो दो काम आ गया आपके पास, एक तो मुगले आजम के बारे में बताना है, एक अनारकली जी के बारे में बताना है, ठीक है?
1: जरूर बताते हैं। और सब इससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, आजकल आज की जो डेट है उसके सुपरस्टार कौन कौन है और कौन कौन से सुपरस्टार हैं जो 10 नंबर में आते हैं,
0: आज के टॉप 10
1: टॉप 10 एक्टर कौन कौन है। और दोस्तों अगर आपको पता हो तो आप बताइए, फिर मैं इसके बाद अगला टॉपिक ये अनारकली और मुगले आजम के बारे में बताऊंगा मैं आपको।
0: जी
1: तो
0: जी
1: आप सभी सोच कर ये बताइए कि आज के जो रनिंग दौर चल रहा है जो फिल्मों का, उसमें टॉप 10 जो इतने भी कलाकार कहिए, एक्टर कहिए या एक्ट्रेस कहिए, मैं टॉप 10 उनकी एक लिस्ट बनाकर हमें बताइए। और जिस श्रोता की वर्षिका जी
0: जी एक काम कीजिए, आपसे भी लिस्ट रहने दीजिए, बस ये कि टॉप 10 में से किसी एक भी, किसी
1: एक
0: एक हीरो या एक हीरोइन का नाम भी अगर आप,
1: एक पता ही नहीं लगेगा वंशिका जी,
0: जी
1: ये
0: अगर
1: सभी का नाम पता
0: सभी
1: लगेगा
0: का नाम
1: टॉप के,
0: बताना
1: क्यों
0: मुश्किल है, तो इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप सभी हो सके तो जैसे टॉप 10 की लिस्ट आती है, उनमें से किसी एक का भी अगर आप नाम लेके भेजो, वो लिस्ट में होगा तो जरूर आपका
1: वो
0: गाना
1: तो
0: प्ले
1: वंशिका
0: करेंगे।
1: जी आ ही जाएगा, तो इसमें कोई बहस वाली बात नहीं है। आप सिर्फ ये इसको सिर्फ 1 2 3 3 टॉप जो हीरो हीरोइन है उनके नाम बता दीजिए, बस बस ये प्रश्न पूछता हूँ वंशिका जी।
0: अमीना खान जी ने मुझे बहुत सारी चीज लिख के भेजी है, इन्होंने लिख के भेजा है, मुझे ये जानना है एक चुलबुली सी आरजे और एक एक संजीदा किस्म के शख्सियत वाले आरजे का कॉम्बो कैसे फिट हो गया
1: ठीक है, क्या नाम है अमीना जी?
0: जी
1: अमीना,
0: बिल्कुल, अमीना अमीना खान जी
1: ओ बहुत बहुत शुक्रिया अमीना खान जी, आपने इतनी अच्छी तारीफ की अपने वर्डों से, गोवा फिरा के आपने बहुत अच्छी तारीफ करी दी।
0: कि
1: तो
0: एक परमार जी बिल्कुल संजीदा किस्म के हैं और मैं बिल्कुल चुलबुली हूँ, बिल्कुल अपोजिट है दोनों।
1: ठीक है दोस्तों, तो मेरे प्यारे श्रोताओं, मेरे सभी भाई
0: ये
1: बहनों और
0: जानकारी लेके
1: भाइयों,
0: आइए, काम कीजिए परमार जी, आप मुझे मुगले आजम और अनारकली मूवी के बारे में बताइए, जब तक मैं आरिफ जी की पसंद को प्ले
1: हाँ
0: करूँ।
1: आप कर दीजिए, और इनसे तो सभी श्रोताओं से 1 2 3 जो हीरो हैं उनका नाम पूछिए।
3: अस्सलामु अलैकुम परमार सर जी, वंशिका जी,
0: वालेकुम
3: मैं
0: अस्सलाम जी।
3: आरिफ सिंधी, गुजरात गांधीनगर से। आज की फरमाइश के गाने के बोल रहेंगे, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज ना होना।
0: नहीं होंगे हम
3: फिल्म
0: नाराज।
3: का नाम है संगम, डेडिकेट रहेगा परमार सर जी आपको, वंशिका जी को, अमन सर जी को और रेडियो हॉट स्टार के सभी श्रोताओं को। मैं आरिफ सिंधी, गुजरात गांधीनगर से। शुक्रिया,
0: जी थैंक यू सो
1: बहुत
0: मच,
1: बहुत
0: सुनवा
1: शुक्रिया,
0: दिया आपका
1: बहुत बहुत
0: गाना,
1: आरिफ जी।
0: एंजॉय कीजिए।
1: और मैं आपको ये कहना
0: प्रेम
1: चाहूंगा,
0: पत्र
1: ये
0: पढ़
1: फिल्म जो आप देखिए, ट्रायंगल मूवी थी संगम वंशिका
0: अच्छा
1: जी,
0: अच्छा अच्छा
1: इसमें एक एक हीरोइन और दो हीरो थे,
0: ओहो,
1: जिसमें ये राजेंद्र कुमार जी का साइड रोल था, तो उन्हीं
0: आपको
1: पर
0: बहुत पसंद है राजेंद्र कुमार जी।
1: उन्हीं पर फिल्माया गया ये गाना जो इन्होंने भेजा है आरिफ जी ने, और बहुत ही खूबसूरत प्यारा गाना है। सिर्फ यही का एक गाना था जो मोहम्मद रफी की आवाज में था इस फिल्म में, और बाकी सारे गाने मुकेश या लता मंगेशकर के।
0: राजेंद्र कुमार जी वही ना जो झुग्गे आसमान मूवी में।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
0: और मैं एक बात आपसे भी साझा करना चाहूंगी, आप सभी तो हमें आवाजों से जानते हैं, पर मैं एक बात बताना चाहूंगी, आज परमार जी जवानी में राजेंद्र कुमार जी जैसे दिखते थे, जहां तक मैंने उनकी पिक्चर्स देखी है ना, वो मतलब थोड़े थोड़े थोड़े थोड़े राजेंद्र कुमार जी जैसे दिखते थे। और एक और हीरो है, क्या नाम है उनका,
1: कमल
0: जी जैसे, उनके जैसे दिखा करते थे, तो इसलिए इनको कमल जीत जी और राजेंद्र जी बहुत पसंद है। तो चलिए सुनवा दिया, बहुत ही प्यारा गाना लेके आए हैं, क्या नाम है इनका, आरिफ सिद्दीकी जी। ये प्रेम पत्र पढ़ के नाराज मत होना जी, नहीं हम तो नहीं नाराज होते, उल्टा खुश होते हैं, एंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनवाया। ये प्रेम पत्र पढ़ के नाराज ना होना, बिल्कुल नाराज नहीं हुए हैं, बहुत ही प्यारा गाना सुनवाया है और फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास। अमीना खान जी क्या लिखती हैं, जी नहीं आंसर तो गलत है, बट एक और चीज लिखी उन्होंने, संजीदगी के साथ साथ बहुत खूबसूरत हस्ती भी हैं आप, बड़े खुशनसीब है रेडियो हॉस्टा के मालिक जिन्हें आप मिले।
1: इनके बारे में कह दी, अनुष्का जी के बारे में,
0: जी जी
1: वो बिल्कुल सही कहा अभिना जी आपने, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही बातें हैं आपकी। तो
0: थैंक यू सो मच जी। और यहाँ पे आरिफ जी लिखते हैं, वंशिका जी हम मेरी फरमाइश को प्ले किया उसके लिए शुक्रिया। और निकलेस लिखते हैं, मिस्टर अमिताभ बच्चन वेरी एक्सपेंसिव एक्टर आज है वंशिका जी। भारत भूषण दिस इज सेकंड चॉइस, मिसेस सिमरन माय फ्रेंड्स मॉम। अच्छा जी, तो इनके जो फ्रेंड की मम्मी है उनका नाम है मिसेस सिमरन, उन्होंने सवाल पूछा था और अमिताभ बच्चन।
1: तो मैं इस सवाल का जवाब भी देना चाहूँगा। इन्होंने अनारकली के बारे में पूछा, ये हमारे निखिलेश जी ने, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो अनारकली फिल्म थी, ये एक ऐतिहासिक फिल्म होती थी और ये 1953 यानी 1953 में रिलीज हुई थी। और इसके जो मुख्य कलाकार थे, मुख्य एक्टर थे जी, वो प्रदीप कुमार जी होते थे, जिन्होंने राजकुमार सलीम का रोल किरदार निभाया था, और बीना राय ने अनारकली का किरदार निभाया था। और इसी फिल्म के जो निर्देशक थे यानी डायरेक्टर जो थे, वो थे नंदलाल जसवंत लाल। और ये जो इसकी जो कहानी थी, ये सम्राट अकबर का जो पुत्र थे सलीम जी, और अनारकली के
0: अनारकली
1: जो प्रेम था, लव था, उनके बारे में थी, और इनका जो इसमें विरोध हुआ था उसके बारे में कहानी थी।
0: मुगले
1: इसके
0: आजम की
1: लिए
0: भी ऐसी है मतलब।
1: यहाँ उसकी मैं बताऊंगा आपको, अभी आप सुनिए इसके बारे में। इस फिल्म का जो संगीत था वो सी रामचंद्र जी का था, और इसमें बहुत ही प्यारे और खूबसूरत गाने हुए थे, जैसे ये जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया, एक गाना तो ये, और जाग दर्द ए इश्क जाग, जाग दर्द ए इश्क जाग, ये भी गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज तक पॉपुलर है ये दोनों गाने। तो ये इस फिल्म की स्टोरी थी, और यही एक थी चीज जो मतलब जिसमें बहसबाजी होती थी और जिसकी वजह से ये फिल्म बनी थी, और उसे बाद में दीवार के अंदर चिनवा दिया गया था अनारकली जी को। ये प्रदीप कुमार इसमें हीरो थे और बीना राय हीरोइन थी,
0: अच्छा,
1: इन्होंने, और ये 1953 में रिलीज हुई थी इसका जी।
0: 53 में,
1: हाँ जी,
0: बहुत पुरानी
1: तो
0: है।
1: अब आप देखिए क्या
0: यहाँ पे
1: आप।
0: देवपाल जी ये तो वो बात होगी, क्या कहते हैं वो, कौन मतलब कौन सा जोक है वो,
1: क्या क्या कहते हैं मोहन,
0: सीता किसका पति था, वही ध्यान हो रहा है यहाँ पे। देवपाल मोने जी कहते हैं शो शुरू हो चुका है या
1: जी अभी कहा हो गया जी, अभी तो
0: नहीं।
1: आप ख्वाब में हैं, अभी ख्वाब में सुन रहे हैं, तो देवमाल जी माइंड मत कीजिएगा इस बात को।
0: और मुक्तिनाथ जी
1: और
0: कहते हैं, वंशिका मैम हम भी जुड़ चुके हैं, नमस्कार, इतने हमको इतनी सारी जानकारी दे दीजिए, जनरल नॉलेज के सवाल को पूछ जाते हैं, हमको सिर्फ इतना जानकारी दे दीजिए कि जनरल नॉलेज के सवाल को पूछ जाते हैं। अच्छा जी, ओके जी। और सरफराज पटेल जी कहते हैं, ओके जी आपकी फरमाइश यहाँ पे फिट कर ली है मैंने, और आंसर जैसे कि हमने पूछा था वो सबसे सटीक जवाब दिया हमें राजेश कुमार जी ने, आंसर है प्रभास जी, अल्लू अर्जुन जी और थलीपति विजय जी, जो आज के
1: बिल्कुल
0: टॉप
1: बिल्कुल,
0: 3 में चले।

0: रहे हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल आपने कहा, और ये सलमान खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, पीछे हैं शाहरुख खान हो गए।
0: वैसे ज्योति जी ने भी पूरा लिख के भेजा है मुझे, शाहरुख खान से रणवीर सिंह जी, मतलब पूरे टॉप 20 लिख के भेजे उन्होंने तो मुझे, वाह तालियां बनती है इस बात पे। तो
1: टॉप 20 भेजे बहुत अच्छा गया, लेकिन जो हमने क्वेश्चन पूछा था
0: उसका आंसर राजेश जी ने, राजेश जी आप, राजेश जी अगर अपना पसंद का गाना सुनना चाहते हैं तो प्लीज लिख के भेज दीजिए।
1: और अगर आप कहना चाहते हैं भाई आपसे बात करें तो वो भी कर लेंगे, नमस्कार जी आपसे बात भी करेंगे राजेश जी।
0: और यहाँ
1: बताइएगा आप अगर कॉल करने हैं आपको तो वो लिखिए कॉल मी, और अगर आपने सिर्फ गाना सुन रहा है ना है तो उसके बारे में भी आप बता दीजिएगा।
0: बिल्कुल। तो और अमीना खान जी लिखती हैं, और हम इससे भी ज्यादा खुश नसीब हैं हम लिसनर्स को, जिनको आरजे परमार जी जैसे फंकार मिले और वंशिका जैसी जेंजी आइकॉनिक आरजे मिली है। थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू अमीना खान जी।
0: जी बिल्कुल,
1: वाह अमीना खान जी हम तो आपके कदरदान हो गए जी, और आपकी जो ये प्यारी प्यारी खूबसूरत बातें हैं बस दिल पर थोड़ा सा दस्तक देती है कि हमारी भी कोई तारीफ करता है।
0: तो इसी बात पर मीना खान जी का ही गाना प्ले कर रही हूँ, जब प्यार किया तो डरना क्या। परमार जी तैयार हो जाइए, मुगल आजम के बारे में बताना पड़ेगा आपको।
1: मुगल आजम के बारे में अभी इस गाने के बाद मैं आपको बताता हूँ,
0: एंजॉय कीजिए।

0: क्या गाना सुनने को मिला है, प्यार किया तो डरना क्या। बिल्कुल प्यार किया तो डरना क्या, पर थोड़ा बहुत तो डरना पड़ता ही है। और यहाँ पे मेरे पास फीडबैक भी है। उससे पहले प्रमाद जी, मुगले आजम के बारे में बता दीजिए।
1: देखिए दोस्तों, ये जो गाना था सुपर हिट और डुपर हिट गाना था अपने टाइम का, और इस फिल्म जिस फिल्म का ये गाना था उसका नाम था मुगले आजम। तो इसके बारे में मैं कुछ बातें आपसे साझा करना चाहूंगा और बताना
0: जरूर मिलके
1: चाहूंगा,
0: और
1: तो
0: कुछ कुछ
1: उसको आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। अभी मेरे से प्रश्न भी पूछा था, मुझसे क्वेश्चन भी पुट किया गया कि मुझे मुगले आजम के बारे में कुछ बताइए। तो मैं बताऊंगा, एक निर्देशक हुआ करते थे, निर्देशक मीन डायरेक्टर हुआ करते थे, कि आसिफ, उनके माइंड में एक दिन एक बात आई, क्यों ना कोई एक ऐतिहासिक फिल्म बनाई जाए।
0: अच्छा जी।
1: और उन्होंने ये बात जो थी वो उन्होंने अपने और जो दोस्त थे, मित्र थे, उनसे सलाह करने के लिए बताई, तो उन सभी ने इसके लिए सहमति जता दी और उन्होंने फिल्म मुगले आजम का निर्माण के बारे में सोचा और कहा, सोचा कि ये राजकुमार जो सलीम बने हैं, मुगल राजकुमार, और जो बाद में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुए थे, उनके बारे में स्टोरी कहानी बनाई जाए। उनके दरबार में एक नर्तकी यानी नर्तकी डांसर हुआ करती थी जिसका नाम था अनारकली। अनारकली और सलीम के प्यार और प्रेम प्रसंग के बीच में सम्राट अकबर का जो थे वो सलीम के डैडी थे, पापा थे, जो भी कहिए, ये एक जो रोल निभाया था ये पृथ्वीराज कपूर जी ने निभाया था।
0: वन ऑफ द बेस्टेस्ट एक्टर, जो कि कपूर परिवार की शुरुआत उन्हीं से हुई है।
1: हाँ जी बिल्कुल, और ये कपूर परिवार की जो शुरुआत थी पृथ्वीराज कपूर से ही हुई, और पृथ्वीराज कपूर जी के तीन बेटे थे, शम्मी कपूर, शशि कपूर और राज कपूर। तो
0: और जिनसे आगे का पूरा कपूर परिवार
1: आगे
0: का
1: से
0: ट्री
1: फिर
0: चला,
1: कपूर
0: परिवार
1: परिवार
0: का
1: की
0: पूरा
1: डिटेल
0: ट्री आगे
1: चली,
0: चला।
1: और इस टॉपिक पे भी कभी बात हुई तो मैं आपको बताऊंगा क्या थी कपूर परिवार की हिस्ट्री,
0: क्या आप
1: वो
0: सभी
1: भी
0: जानना
1: मैं,
0: चाहते हैं कपूर
1: अगर
0: परिवार की हिस्ट्री?
1: आप कपूर परिवार की हिस्ट्री या किसी भी परिवार की हिस्ट्री जानना चाहें तो
0: तो
1: अपने
0: प्लीज
1: इस
0: कांटेक्ट कीजिए आरजे प्रभात
1: नहीं नहीं हमारा जो
0: जी।
1: फिल्मी बातें प्रोग्राम चल रहा है अनुष्का जी, ये पार्ट वन है। इसके बाद जो अगला प्रोग्राम हम करेंगे अगले संडे को, पार्ट सेकंड होगा, उसमें भी इसकी टॉपिक पर बातें हो सकती हैं और फिल्में से रिलेटेड ही बातें की जाएंगी। और ये जब तक इन फिल्मों का दौर, जो अब तक लेटेस्ट दौर चल रहा है, जब तक हम वहां तक नहीं पहुंच जाते तब तक हम बातें करते रहेंगे, चाहे इसके लिए कितने पार्ट क्यों ना बनाने पड़े। तो
0: बिल्कुल
1: बात हो रही थी फिल्म मुगले आजम की, और ये के आसिफ जी ने डायरेक्ट की थी, और ये राजकुमार सलीम और जो नर्तकी डांसर थी अनारकली पर डिपेंड थी। और ये जो फिल्म रिलीज हुई थी, ये फिल्म 5 अगस्त 1960 को यानी 1960 1960 में रिलीज हुई थी। अपनी जो भव्यता यानी जो इनकी कहानी थी और इसी के कारण, और इसकी जो
0: मधुबाला
1: स्क्रीन
0: जी
1: प्ले
0: ने,
1: था, स्क्रीन
0: स्क्रीन प्ले
1: प्ले
0: बहुत
1: था
0: अच्छा था
1: बहुत
0: और
1: अच्छा
0: डांसिंग
1: था,
0: डांस भी बहुत अच्छा था। अगर
1: डांस
0: आप
1: बहुत
0: सभी ने
1: अच्छा
0: देखा
1: था,
0: है ना वो गाने
1: और
0: में।
1: इसमें जो सलीम की भूमिका जो निभाई थी वो दिलीप कुमार जी ने निभाई थी, और जो अनारकली यानी डांसर की जो
0: वो मधुबाला जी ने
1: वो
0: निभाई
1: मधुबाली
0: थी,
1: जी ने निभाई
0: और
1: थी।
0: मधुबाला जी तो के बेस्टेस्ट डांसर है ही। उनकी जो नेचुरल ब्यूटी, उनकी क्या ही कहने थे वो।
1: बस जी बस पूछिए मत उसके बारे में। तो
0: और मुझे एक और जानकारी देना चाहूंगी
1: और
0: कि प्रमाण जी को
1: इसने ये
0: मधुबाला जी
1: जो
0: बहुत
1: फिल्म जब
0: पसंद है।
1: रिलीज हुई वंशिका जी 1960 में,
0: जी
1: तो
0: जी
1: इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। 15 सालों तक इससे ज्यादा कमाई करने वाली कोई फिल्म नहीं बनी थी
0: अच्छा।
1: बॉलीवुड में, ये 15 साल तक सबसे टॉप पर रही थी। इसके
0: और
1: जो मुख्य कलाकार के बारे में बता देता हूँ, दिलीप कुमार, शहजादे सलीम की में ये रोल में थे, मधुबाला जी अनारकली में, और पृथ्वीराज कपूर ने सम्राट अकबर की अमर भूमिका निभाई थी। इस फिल्म को आपको वंशिका जी यकीन नहीं होगा और ताज्जुब भी होगा, जितनी आपकी उम्र पैदा हुई थी आप, 16 साल लगे थे इस फिल्म को बनने में। 16 साल तक शूटिंग होती रही थी और बहुत सी खूबसूरत प्यारे
0: सोलह
1: प्यारे,
0: साल
1: हाँ
0: एक मूवी को बनने में लगे थे, यहाँ 16 साल में बच्चे 10th पास
1: जी हाँ
0: करके
1: जी
0: ग्रेजुएट होने पे
1: हाँ
0: चले
1: जी
0: जाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। इसके सेट पर युद्ध के जो दृश्य थे, असली सैनिक, घोड़े और हथियारों का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि आजकल तो यदि एसएफएक्स आ गया,
0: VFX यूज
1: वीएफएक्स आ
0: होता
1: जाता
0: है,
1: है
0: ग्रीन स्क्रीन यूज होती है,
1: जी,
0: क्रोमा की लगती
1: लेकिन
0: है,
1: उस
0: बट
1: टाइम जो
0: उस
1: भी
0: समय
1: था
0: में
1: वो
0: नया था।
1: सारी चीजें असली थी। और इसके और इसमें एक प्रसिद्ध शीश महल भी था जो गाना अभी आप सुन रहे थे,
0: जिसमें कांच का सब कुछ दिखाया
1: हाँ
0: था।
1: जी हाँ जी, उसको भी करा था
0: उसमें
1: उसमें।
0: ऐसे शॉट लिए गए थे कि अगर एक जगह पे एक हीरोइन नाच रही है, यानी कि मधुबाला जी नाच रही है, तो बट उसमें कम से कम 1000 से ज्यादा प्रतिबिंब दिखाई दिए गए थे उसके
1: देखिए
0: शीशे के अंदर
1: बिल्कुल बिल्कुल, और ये जो 1960 के अंदर पैसे की बहुत ज्यादा कीमत होती
0: इतनी
1: थी।
0: उस समय इतनी उस समय जहां पे टेक्नोलॉजी की कमी के समय इतनी अच्छी मूवी बनाना बहुत मुश्किल
1: और
0: है।
1: इसमें की जो जो लागत आई थी मिश्का जी, वो 15 लाख रुपए लगे थे उस टाइम में 1960 में। वहां पर उस टाइम में 100 रुपए की वैल्यू हुआ करती थी, ठीक है,
0: 15 लाख,
1: 15 लाख रुपए, और वो उस टाइम पे भी सैलरी
0: पंद्रह
1: कुछ नहीं
0: लाख
1: होती।
0: लगभग, मतलब उस समय के अराउंड लाइक कितने पैसे माने जाएंगे? 15 लाख, 100 करोड़ से भी ज्यादा उस
1: हाँ
0: समय
1: जी
0: की अगर लागत मानी
1: हाँ
0: जाए,
1: जी।
0: उस समय के पैसों के
1: और
0: हिसाब से।
1: इसके जो गाने थे ये थे, इसमें संगीत तो दिया थी नौशाद जी ने, नौशाद एक बहुत बड़े संगीतकार हुए हैं, उन्होंने दिए थे। और इसके जो गाने लिखे थे वो शकील बदायूनी जी ने लिखे थे, और प्यार क्या तो डरना क्या, और मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़गिया जैसे
0: ये लता
1: गाने
0: मंगेशकर जी
1: आज
0: गाए।
1: भी सबकी जुबान पर हैं। और इसका जो उसके बाद इसे इसमें कलर में भी डब किया कर गया था, इसका रंगीन वर्जन भी हुआ था, और ये ब्लैक एंड वाइट बड़ी थी इस फिल्म में, और ये 2004 में इसका डिजिटल रूप से इसको कलर भी बनाया गया था इसको। तो
0: अच्छा जी,
1: ये कहानी थी जो मैं आपको बता था मुश्का
0: मुगले
1: जी,
0: आजम जी,
1: मुगले आजम के। और सभी श्रोताओं को भी यही बताना चाह रहा हूँ कि बहुत ही बड़ी लागत से ये फिल्म बनी थी, और इसको बनने में कम से कम 16 साल लगे थे। तो
0: बहुत ही प्यारी जानकारी दी आपने। और यहाँ पे मेरे पास लिसनर जुड़ चुके हैं इस जानकारी को साझा करते हुए। कल्पना सक्सेना जी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है कल्पना जी आपका, लिखती हैं हेलो मैम हेलो। और नितिन सक्सेना जी भी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं हेलो मैम हेलो।
1: हेलो
0: एमडी
1: हेलो,
0: पेस
1: ये
0: आलम
1: नए श्रोता हैं
0: जी, बिल्कुल
1: हमारे, और
0: जी,
1: हम इनका बहुत ज़्यादा और दिल से स्वागत करते हैं कि ये जो श्रोता नए हमारे साथ जुड़े, तो उनका मोस्ट वेलकम करते हैं।
0: एमडी फैज आलम जी भी हैं, लिखते हैं लवली सॉन्ग है। अमीना खान जी लिखती हैं, बंदी दिल की गहराइयों से आपकी ममना, दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं फरमाइश को सुनवाने के लिए। ओके जी, थैंक यू सो मच। और लिखती हैं जी, बिल्कुल नेक्स्ट संडे को अगर कपूर फैमिली पर बातचीत की जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और मोहम्मद कौशल नियांसी जी कहते हैं वेरी नाइस सॉन्ग सुनने को मिला है। निकला जी कहते हैं वाओ व्हाट अ वंडरफुल सॉन्ग। और कहते हैं कि मेरा ही सुन इंटेलिजेंट। ओके जी, कह रहे हैं कि मेरी जो फ्रेंड की मम्मी है वो कह रही है कि आरजी परमार जी बहुत इंटेलिजेंट हैं। थैंक यू सो मच।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम बताया इनका आपने?
0: निकला जी की जो फ्रेंड की मम्मी है यानी कि सिमरन जी, कह रही है कि परमार जी की जो जानकारी बहुत अच्छी लगी और वो
1: बहुत
0: बहुत
1: बहुत
0: इंटेलिजेंट है।
1: शुक्रिया सिमरन जी, वेरी वेरी थैंक्स। और निकला जी
0: वेरी वेरी थैंक यू
1: वेरी
0: अगेन।
1: वेरी थैंक्स, आई विल वेरी थैंकफुल टू मिस्टर निकलस।
0: ओके, और रोहित कुमार जी लिखते हैं आरजे परमार जी, आरजे वंशिका जी नमस्ते, हम भी जुड़ चुके हैं, वेलकम, स्वागत है आपका भी। और यहाँ पे ओके, सबुजी सेठी जी का वॉइस डेक है, वो भी सुन लेते हैं।
2: परमार सर जी, वंशिका मैम,
0: हाँ जी,
2: संगम मूवी का गीत बहुत ही लाजवाब लगा। परमार सर जी, आज सुलक्षणा पंडित जी का भी जन्मदिन है, अभिनेत्री और गायिका हैं वो, उनकी फिल्मों के बारे में जानकारी दीजिएगा। परमार सर जी
0: परमार जी,
1: जरूर
0: आज
1: देंगे,
0: तो जी
1: जरूर
0: की जुबो खोल
1: देंगे।
0: के बैठी है।
2: 12 जुलाई 1954 को हुआ था सुलक्षणा पंडित जी का,
1: जी जरूर बताएंगे, सब डिटेल देता हूँ मैं
2: तो
1: अभी सुलक्षणा
2: सुनते
1: पंडित
2: रहिए
1: जी के
2: रेडियो
1: बारे में।
2: गाना जो बना दे सबको दीवाना। मैं सरबजीत सेठी फाजिल्का पंजाब से।
0: थैंक यू सो मच,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सरोजी सेठी जी। और ये बात रही सुलक्षणा पंडित जी की, तो इस गाने के बाद मैं सुलक्षणा पंडित जी के बारे में जान के दूंगा, वो कहाँ से थी, कैसी थी, और कौन कौन था उनके परिवार में, सबके बारे में भी बताऊंगा। और दोस्तों, अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा और लगेगा है कि उन्हें ये फिल्मों की जानकारी से भरा हुआ प्रोग्राम है, इसका ये पार्ट फर्स्ट चल रहा है अभी, उसके बाद पार्ट आज ये 0 पार्ट था, उसके बाद फर्स्ट पार्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह हर बार हमारा पार्ट आया करेगा फिल्म की बातों का। आप जुड़ते रहिएगा और अपनी पसंद के गाने भी सुनते रहिएगा और फिल्मों के बारे में जानकारी भी लेते रहिएगा। क्यों
0: इसी
1: मिश्रा
0: बात
1: जी,
0: जी बिल्कुल। और इसी बात पर अगला गाना भी सुनवाने वाली हूँ मैं, जो कि यहाँ भेजा मैं ज्योति खटपटे जी ने, तो चलिए सुनवा दिया। ज्योति जी, आपकी पसंद का गाना सावन बरसे दहक मूवी का गाना है, सबको डेडिकेट करती हैं। थैंक यू, एंजॉय।

0: वाह, क्या गाना सुनवाया ज्योति जी आपने। सावन बरसे, बिल्कुल हमारी तरफ सावन ही बरसने वाला है, और मेरा तो मन कर रहा है छत पे जाऊं और अभी भीग के आऊं, क्योंकि ऐसे बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और यहाँ पे ज्योति जी लिखती, थैंक यू सो मच वंशिका जी, आपने मेरे गाने को प्ले किया, थैंक यू।
1: ज्योति जी, गाना ही आपका इतना खूबसूरत था तो प्ले करना तो बनता ही था, और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा गाना आपने पसंद किया। इसके लिए मैं तहे दिल से, मैं और वंशिका जी आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच जी। और मोहम्मद कौशल नियाजी जी कहते हैं, परमा जी बेहतरीन प्रोग्राम है आपका, आप जो जानकारियां दे रहे हैं ना बहुत अच्छी लग रही हैं, थैंक यू सो मच। अमीना खान जी लिखती हैं, मोहतरम क्या कहेंगे इसको, इस वर्ड को, इसकी मदद करेंगे मेरे साथ। यहाँ पे एक और है, मोहतरम, हाँ मोहतरम, ओके जी। तो हम इसकी मदद करने के लिए क्रेडिट जाता है ये हमारी मम्मी जी को, ओके जी। आज मम्मी जी ने भी डेब्यू कर लिया रेडियो पे। मम्मी जी कुछ कहना चाहेंगे आप? ओके जी, तो मोहतरम परमा सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुगले आजम फिल्म का बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला, और बहुत ही प्यारी जानकारी आपने दी है, ये कहना चाहेंगे। और कहती है, प्यारी आरजी वंशिका जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अमीना खान जी। और आपके चलते यहाँ डेब्यू भी हो गया है। और यहाँ पे सब जी सेठी जी का फीडबैक सुन लेते हैं एक बार, उसके बाद बातचीत करते हैं।
2: ज्योति जी की पसंद का गीत बहुत ही शानदार लगा, और परमार सर जी आपने मुगले आजम मूवी के बारे में जानकारी दी, बहुत ही अच्छा लगा। गोल्ड इज गोल्ड, और तो कार्यक्रम बहुत ही शानदार चल रहा है,
0: थैंक यू सो मच जी
2: तो सुनते
0: आपके।
2: रहिए रेडियो गाना जो बना दे सबको दीवाना। मैं सरोजी सेठी फाजिलका पंजाब से।
1: बहुत
0: थैंक यू सो
1: बहुत
0: मच जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया सरोजी जी, फाजिलका पंजाब से जो जुड़ते हैं हमारे साथ, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और शुक्रगुजार भी हूँ जो इतनी प्यारी प्यारी और खूबसूरत बातें हमारे साथ कर रहे हैं। तो बात हो रही थी अभी सुलक्षणा पंडित जी के बारे में, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा, और ये सरोजी जी सेठी जी ने मुझसे प्रश्न पूछा था, तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी ये सुलक्षणा पंडित जी थी, एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस भी होती थी और एक बहुत ही प्यारी और सुरजीवी सिंगर भी थी। इनका जन्म जो हुआ था वो 12 जुलाई 1954, यानी 12th जुलाई 1954 में हुआ था, और ये एक प्रसिद्ध संगीत घर से ताल्लुक रखती थी, और इनके जो प्रसिद्ध जो शास्त्रीय गायक थे पंडित जसराज जी, वो इनके चाचा जी हुआ करते थे, उनकी भतीजी थी, और संगीतकार जो आजकल के लेटेस्ट गीतकार हैं, जतिन ललित की बड़ी बहन भी हुआ करती थी, ये जतिन ललित जी की बड़ी बहन होती थी वंशिका
0: अच्छा
1: जी।
0: जी, जतिन लली जो म्यूजिशियन, जो इस हफ्ते के
1: हाँ
0: मेरे थीम थे एक
1: जी,
0: बार।
1: और ये 70-80 के दशक में, जो 70-80 का दशक होता था, उसमें बहुत ही मखमली अपनी खूबसूरत आवाज से गाने भी गाए थे इन्होंने। जैसे वो गाना नहीं है, जब आती होगी याद मेरी मेरा दिल भी मचलता होगा, वो मोहम्मद रफी और सुलक्षणा पंडित जी की आवाज में है। तो इन्होंने काफी फिल्में भी की हैं जी, और इन्होंने जो गाने का जो इनके पास हुनर था, इन्होंने 9 साल की उम्र से ही गाने गाने शुरू कर दिए थे, और एक पार्श्व गायिका के रूप में उन्होंने 70 से अधिक फिल्मों में अपनी आवाज दी है। 70 फिल्में इन्होंने की हैं, और उनमें अपने गाने भी गाए हैं। उनकी खास फिल्मों के नाम मैं बता देता हूँ, जैसे उलझन फिल्म आई थी 1975 में, अपना पिनपन फिल्म आई थी 1977 1970 में, और हेरा फेरी फिल्म आई थी 1976 में। ये सारी लोकप्रिय फिल्में थी, इन्होंने इस फिल्म में गाने गाए हैं। उलझन फिल्म जो होती थी 1975 में आई थी, ये संजीव कुमार के साथ थी, अपना पिन जितेंद्र जी के साथ थी, और हेरा फेरी में अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जी थे। इनकी जो उनको अपने जीवन में संजीव कुमार जी से लव हो गया था, प्यार हो गया था, लेकिन वो प्यार इनका अधूरा ही रहा, क्योंकि संजीव कुमार जी की जल्दी ही डेथ हो गई थी, और वो इस दुनिया को छोड़कर सदा के लिए अलविदा हो गए थे, और ये संजीव कुमार जी से बेइंतहा प्यार किया करती थी, उनसे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन किस्मत देखिए वो बात कंप्लीट हो नहीं सकी। हालांकि संजीव कुमार ने इनकी शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था शुरू में, जब इन्होंने इनको प्रपोज किया
0: काफी
1: था।
0: गहरी जानकारी लेके आए,
1: हाँ
0: ऐसा
1: जी
0: लग रहा
1: हाँ
0: हूँ वहीं
1: जी,
0: पे बैठे हुए थे जब मैं रिश्ता लगने वाला था।
1: तो श्रोता ने पूछा है वंशिका जी, तो मैं बताना ही चाहूंगा कुछ ना कुछ, और आगे बताऊं बताता बड़ा बताना चाहूंगा वंशिका जी, सुनिए। उसके बाद इन्होंने, संजीव कुमार जी ने इनका प्यार

0: टुकरा दिया और उस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। तो इसके बाद ही उनकी स्वास्थ्य की कुछ प्रॉब्लम हो गई, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने लगा
1: जी
0: और वो कुछ पारिवारिक समस्याएं भी आ गई और उसके बाद से ये टूट सी गई और इन्होंने फिल्मी संसार से, फिल्मी जगत से दूरी बना दी सिर्फ उस ठुकराने की वजह से। और
1: जब अपना
0: सेवेंटी
1: जब किसी से प्यार किया जाए और वो प्यार ठुकरा दे तो दिल पे ऐसी चोट लगती है ना, जिंदगी में कुछ और अच्छा लगना बंद हो
0: हाँ,
1: जाता
0: तो
1: है।
0: उसके बाद ये काफी परेशानी में रही और बीमार भी रही और इन्होंने 71 ईयर यानी 71 साल की आयु में 6 नवंबर 2025 में बम्बई के एक बड़े हॉस्पिटल, नानावती हॉस्पिटल है, वहां पर इनका निधन हो गया। तो ये दोस्तों, ये थी सुलक्षणा पंडित जी की कहानी। और आप जुड़े रहिएगा हमारे प्रोग्राम से हर संडे को, आपको और भी जानकारियां देंगे हम और आप जो भी पूछेंगे उसका जवाब भी देंगे हम और सारी बातें आपसे साझा भी करेंगे। तो
1: बिल्कुल
0: वंशिका जी, अब देखिए किसका पसंद आया।
1: अजय भगत जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं आज विमान जी और आज वंशिका जी, दिल से प्रणाम कबूल कीजिए। जी कबूल किया है आपको प्रणाम,
0: बहुत बहुत
1: और निखिल
0: आपका,
1: जी का फीडबैक
0: बहुत बहुत इनका प्रणाम तो स्वीकार कर लेता हूँ वंशिका जी। पहले मैं निकलेश जी का फीडबैक भी सुनते हैं हम, सुनाइए।
1: जी जी कीजिए प्रणाम स्वीकार। ओके जी, और सुनते हैं
2: मिस्टर
1: फीडबैक।
2: आके अरबा, डिड यू वर्किंग ऑन मीडिया?
1: No, he
2: How
1: not.
2: can you bring all the good thing in radio, giving all the good knowledge you have? Jesus Christ, you are a very clever man. Thank you so very much.
0: Thank
2: I'm
0: you.
2: learning from you, Mr.
0: Thank you very much, Mr. Nicholas. I like you and I always listen to you in वंशिका जी प्रोग्राम एंड अमन जी प्रोग्राम एंड यू आर ग्रेट मैन, आई लाइक यू वेरी मच
1: एंड आई लाइक योर फीडबैक आल्सो
0: एंड आई लाइक योर फीडबैक्स आल्सो।
1: आरिफ सिंधी जी का फीडबैक वो भी सुन लेते हैं।
3: अस्सलाम वालेकुम परमार सर जी,
1: वालेकुम
3: वंशिका
1: अस्सलाम
3: जी,
1: जी
3: फिल्मी दुनिया की जानकारी बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आरिफ सिंधी, गुजरात गांधीनगर से।
1: जी बिल्कुल, हमारे गूगल बैठे हुए परमार जी, आपको भी कुछ जानना हो तो जरूर बताइएगा। अमीना खान जी लिखती हैं कि और भी जानकारी हमें लेनी है फिल्मों के बारे में। जी बिल्कुल पूछिएगा। और लिखती हैं बड़ी दुखद कहानी है अभिनेत्री सुलक्षणा जी की। जी बिल्कुल जी, ऐसा होता है ना जिंदगी में, हम किसी से प्यार करें और वो प्यार अगर किसी हमसे दूर चला जाए, कोई दूर छीन के ले जाए या कोई वो प्यार ही हमें ठुकरा दे, तो जिंदगी ऐसे बेमतलब की हो जाती है। इंसान जीता तो है पर पता नहीं लगता वो जी रहा है या मर रहा है। ये हाल उनके साथ भी हुआ सुलक्षणा जी के साथ, इसलिए ही उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने बड़ी बढ़िया जो करियर चल रहा था उनका, उस पर भी उन्होंने ब्रेक लगा दिया। उन्हें और कुछ अच्छा लगा ही नहीं क्योंकि जिस चीज को वो चाहती थी वो चीज तो उनसे दूर चली गई। ये चीज
0: तो वंशिका जी मैं ये कहना चाहूंगा अपनी सभी श्रोताओं से, अपनी सभी श्रोताओं से, अपने प्यारे भाई और बहनों से, कि वो भी किसी एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में, किसी अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में कुछ भी पूछना चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं। हम उसकी भी पूरी पूरा प्रकाश डालेंगे, उसकी भी पूरी जानकारी देंगे। और आपको हर महीने, हम हर हफ्ते यानी हर संडे को फिल्मी बातों में आगे से आगे ले के जाएंगे। आगे आगे आपके संगीतकार हैं, जैसे हमारे जो पुराने एक्ट्रेस हैं, अभिनेता हैं, अभिनेत्री हैं, उनके बारे में बताएंगे और फिल्मों के बारे में भी काफी
1: जी,
0: कुछ
1: जैसे कि
0: बताएंगे।
1: अब मेरे को एक जानकारी चाहिए।
0: क्या बोलिए
1: जी, सिलसिला मूवी अमिताभ जी की, रेखा जी की और जया बच्चन जी की, उसके ऊपर मुझे जानकारी चाहिए। परमार जी निकाल के लेके आई है जल्दी से।
0: देखिए अगली बार मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन आप ये बता दीजिए, मैं तीन नहीं थे इसमें, चार थे। अमिताभ बच्चन जी थे, शशि कपूर
1: जी
0: थे, शशि कपूर भी जी थे, संजीव कुमार भी जी थे, रेखा जी भी थी, जया भादुड़ी जी भी थी। इसके बारे में मैं आपको भी पूरी जानकारी दूंगा इस फिल्म के बारे में, और रिश्ता भी बताऊंगा अमिताभ बच्चन जी का, रेखा जी का, जया भादुरी जी का क्या रिश्ता था उनका आपस में, और संजीव कुमार जी का रोल भी कैसा था, वो भी मैं सभी बताऊंगा। तो इसके बाद में, बाद में इस गाने के बाद में आपको,
1: आज मुझे पता है परमार जी आप कैसे लग रहे हैं, मुझे आज आप लग रहे हैं अन्नू कपूर जी की तरह, जैसे कि अन्नू कपूर जी आप सारी इन्फॉर्मेशन फिल्मों के अपने पास संजो के रखते हैं ना, वैसे आपने भी संजो के रखी हुई है। और अमीना खान जी लिखती हैं मधुबाला जी के बारे में जानकारी दीजिए। जी मधुबाला जी के बारे में बताइए, इनकी भी स्टोरी काफी अच्छी है मधुबाला जी की, मैंने
0: देखिए ऐसा है अमीना जी, मैं मधुबाला के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले अभी इन्होंने, अमिश्का जी ने जो प्रश्न पूछा है, सिलसिला मूवीज के बारे में, उसके बारे में बताऊंगा मैं।
1: तो चलिए उससे पहले
0: के बारे में बताता हूं,
1: गाना बता, तो गाना बजा देती हूँ जब तक मैं। सरफराज जी का, रोज शाम आती थी मगर ऐसी ना थी, मूवी का नाम है इम्तिहान। लता जी,
0: इम्तिहान फिल्म थी जी, ये फिल्म भी काफी खूबसूरत फिल्म थी जी, सरफराज जी। और इस फिल्म में जो हीरो थे, फर्स्ट टाइम विनोद खन्ना जी फिल्म में हीरो बनकर आए थे, एक्टर बने थे। वैसे विलन का रोल क्या करते थे ये वंशिका जी, और इसकी जो हीरोइन थी वो थी सायरा बानो इस फिल्म की। जो
1: तो चलिए गाना सुनवाते हैं,
0: तो गाना सुनिए आप, आगे आपसे और जानकारी साझा करूंगा मैं इस सिलसिले में।

0: क्या गाना सुनने को मिला है, बहुत ही प्यारी पसंद, यहाँ पे रोज शाम आती है। और क्या गाना सुनवाया है सरफराज जी, आपने साउथ अफ्रीका से गाना भेज रहे हैं और इतने प्यारे गाने भेजे हैं। और अमीना खान जी लिखती हैं जी, बिल्कुल इत्मीनान से बताइए, मधुबाला जी का रियल नाम भी बताइएगा और भी जानकारी बताइएगा जी, बिल्कुल। और यहाँ पे ज्योति लिखती है, बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है। और निकला जी लिखते हैं, आज वंशिका जी, हम किशोर कुमार जी के बारे में जाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है परमार जी, आज तो आप पूरे गूगल बन गए हैं, सभी लिसनर्स आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन
1: देखिए, अभी
0: पूछने पड़ेंगे।
1: बात चल रही है वंशिका जी फिल्म
0: सिलसिला
1: सिलसिला के बारे में, जिनके बारे में अभी मुझसे पूछा गया था, और उसके बाद में मधुबाला जी के बारे में भी पूरी डिटेल आपको दूंगा। तो सबसे पहले बातें चलती है सिलसिला फिल्म के बारे में। देखिए ऐसा होता है दोस्तों और मेरे भाई और बहनों, ये जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो होते हैं, ये कोई किसी न किसी चीज़ का फायदा उठाते होते हैं, और उसका फायदा यश चोपड़ा जी ने उठाया था उस समय। वो कैसे वो बता देता हूँ। देखिए शादी उन्होंने अमिताभ बच्चन जी की थी जया बहादुरी जी से, हालांकि वो प्रेम प्रसंग ही था, उनको उन्होंने शादी की। लेकिन कई बार ऐसा होता है शादी होने के बाद भी कई इंसान कई आदमी अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उसी वजह से उन्होंने रेखा जी से प्रेम किया ना, और ये प्रेम के चर्चे खुलेआम भी हुए, और इसकी वजह से

0: में अमिताभ बच्चन जी ने अमित का रोल निभाया था और रेखा जी ने चांदनी का रोल बनाया था, और उन दोनों का प्रेम काफी हुआ और ये कहानी भी वहीं से शुरू, उनके प्रेम
1: मुझे
0: से
1: इसकी
0: शुरू
1: स्टोरी
0: होती है।
1: जहां तक पता है, मैं बताऊं परमाजी, आप बताइएगा कि
0: हालांकि
1: सही है गलत।
0: एक जो विमान दुर्घटना में अमित के भाई और चांदनी के मंगेतर जो उनसे प्यार करते थे, यानी शशि कपूर जी, इनका नाम शेखर था, उनकी मौत हो जाती है। और
1: चांदनी की
0: ग्रह
1: नहीं, मतलब जया भादुरी जी के जो पति जो बनने वाले थे शशि कपूर जी, उनकी मौत हो जाती है, फिर जया जी से इसलिए अमिताभ जी शादी कर
0: जी
1: लेते हैं।
0: नहीं, उनकी मंगेतर थी, शादी होने वाली थी शशि कपूर जी से, रेखा जी की, तो उनकी शादी हो जाती है। और यानी हाँ, उनकी जब शादी होने वाली होती है, आप ठीक कह रही है, जया बच्चन जी
1: जया
0: से,
1: बच्चन जी से होने वाली होती है,
0: और
1: क्योंकि उनका उनके
0: उनकी
1: जो शशि कपूर जी भाई थे वो मर जाते हैं, तो
0: जो जिनसे प्यार शादी होने वाली थी जया बच्चन से, वो गर्भवती थी उस टाइम,
1: जी, तो
0: प्रेग्नेंट
1: अमिताभ
0: थी,
1: बच्चन जी ने उनसे शादी
0: तो
1: कर ली।
0: और अमिताभ बच्चन जी ने अपना बड़प्पन दिखाते हुए उनसे शादी की थी। हालांकि
1: रेखा
0: वो प्यार करती थे
1: जी
0: रेखा जी
1: से,
0: से, तो रेखा जी से प्यार करते रहे, और बाद में शादी होने के बाद भी वो अपना जो शादीशुदा जिंदगी का जो फर्ज था निभाते रहे, लेकिन प्यार वो रेखा जी से ही करते रहे। और वैसे समाज के कलंक से बचाया था उन्होंने जया भादुरी जी को शादी करके, और यही इस फिल्म की कहानी थी। और आके
1: आगे भी
0: जाके
1: और अच्छी स्टोरी ट्विस्ट है, ट्विस्ट एंड टर्न्स है, अगर आप सभी देखेंगे ना जब पता लगेगा। मैंने इसकी मतलब स्टोरी को पढ़ा है, मूवी को देखा नहीं है, जहां तक मुझे पता है स्टोरी एट द एंड सब अपनी अपनी जगह पे ठीक हो जाते हैं।
0: और एक बात बताऊं इसका जी, फिल्म की सबसे दिलचस्प पहलू ये था इसकी कास्टिंग, ये उस समय के सबसे अच्छे जो अभिनेता और अभिनेत्री थे उनको इस फिल्म में लिया गया था। और उन्होंने ये सोच कर लिया था गया था, जैसे अमिताभ बच्चन जी का जो वास्तविक जो प्रेम चल रहा था उसमें रेखा जी से चल रहा था, और जो वास्तविक जीवन में प्रेम चल रहा था उसी की वजह से अमिताभ बच्चन जी जया और रेखा के बीच में प्रेम प्रसंग प्रसंग की जो अफवाह चरम सीमा पर पहुंची हुई थी, उनको भी उनसे भी फायदा उठाकर यश चोपड़ा जी ने इस फिल्म को बनाया था। और इस फिल्म का सबसे बड़ी बात यह है, संगीत भी बहुत ही खूबसूरत प्यारा था, और इसके गाने भी बहुत अच्छे थे। और जैसे और इसके इनके जो पिताजी थे अमिताभ बच्चन के वंशका जी,
1: जी
0: उनका
1: जी
0: नाम था हरिवंश राय
1: जी
0: बच्चन।
1: जी बिल्कुल, बहुत बड़े कवि हैं वो।
0: हाँ, और उन्होंने जो गाने इसमें दिए थे उनको ही वो क्लासिक गाने भी
1: कल
0: में
1: क्लासिक
0: जुड़े
1: गाने
0: हुए,
1: यूज हुए थे, बिल्कुल बहुत अच्छी
0: जैसे
1: जगह।
0: एक गाना उनका लिखा हुआ था, देखा एक ख्वाब तो इसलिए
1: देखा
0: हुए,
1: एक ख्वाब
0: ये
1: तो इसलिए
0: भी हरिवंश राय बच्चन जी का लिखा हुआ है। और एक गाना और हरिवंश राय बच्चन जी का इसमें लिखा हुआ था, ये कहाँ आ गए हम रंग बरसे भीगे चुनर वाली,
1: हुआ। हाँ, वो
0: ये
1: तो
0: अमिताभ
1: आवाज
0: बच्चन जी की खुद की
1: में
0: आवाज में
1: जी,
0: गाया हुआ
1: बिल्कुल
0: गाना था। और इसमें जो ढोलकी बजा रहे थे वो थे संजीव कुमार जी। संजीव कुमार जी का बहुत अच्छा रोल था इस फिल्म में, तो ये फिल्म आप देखिएगा जरूर, बहुत खूबसूरत बड़ी प्यारी फिल्म है, मजा आ जाएगा आपको देखकर। जिन दोस्तों ने नहीं देखी है तो वो देखेंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: रिलीज के जब ये फिल्म रिलीज हुई थी ना वंशिका
1: आप ये
0: जी,
1: भी बता दीजिए कि
0: ये भी सुनिए, पहले बात सुनिए आप, जब ये फिल्म रिलीज हुई थी वास्तविक जीवन और रियल लाइफ के बीच की पतली रेखा के कारण फिल्म को मिश्रित प्रतिक्रियाएं भी मिली थी, और यह बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही ज्यादा
1: हिट हुई थी,
0: नहीं हुई थी जी, असफल रही थी फिल्म।
1: अभी तो आपके थोड़ी देर
0: हाँ,
1: पहले कहते ब्लॉकबस्टर हुई थी।
0: तो बहुत ब्लॉकबस्टर हुई थी, लेकिन वो उस पर लोगों को कहानी पसंद नहीं आई इसकी। क्यों नहीं आई? कि वो ट्राइंगल इस टाइप का दिखाया गया इस
1: अच्छा
0: फिल्म
1: अच्छा
0: में।
1: जी,
0: हाँ,
1: और बहुत अच्छी
0: और ये
1: जानकारी।
0: फिल्म एक अमिताभ बच्चन और रेखा जी की आखिरी फिल्म थी, इसके बाद अमिताभ बच्चन और रेखा जी किसी फिल्म में भी एक साथ नहीं आए थे। ये सोच लीजिए, चाहे पारिवारिक कलह सोच लीजिए या
1: इसके
0: फिर,
1: बाद इन दोनों की मतलब एक साथ मूवी नहीं आई।
0: हाँ, तो ये स्टोरी मैं आपको सिलसिला की बता रहा था,
1: थैंक यू
0: और
1: सो
0: अगली
1: मच।
0: बार मैं आपको अब इससे आगे मधुबाला जी की पूरी जीवनी
1: बिल्कुल
0: बताऊंगा
1: बिल्कुल
0: आपको।
1: बिल्कुल निकला
0: और
1: जी लिखते हैं आज प्रमा जी, थैंक यू सो मच इतनी प्यारी जानकारी के लिए, और सवजी सेठी जी का फीडबैक।
2: वंशिका मैम, नमार सर जी, नमस्ते। आपने
1: नमस्ते जी।
2: सुलक्षणा पंडित जी के बारे में जानकारी दी, अच्छा लगा नमार सर जी। और सही कहा वंशिका मैम आपने, अनु कपूर जी के बारे में बिल्कुल उनकी तरह बता रहे हैं। विद अनु प्रोग्राम आता था गोल्डन एरा,
1: जी
2: मस्ती
1: बिल्कुल,
2: चंद्रपुर गोल्डन एरा
1: रात को 9 बजे अभी
2: विद
1: भी
2: अनु
1: आता है।
2: कपूर, वो भी अच्छी अच्छी जानकारी देते थे पुरानी फिल्मों के बारे में। और वही

0: यादें ताजा कर रहे हैं परमास्टर जी की, याद दिला दी की, अनु कपूर जी की। तो सुनते रहिए रेडियो गाना जो बना दे सबको दीवाना। मैं सरवजीत सेठी फाजिलका पंजाब से।
1: देखिए सरवजीत जी, आपका फीडबैक बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत था, मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन बात आपने कर दी वो अनु कपूर जी की, कहाँ अनु कपूर कहाँ मैं, मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कोशिश करता हूँ मैं कि आप सभी को जो आप प्रश्न पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, उनका जवाब दे पाऊँ। और जो हमारी आरजे वंशिका जी वो मेरा साथ देती है इस बारे में। तो अभी जो आप गाना सुनेंगे वो किसकी पसंद है वो वंशिका बताएंगी, और उसके बाद मैं मधुबाल जी के बारे में भी आपको डिटेल में
2: अमीना खान जी लिखती है, जरूर देखेंगे हम मूवी को, बिल्कुल देखिएगा। और ये मूवी मतलब जो मेरे को भी, जैसे कि अमीना जी ने भी लिखा है, मैं ऐसी मूवीज नहीं देखती जिसमें बिछड़ना होता है, मुझे भी ऐसी मूवीज देखना बिल्कुल पसंद नहीं है बिछड़ने वाली। और राजेश कुमार जी लिखते हैं, गाना सुना है आपके करीब हम रहते हैं। जी बिल्कुल रहते हैं, साजन की बाहों में मूवी का गाना है, सभी को डेडिकेट करते हैं, सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: क्या गाना सुनवाए हैं, आपके करीब हम रहते हैं, अपना नसीब तुम्हें कहते हैं। बिल्कुल अपना नसीब बना लिया है तुम्हें अपना हमने। और यहाँ पे फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास। अजय भगत जी लिखते हैं, सभी लिसनर्स, हम सभी लिसनर्स भी आपके करीब रहते हैं, रेडियो हॉटस्टार से जुड़े रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी हमारे करीब रहते हैं और इतनी प्यारे प्यारे गाने भेजते हैं, उसके लिए शुक्रिया, बिल्कुल शुक्रिया। राजेश कुमार जी लिखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। वंशिका जी, परमार जी, आपने हमारे गाने को प्ले किया। ज्योति जी लिखती है, बाय बाय, हम प्रोग्राम बाद में सुनेंगे, बहुत अच्छी है जानकारी पता चली है आप दोनों के थ्रू। आप सवारी पूछते हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जवाब देना, और थैंक यू सो मच इतना प्यारा शो करने के लिए हमारे लिए। थैंक यू सो सो मच, वेलकम वेलकम वेलकम वेलकम ज्योति खटवटे जी, वेलकम। और इसी बात पे अगला गाना मैं सुनवा रही हूँ यहाँ पे। परमार जी कुछ कहना चाहेंगे?
1: देखिए, बात चल रही थी अभी फिल्मों से रिलेटेड, और किसी ने मुझसे भी प्रश्न पूछा था, शायद अमीना जी ने पूछा था मधुबाला जी के बारे में,
0: जी जी बिल्कुल,
1: तो वो उनके बारे में भी, उनकी जीवनी पर और उनके बारे में कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा जो शायद आप लोग नहीं जानते। तो मैं ये कहना चाहूंगा वंशिका जी, ये गोल्डन एरा की सबसे मशहूर और खूबसूरत अभिनेत्री थी मधुबाला जी। और मधुबाला जी का जो जन्म हुआ था ना वंशिका जी,
0: जी,
1: ये 14 फरवरी 1933 में हुआ था, और ये दिल्ली के एक रूढ़िवादी पश्तून मुस्लिम परिवार में हुआ था, मुस्लिम परिवार में हुआ था। और इनका बचपन का नाम था मुमताज जहां बेगम दहलवी, समझे? पूछा था मीना जी ने
0: जी बहुत
1: मुझसे
0: से
1: अभी।
0: लिस्टर्स ने आंसर भी दिया, राजेश जी ने बताया, ज्योति जी ने बताया, और अमीना जी ने भी बताया था कि मुमताज जी नाम था उनका रियल।
1: मुमताज जहां बेगम दहलवी था जी इनका पूरा नाम, और इनके पिताजी का नाम भी शायद श्रोताओं को नहीं पता होगा, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। उसका नाम था जी उनका नाम था अताउल्लाह खान, और माता जी का नाम था आयशा बेगम। ये थी मधुबाला जी की मम्मी पापा के नाम जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और वे अपने माता पिता की 11 11 बच्चे थे जी, इनके 11 संतानें थी,
0: अच्छा
1: उसमें
0: जी,
1: उसमें पांचवें नंबर पे थी मधुबाला
0: जी
1: जी।
0: जी जी अच्छा,
1: और मधुबाला जी पांचवें नंबर पे आई थी, पैदा हुई थी उनके घर में, अताउल्लाह खान जी के जन घर में, जिनकी मम्मी का नाम था आयशा बेगम, समझी मैंने वेशका जी।
0: जी जी
1: और वो अपने माता पिता के 11 संतानों में से पांचवें नंबर पे थी। और ऐसी जब बच्चे ज्यादा हो गए तो उनके घर में आर्थिक तंगी तो होनी ही थी। आर्थिक तंगी के कारण उनका परिवार दिल्ली से मुंबई आ गया, जो आजकल मुंबई को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था, पहले हम मुंबई के नाम से जानते हैं। जहाँ छोटी उम्र से ही मधुबाला ने अपने परिवार का पेट पालने के लिए फिल्मों में काम करना शुरू
0: अच्छा
1: कर दिया,
0: अच्छा
1: यानी उनके कंधों पर अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, अपने भाई बहनों का जो बोझ था उसको पूरा करने के लिए, उनका पेट पालने के लिए उन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। और वो बहुत छोटी थी उस टाइम, 16 17 साल की थी तब।
0: जी
1: उन्होंने सबसे पहले बाल कलाकार की भूमिका निभाई, फिल्म
0: जी जी
1: एक्ट्रेस तो वो बाद में बनी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने बाल कलाकार के रूप में आई थी 1942 यानी 1942 में फिल्म आई थी बसंत। उस बसंत में अपना कैरियर शुरू किया बाल कलाकार के रूप में,
0: जी
1: और उसमें उनका नाम मधुबाला लेते थे, उनको कहते थे बेबी मुमताज।
0: अच्छा, बेबी मुमताज जी,
1: हाँ, तो मैं वंशिका जी ये का कुछ खास ऐसी जानकारी है जो सभी स्रोतों को नहीं पता, और मैं उन्हें बताना चाहूंगा। और बेबी मुमताज के नाम से कहा जाता। और 1947 में जब भारत आजाद हुआ था तो केदार शर्मा एक डायरेक्टर होते थे जो निर्देशक कहते हैं हिंदी भाषा में, उन्होंने फिल्म बनाई थी नीलकमल। नीलकमल ये वाली नीलकमल, राजकुमार मनोज कुमार जी ये वाली नहीं, एक और नीलकमल बनी थी पहले
0: जी जी
1: उन्नीस
0: बिल्कुल,
1: सौ सैतालीस के अंदर।
0: मतलब जब हमारे देश आजादी के लिए लड़ रहा था जब,
1: और उन्होंने उस फिल्म में मुख्य भूमिका, यानी जो मुख्य भूमिका अभिनेत्री की होती है
0: जी जी जी
1: वो
0: वो
1: उन्हें दी
0: निभाई थी,
1: मधुबाल जी को। उसके बाद आई थी 1949 में सस्पेंस थ्रिल फिल्म, एक सस्पेंस फिल्म मूवी आई थी महल, और उस महल की वजह से वो जो मधुबाला जी रातों मधुबाला जी रातों रात सुपर डुपर हिट अभिनेत्री बन गई थी। 1947 में वो आई नीलकमल में, उसके बाद मिला उन्हें महल फिल्म में काम करने का मौका, तो उन्होंने उसके बाद वो
0: उन्होंने उनमें भी काम किया।
1: इसके बाद उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस 55 पे भी काम किया 1955 में। चलती का नाम गाड़ी एक फिल्म आई वो 1958 में आई थी, उसमें भी काम किया उन्होंने। और हावड़ा ब्रिज 1958 और बरसात की रात 1960 में आई थी, जैसी कई फिल्मों में भी काम किया और वो सारी फिल्में सफल रही। और मुगले आजा में अनारकली का रोल किया। साल 1960 में आई के आसिफ की ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम उनके कैरियर की मील का पत्थर साबित हुई। इसमें उन्होंने अनारकली का किरदार निभाया था। इस फिल्म में उनका अभिनय भारतीय सिनेमा के इतिहास के सबसे बेहतरीन प्रदर्शनों में से एक गिना जाता है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और पुरस्कार भी मिला। सुनिए आगे उनके निवन जिनका जो निजी जीवन था, पर्सनल लाइफ थी, उसमें उनका प्रेम प्रसंग के बारे में मैं कुछ रोशनी डालना चाहूंगा जो श्रोताओं को नहीं पता है। मधुबाल की निजी जिंदगी काफी उथल पुथल रही है। 1950 के दशक की शुरुआत में अभिनेता दिलीप कुमार के साथ उनका गहरा रिश्ता रहा। फिल्म तराना और अमर दोनों ने एक साथ काम किया, तराना और अमर फिल्म में, जो कि आगे चलकर किन्हीं कारणों उनका रिश्ता टूट गया। उसके बाद 1960 में मधुबाला ने अभिनेता गायक किशोर कुमार से निकाह कर लिया, शादी कर ली। ये किशोर कुमार जी ने कई शादियां की हैं।
0: किशोर कुमार जी ने 4 शादियां की हैं और जो उनकी चौथी बीवी है वो लीना चंद्र भक्कर जी अभी प्रेजेंट में हैं।
1: और आगे आगे अब इसका इनका दुख का दौर शुरू हो गया। मधुबाला जन्मजात दिल की बीमारी से ग्रस्त रहती थी, इनको उनको हार्ट की बीमारी थी, हार्ट डिजीज कह लीजिए जिसे। और फिल्म बहुत दिन हुए, एक पुरानी फिल्म आई थी बहुत दिन हुए, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत फिल्म थी। उसकी शूटिंग के दौरान उन्हें खूब ही उल्टियां भी हुई और उसके बाद सभी को डॉक्टरों को इनकी बीमारी के बारे में पता चला। उस समय इनका इलाज संभव नहीं था क्योंकि वो बीमारी को काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मुगले आजम जैसी फिल्म की शूटिंग भी पूरी की। 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 को उनका निधन हो गया।
0: बहुत कम उम्र में,
1: सिर्फ 36 साल की उम्र में मर गई थी मधुबाला जी। और मधुबाला की सुंदरता, उनकी नशीली आंखें और चुलबुले अभिनय ने उन्हें हिंदी सिनेमा की सबसे महान अभिनेत्रियों में जोड़ दिया और उस कतार में खड़ा कर दिया जहां कोई भी नहीं आ सका अभी तक। उनके जीवन को अक्सर ब्यूटी ऑफ ट्रेजेडी के रूप में भी याद किया जाता है। तो दोस्तों और मेरे प्यारे श्रोताओं, आपने मुझसे पूछा मधुबाला जी के बारे में और मैंने आपको सभी कुछ डिटेल में बता दिया, आपको अच्छा लगा होगा। क्यों कैसा लगा?
0: बिल्कुल, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और बहुत ही सैड स्टोरी है। जितने भी मतलब मैंने ये चीज नोटिस करी है कि कोई भी अगर कोई अभिनेता है, अभिनेत्री है, कोई नेता है या कोई भी सिंगर है, कोई भी चीज है, मतलब कोई भी व्यक्ति है जो कि अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं, तो उनको जिंदगी में बहुत सी चीजों को सहना पड़ता है, अपने प्यार को खोना पड़ता है, बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं जब जाके कहीं पे उनको एक मुकाम हासिल होता है, और वो हासिल होने के बाद भी उनको बहुत मुश्किलों का सामना करते ही रहना पड़ता है।
1: बिल्कुल सही कहा विश्वकर जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। और मैं यही कहना चाहूंगा अपने सभी श्रोताओं से, प्यारे प्यारे श्रोताओं से, सभी भाई बहनों से, कि आप भी किसी अभिनेत्री या अभिनेता या किसी फिल्म के बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहे फिल्मों के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
0: मैं अमीना खान जी लिखती हैं, मैं किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया अदा करूं आज प्रमाण जी, आपने मधुबाला जी की तारीफ में आपने इतने बेहतरीन अल्फाज, इतने अच्छे अंदाज में आपने बयां किया सब कुछ, मेरे पास वर्ड ही नहीं है, आज से प्रोग्राम मेरा फेवरेट बन गया है। थैंक यू सो मच अमीना खान जी,
1: बहुत बहुत शुक्रिया अमीना खान जी। कहाँ से हैं ये हमारी मैडम
0: अमीना जी? अमीना जी महाराष्ट्र से हैं।
1: ओ बहुत बहुत शुक्रिया, महाराष्ट्र से है और मैं मुझे बहुत खुशी भी और तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ इनका इन्होंने अच्छा इतना प्यारा और खूबसूरत फीडबैक दिया।
0: इसी बात पर अगला गाना सुनवा रही हूँ सुनील जी का। सुनील तक जी का गाना है इस इश्क मोहब्बत की कुछ है अजीब रस्में, बिल्कुल अजीब रस्में हैं, पर जो रस्में हैं वो निभानी पड़ेगी इस इश्क मोहब्बत की। एंजॉय कीजिए।
1: और दोस्तों आप किसी और के अभिनेता अभिनेत्री के बारे में किसी फिल्म में कोई भी फिल्मी सवाल हो आप
0: जी बिल्कुल, गूगल पर मार जी से पूछिए।
2: अरे ये शहर में इकट्ठे टैक्सी में जा रहे हैं और तुम कह रहे हो कि हम छुप कर मिल रहे हैं।
3: उफ़ मेरा मतलब ये नहीं है, मेरा मतलब है कि हम साथ इकट्ठे कब रहेंगे। देखो फिर फटी कमीज और बटन देखो तो बटन भी नहीं है।
2: क्या करूं, कोई सीने वाला भी तो नहीं।
3: मैं सिया करूंगी हमेशा।
2: वादा? तो फिर मैं भी एक वादा करता हूँ।
3: क्या?
2: फैक्ट्री से कपड़े हमेशा फाड़ कर लाया करूंगा।

0: गाना सुनने को मिला है, ये इश्क मोहब्बत की है, कुछ अजीब रस्में, बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है। और यहाँ पे क्या लिखती है अमीना जी, ओके जी, कोशिश करेंगे, वैसे तो वक्त का तकाजा है, ये सही बात है। सरोजी सेठी जी लिखते
1: क्या
0: हैं,
1: कहते
0: खूबसूरत
1: हैं,
0: गीत सुनने को
1: क्या
0: मिला
1: कहते हैं
0: है,
1: अमीना जी ने क्या कहा?
0: गाने की फरमाइश है। वैसे एक फरमाइश प्ले हो चुकी है, एक ही प्ले होगी। वैसे निकलेस जी का फीडबैक है, वो सुन लेते हैं।
2: जयवंशिका
0: जी
2: जी, I don't know how can I say thank you to Mr. MS Parmal. You are so lucky girl. You have so intelligent father. Oh my
0: थैंक
2: God, I don't have any words. He know everything about Bollywood. Thank you so very much, Mr. Paramount.
0: थैंक यू सो मच फॉर दिस फीडबैक निकलेस
1: वेरी
0: जी।
1: वेरी थैंक्स. आई ग्लैड कि मिस्टर निक्शस इज अ ग्रेट मैन एंड
0: ही इज लाइकिंग इट।
1: लिसन रेडियो प्रोग्राम इन रेडियो गाना एंड रेडियो हॉट स्टार. ही इज वेरी जेंटल और नाइस पर्सन निकलस जी.
0: ओके जी, ओके जी, कोशिश करेंगे अमीना जी, बिल्कुल। और मोहम्मद कौसिन यासी जी कहते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना सुनने को मिला, मजा आ गया। और अगला गाना सुनवा रही हूँ मैं, उसके बाद बातचीत करते हैं, क्योंकि ये वाला गाना मुझे बहुत पसंद है। फिल्म एक रिश्ता का है, दिल दीवाना ढूंढता है एक हसीन लड़की। जी बिल्कुल, लड़की ढूंढता है। और
1: पहले वशिका जी गाना सुनने से पहले पहले मैं श्रोताओं की एक फरमाइश को पूरा करना चाहूंगा और
0: फिर
1: मुझसे
0: बाद में
1: कि
0: लगातार गाने जल्दी प्ले करेंगे, कोशिश करते हैं।
1: कोई नहीं मुझसे अगर प्रश्न पूछेगा तो आप गाने शुरू कर पढ़िएगा. तो किसी श्रोता ने, किसी हमारे लिसनर ने मुझसे पूछा था कि
0: निकलेस ने पूछा था।
1: निखिलेश जी ने पूछा था किशोर कुमार जी के बारे में. तो मैं निखिलेश जी को और सभी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जो ये अपने किशोर कुमार जी थे, इनका जो जन्म का नाम था, उनका नाम था आभास कुमार गांगुली. आभास कुमार गांगुली 4 अगस्त 1929 में पैदा हुए थे और इनका जो जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के खंडवा में एक बंगाली परिवार में हुआ था. और ये तीन भाई हुआ करते थे. एक थे अशोक कुमार जी, लीजेंडरी जो हमारे अभिनेता हैं अशोक कुमार जी, और इनके इनके तीसरे भाई थे जो सबसे छोटे वो थे ललित जी. तो
0: जी बिल्कुल।
1: ये थे, बताता था. उनके जो पिताजी थे उनका नाम था कुंजा लाल गांगुली. कुंजा लाल गांगुली थे और वो पेशे से एक वकील हुआ करते थे वंशिका जी. और उनकी जो मम्मी थी उनका नाम था गौरी देवी और वे एक गृहिणी होती थी, यानी हाउस वाइफ थी. वे अपने चार भाई बहनों में सबसे छोटे थे. उनके बड़े भाई का नाम था अशोक कुमार. हिंदी फिल्मों के एक स्थापित अभिनेता थे जिनकी प्रेरणा से किशोर कुमार जी बम्बई आ गए, जो बॉम्बे आ गए, जो मुंबई के नाम से प्रसिद्ध है. किशोर कुमार ने बिना किसी औपचारिक शास्त्रीय संगीत की शिक्षा अपनी गायकी का अमर सफर शुरू कर दिया. तो लेकिन उनकी अपनी आवाज की मिठास और भावुकता से उन्होंने हर दिल पर राज किया. अनुष्का जी, उन्हें सबसे पहला मौका दिया था संगीतकार खेमचंद प्रकाश जी ने 1948 में. अनुष्का जी
0: जी
1: फिल्म जिद्दी में अपना पहला गाना मरने की दुआएं क्यों मांगू गाने गाया उन्होंने, जिसका उन्होंने खेमचंद प्रकाश जी ने चांस दिया था. सफल जोड़ी जो उनकी हुई वो एस डी बर्मन और आर डी बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ उनकी जानकर जुगलबंदी ऐतिहासिक रही. माता पित मात गाता रहे मेरा दिल फिल्म गाइड में गाना उन्होंने गाया रूप तेरा मस्ताना आराधना फिल्म, और जिंदगी एक सफर है सुहाना अंदाज फिल्म में जो गाना गाया वो गाने सदा ही सदाबहार रहे. हर अभिनेता की आवाज में उन्होंने गाना गाया और 70-80 के दशक में इन्होंने राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर जैसे सुपरस्टारों के लिए सबसे अधिक गाने गाए और उन्हें बुलंदियों पर पहुंचाया. किशोर कुमार जी ने
0: जी
1: अपनी आवाज
0: बिल्कुल
1: के अभिनय
0: और निर्देशन जरूरी नहीं होते, म्यूजिक के साथ में गायक भी जरूरी होते हैं, गायक की आवाज से ही कई बार म्यूजिक।
1: अभिनय और निर्देशन की दुनिया, अभिनय में उनकी बहुत अधिक रुचि नहीं थी, फिर भी अपने भाई के दबाव में यानी अशोक कुमार जी के दबाव में आकर उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की थी। उनकी जो प्रमुख फिल्में आई थी उनके नाम दो श्रोताओं में आपको बताना चाहूंगा। चलती का नाम गाड़ी 1958 में आई, पड़ोसन 1968 में, और हाफ टिकट 1962 में। उन फिल्मों में उनकी हास्य भूमिका और गानों को आज भी क्लासिक माना जाता है। हाफ टिकट में के गाने में उन्होंने पुरुष और महिला दोनों की आवाज में गाकर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का मौका दिया। उन्होंने गाना गाया था जी फिल्म में, हाफ टिकट फिल्म में, जो उन्होंने अपने जेंट्स की आवाज में गाया था।
0: गाने का नाम क्या है?
1: गाने का नाम मैं भी बताता हूँ जी। उनके उन्होंने एक फिल्म और करी थी जी, दूर गगन की छाँव में, दूर का राही और चलती का नाम जिंदगी जैसी फिल्मों का खुद निर्माण और निर्देशन।
0: चलिए ठीक है, आधी जानकारी के बाद गाना प्ले करेंगे, फिर आधी जानकारी बाद में साझा करेंगे।
1: कर देता हूँ पूरी। किशोर कुमार के यहाँ व्यक्तिगत जीवन काफी चर्चा में रहा। उन्होंने चार शादियां की, रूमा सी की, गुहा ठाकुर से की, मधुबाला से की, योगिता बाली से की, और नैना चंदा वर्कर जी से की। उनके दो बेटे हुए, एक का नाम अमर जो उनकी पहली पत्नी से था और वो एक अच्छे सिंगर भी हैं, और सुमित कुमार उनकी चौथी पत्नी से हुए। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक के रूप में 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते और उन्हें इस बार की बहुत खुशी है। मध्य प्रदेश सरकार ने उनकी याद में किशोर कुमार सम्मान की स्थापना की।
0: बहुत प्यारी जानकारी है, आधी जानकारी गाने के बाद साझा करें तो अच्छा रहेगा।
1: थोड़ा सी जानकारी और है मिश्रा जी, मैं बताना चाहूंगा किशोर कुमार का जो निधन हुआ वो 13 अक्टूबर 1987 में बम्बई में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। उन्हें अनेक उनके शहर खंडवा में दफनाया गया, जहां उनकी इच्छा के अनुसार एक स्मारक बनाया गया है किशोर कुमार के नाम से। वह केवल एक गायक नहीं बल्कि एक संपूर्ण कलाकार, संगीतकार, गीतकार और निर्देशक भी थे, जिनकी यादें आज भी संगीत प्रेमियों के दिलों में जिंदा हैं। तो ये सभी बातें मैंने किशोर कुमार जी के बारे में बताई, और शायद आपको पता लग गया होगा किशोर कुमार जी की जीवनी
0: जी। बिल्कुल जीवनी आपने बहुत अच्छी सुनवाई, और जो मेरे को सवाल था ना अमीना जी ने उसको सवाल का जवाब दे दिया मुझे। वो गाना जो मैं बोली थी फीमेल और मेल वॉइस वाला, वो है आके सीधी है दिल से लगी दे नजरिया ओ बिजुरिया, ये वाला गाना है। और लिखती है मेरे फेवरेट सिंगर है निकलेश, लिखते थैंक यू सो मच फॉर नाइस इन्फॉर्मेशन। संदीप सुतार जी लिखते हैं आज प्रमाण से अजी पुरानी फिल्म का जिक्र चल रहा है तो साहब बीवी और गुलाम मूवी के बारे में बताइए, मीना कुमारी जी के बारे में बताइए। मैंने बहुत सी फिल्में देखी है, उनका बदन कपड़े से ढका होता है और छुपाया जाता है, ऐसा क्यों है? इसके बारे में जानकारी देंगे प्रमाण जी, पर पहले गाना सुनवाते हैं क्योंकि आप सभी की फरमाइशें भी हमारे पास है। एम डी फैज आलम जी आपका गाना सुनवा दिया है, एक फिल्म एक रिश्ता से दिल दीवाना ढूंढता है एक हसीन लड़की जी। बिल्कुल ढूंढता है, एंजॉय कीजिए।

0: बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है एमडी फैज आलम जी, और फिर पे आ चुके हैं मेरे पास मोहम्मद कौसम नियाजी जी, कहते हैं वेरी नाइस सॉन्ग की फरमाइश। अमीना खान जी कहते हैं लेजेंडरी सिंगर हैं किशोर कुमार जी, ना ऐसा कोई है था ना कोई है ना कभी होगा, 100,000 ऑफ थैंक यू फॉर दिस लेजेंडरी सिंगर इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे सरफराज पटेल जी लिखते ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनने को मिला है, वेरी वेरी नाइस प्रोग्राम है। और जैसे कि अब जानकारी मांगी थी संदीप सुतार जी ने, तो जानकारी देते हैं जो उन्होंने पूछा था, साहब बीबी और गुलाम मूवी का की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो बताइए परमार जी क्या इन्फॉर्मेशन।
1: ये हमारे श्रोता सितार जी हैं,
0: संदीप सितार जी।
1: संदीप सितार जी, आपको मैं यही बताना चाहूंगा साहब बीबी और गुलाम के बारे में कि ये हिंदी सिनेमा के एक अत्यंत प्रशंसित और वास्तविक क्लासिक फिल्म थी। इसका जो निर्माण किया था दिग्गज फिल्म कार गुरुदत्त ने बनाई थी फिल्म, और निर्देशन अबरार अलवी ने किया था। ये फिल्म बिमल मित्रा के प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास पर आधारित थी, और 19वीं सदी के अंत में बंगाल के जमींदारी पतन को भी दर्शाती है। तो इस फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, वंशिका जी आप भी सुनिए। फिल्म की जो एक कहानी है, ये कलकत्ता के एक पुरानी हवेली में रहने वाले जमींदारों की विलासी जीवन शैली और पतन के इर्द गिर्द घूमती है। कहानी गुरुदत्त जी पर घूमती है, जिनका नाम फिल्म में भूतनाथ नाम के से था, और एक साधारण और महत्वाकांक्षी युवक की आंखों से दिखाई गई है। इस हवेली की छोटी बहू यानी मीना कुमारी अपने शराबी और अय्याज पति के प्यार को पाने के लिए तरसती रहती है। पति को घर पर रोके रखने के चक्कर में वह खुद शराब पीने की लत लगा बैठती है, जिससे उसकी जिंदगी खुद मोड़ ले लेती है। इस फिल्म के जो कलाकार थे वो थे मीना कुमारी जी, छोटी बहू के रूम में थी। मीना कुमारी ने अपने कैरियर का सबसे सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया था इस फिल्म में। उनके इस दर्दनाक और मार्मिक प्रदर्शनों ने उन्हें अमर कर दिया था। तो और मैं बताना चाहूंगा, गुरुदत्त जी भी थे इसमें भूतनाथ की भूमिका में। रहमान ने छोटे सरकार के रूप में इसमें किरदार निभाया था, और वहीदा रहमान जी भी थी जो जबा के किरदार में थी। इसका इस फिल्म का संगीत हेमंत कुमार जी ने दिया था, और इसके बोल शकील बदायूनी जी ने लिखे थे। ना जाओ सैया छुड़ा के बैया, कोरा कागज था ये मन मेरा, और जिए तो जिए कैसे जैसे सदाबहार गीत आज भी लोगों की जुबान पर हैं। तो अभी एक प्रश्न में मुझसे और पूछा गया था मीना कुमारी जी के बारे में कि वो अपना हाथ क्यों ढककर रहती थी। इसके बारे में मशिका जी मैं बताता हूँ अभी इस गाने के बाद, आप देखिए किसकी फरमाइश है वो पूरी कीजिए पहले।
0: जी बिल्कुल, फरमाइश को प्ले करते हैं जो कि हमें भेजी है यहाँ पे। उससे पहले फीडबैक है, फीडबैक पे नजर डालती हूँ। आरी जी लिखते हैं प्रोग्राम बहुत ही लाजवाब चल रहा है, बहुत प्यारी प्यारी जानकारियां मिल रही है परमार सर जी, थैंक यू सो मच संडे मस्ती को इतना प्यार बनाने के लिए। और निकलेस लिखते हैं आज वंशिका जी वाज सो लकी, वो आई हैव सच इंटेलिजेंट फादर, थैंक यू सो मच, एंड नजर ना लगे मेरे फादर जी को। उसी बात पे गाना सुनवा रही हूँ जो कि भेजा है विष्णु चंद्र जी ने, बादल मूवी का जुगनी जुगनी। तो यानी कि तड़क भड़क वाला माहौल बना दिया विष्णु जी आपने, एंजॉय कीजिए।

0: क्या गाना सुनने को मिला है, जुगनी जुगनी, बहुत ही प्यारा पंजाबी टाइप का सॉन्ग सुनवा दिया यार, क्या क्या कहें, कितना अच्छा गाना है।
1: वाह वाह वाह, ये जिस भी श्रोता ने, क्या नाम था इन श्रोता का जिन्होंने गाना सुनवाया?
0: जी विष्णु चंद्र जी ने।
1: विष्णु चंद्र जी, आपको तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इतना खूबसूरत और प्यारा गाना सुनाया हमारे प्रोग्राम में, और बहुत ही खूबसूरत और प्यारा गाना था वंशिका जी ये।
0: थैंक यू सो मच जी। और निकलेश लिखते हैं, इस गाने को मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी सुना है, कल भी सुना था। अच्छा कल भी सुना था, अच्छा जी। और अमीना खान जी, जी बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ी हैं आप, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। ओके जी, जी बताती हूँ, और बिल्कुल सही पकड़े हैं। और यहाँ पे रोहित सिंह जी लिखते हैं, बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला, जानकारी बहुत ही प्यारी लग रही है जी, बिल्कुल। चलिए जानकारी को ही कंटिन्यू करते हैं।
1: तो बातें चल रही थी वंशिका जी अभी साथ बीबी गुलाम फिल्म के बारे में, तो और हमारे श्रोता ने ये भी पूछा था कि मीनल कुमार जी के साथ क्या इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बारे में मैं सभी श्रोता को यही बताना चाहूँगा कि वो शूटिंग कर रही थी और उन्हें जो शराब की लत थोड़ी लग गई थी मीना कुमार जी को, और वो
0: रियल में लगी थी,
1: रियल में बताता हूँ मैं आपको। और वो एक बार की बात है, 1951 की बात है, और वो कार में बैठकर जा रही थी और कार का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में उनके बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली, जिसे पिंकी फिगर भी कहते हैं हम, वो टूट गई थी। इलाज के बाद उस उंगली का आकार थोड़ा सा मुड़ गया था, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी, और अपनी इस उंगली को छुपाने के लिए ही वो हमेशा हाथ की पोजिशन का ध्यान रखती थी और साड़ी से छुपा कर, तो यह कारण था मीना कुमार जी का कि उंगली छुपाने का।
0: अच्छा जी, यानी कि बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई थी उनके साथ ही।
1: हाँ जी, और इस ट्रेजेडी के लिए अगर हमारे श्रोता कोई वीडियो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर,
0: इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप सभी को।
1: और इन्फॉर्मेशन जो इंसिडेंट हुआ था 1991
0: में, अच्छा बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी।
1: और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 1 अगस्त 2019 महज 39 साल की आयु में 31 मार्च 1972 को वो इस दुनिया से चली गई मीना कुमार जी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको बताइएगा, और कोई भी किसी अभिनेता अभिनेत्री फिल्म या किसी बारे में कोई प्रश्न पूछना चाहे तो आप पूछ सकते हैं। तो
0: जी बिल्कुल पूछ सकते हैं। अगला गाना सुनवा देती हूँ मैं, जिनकी पसंद यहाँ भेजी हुई मुझे, अजय भगत जी ने, तुमको देखा तो ये क्या हो गया, लगता है सारी दुनिया हंसी है। बिल्कुल वंशिका जी आपको डेडिकेट है, तो चलिए अजय भगत जी सुनवा दिया आपकी पसंद का ये प्यारा गाना, एंजॉय कीजिए।

0: क्या गाना सुनवाया अजय भगत जी आपने? तुमको देखा तो क्या ये हो गया, सब कुछ हंसी हो गया बिल्कुल। मोहम्मद कौशल नियाजी जी कहते हैं बहुत ही बेहतरीन गाना सुनने को मिला है, लाजवाब पसंद है। अमीना जी लिखती प्रोग्राम बहुत ही खूबसूरत हो रहा है, समा बंधा हुआ है। आज के प्रोग्राम का नाम फिल्मिस्तान विद रेडियो हॉटस्टार गुलिस्तान। जी बिल्कुल, बहुत ही प्यारा नाम। अमीना जी हर रोज बता डेली के जो शोज होते हैं जिनमें जुड़ती हैं, डेली के शोज को नाम देती हैं, और
1: वाह,
0: आज के शो का नाम रखा इन्होंने फिल्मिस्तान विद रेडियो हॉटस्टार गुलिस्तान।
1: ठीक है ख्याल कोशिश करेंगे। अमीना जी आपकी ये जो फीडबैक है और जो आपने नाम सुझाया है
0: बहुत ही प्यारा लगा।
1: बहुत प्यार लगा, हौसला है, हम यही नाम दे रहे हैं इस प्रोग्राम को।
0: जी,
1: और
0: अजय भगत जी
1: अभी
0: लिखते हैं थैंक यू सो मच वंशिका जी, आपने हमारे गाने को प्ले किया। और निकला जी तो वंडरफुल, गुड प्रोग्राम, गुड चॉइस। और सबोजी सेठी जी कहते हैं कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। संदीप सुतार जी लिखते हैं प्रमा सर जी, मीना कुमारी जी, उनका एक्सीडेंट के बारे में मुझे पता नहीं था, मुझे आधी अधूरी जानकारी मालूम थी, जानकारी अच्छी लगी। और कोई सवाल फिल्म के बारे में हम अगले संडे को जरूर लाएंगे, धन्यवाद। जी बिल्कुल
1: तो देखिए मेरे श्रोताओं, मेरे सभी श्रोताओं, अभी एक श्रोता का मेरे पास मैसेज आया और उन्होंने मुझसे पूछा
0: कुंता बेनी जी भी जुड़
1: जो,
0: चुकी
1: हाँ
0: हैं,
1: जी कुंता बेनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद
0: लिखती
1: आपका।
0: हैं स्वागत
1: और
0: है।
1: श्रोता जी ने मुझसे पूछा जी एक्सीडेंट कैसे हुआ और कहाँ हुआ, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ था ये एक शूटिंग, एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे और ये 21 मई 1951 को मीना कुमारी जी महाबलेश्वर से मुंबई वापस लौट रही थी, बॉम्बे वापस आ रही थी, तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था जी। और उस एक्सीडेंट के दौरान मीना कुमारी जी को गहरी चोटें भी लगी थी और उनके बाएं के हाथ की उंगली भी टूट गई थी। इतना ही नहीं, इस चोट के कारण मीना कुमारी को इस उंगली को का जो आकार था वो भी गोल हो गया था। और कई बार जो डायरेक्टर होते थे, प्रोड्यूसर होते थे, वो भी इन्हें कहा करते थे आप अपना हाथ खोल के रखिए, लेकिन मीना कुमारी जी ने इस बात को कभी भी नहीं माना और वो हाथ ढककर ही शूटिंग किया करती थी। तो ये बातें अभी जिस श्रोता ने पूछी थी शायद उनको जवाब मिल गया होगा। तो आगे वंशिका जी देखिए कौन किसकी फरमाइश है, किसकी फरमाइश सुनाना चाहती हैं आप, सुनिए।
0: थैंक यू सो मच जी इतनी प्यारी जानकारी के लिए। और अगली फरमाइश की तरफ जल्दी ही चलेंगे, बट उससे पहले एक मेरी पसंद का गाना आप सभी एंजॉय कीजिए, मुझे बहुत पसंद है ये गाना, आप सभी को डेडिकेट करती हूँ। आज यमन जी, उनकी सुंदरता की मूरत जी, परमार सर जी, आपको भी और सभी लिसनर्स को, बेस्ट फ्रेंड जी, सबको डेडिकेट है, सुनिए एंजॉय कीजिए। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है।
1: तो
0: बिल्कुल,
1: वंशिका जी आपने गाना तो अपनी तरह का सुना दिया, लेकिन मैं इस गाने के बारे में दो लाइनें आपको बताना
0: थोड़ी देर
1: चाहूंगा।
0: बाद गाने के बाद बताइएगा।
1: तो

0: मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
1: बहुत ही खूबसूरत प्यारा गाना था वंशिका जी, और मैं आपको इस गाने के बारे में भी कुछ बताना चाहूंगा। तो ये बताऊंगा, ये फिल्म गाइड का गाना था, और ये वहीदा रहमान जी पर फिल्माया गया गाना था, और बहुत ही खूबसूरत इसमें रोल अदा किया था वहीदा रहमान जी ने, और गाइड का जो रोल किया था वो देवानंद जी ने किया था। और अभी मेरे पास एक

0: रहमताबाद कब्रिस्तान में भी दफनाया गया। और इनकी जो उम्र मृत्यु हुई थी 31 मार्च 1972 में। तो मेरे दोस्त को ये सारी जानकारियां मिल गई होंगी, और ये भी बता दूं कि उस समय उनकी उम्र महज 38 साल की थी। तो दोस्तों पता लग गया होगा आपको। और वंशिका जी, अभी सभी थोड़ा दोस्तों से और सभी श्रोता से मैं ये कहना चाहूंगा कि वे अपनी अपनी जानकारी हमसे साझा करें अगले प्रोग्राम में, और पूछे कि हम उनको
1: अगली बार के लिए आप सभी सवाल जमा करके रखिए कि आपको कौन सी जानकारी चाहिए, क्योंकि गूगल आरजे प्रभात जी हमारे पास बैठे हुए हैं जानकारी लेके। और इसी बात पे सुनियांश कुमार जी जुड़ चुके हैं, लिखते हैं वंशिका जी राधे राधे, हम भी जुड़ चुके हैं। और मोहम्मद कौशल नियाजी जी कहते हैं वेरी वेरी नाइस सॉन्ग की फरमाइश है। निकलस जी लिखते हैं ऑल टाइम वंडरफुल चॉइस आज वंशिका जी। कुंता बेनी जी लिखती है बहुत ही ब्यूटीफुल गाना सुनने को मिला है, दिल से शुक्रिया। अमीना खान जी कहती है आप दोनों की नोकझोंक खूब है। जी बिल्कुल, पूरे दिन ऐसी चलती रहती है हमारी नोकझोंक। आरिफ जी कहते हैं बहुत ही प्यारा सदाबहार गाना सुनने को मिल गया, थैंक यू सो मच आया वंशिका जी। और अजय भगत जी लिखते हैं आज फिर जीने की तमन्ना है, मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग है, बहुत ही प्यारा गाना है, थैंक यू सो मच जी। थैंक यू
0: सभी श्रोताओं की पसंद बहुत प्यारी प्यारी आ रही है वंशिका जी।
1: जी बिल्कुल, और लोग
0: और काफी खूबसूरत गाने भेज रहे हैं, और हम चाहते हैं ऐसे ही खूबसूरत गाने वो आगे भी भेजते रहे जिन्हें हम उनकी पसंद के साथ साथ सभी श्रोताओं को भी सुनाते रहें।
1: जैसे कि आप सभी ने अभी सुना मेरी पसंद का गाना आज फिर जीने की तमन्ना है, तो वैसे ही गाना मेरे पर निकला जी ने भेजा है, मेरा नाम जोकर मूवी का जीना या मरना, ये वाला गाना सुना चाहिए। सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।
0: इसके सिवा फिर जाना कहां, यही गाना ना
1: जी, गाने लगे प्रमार जी, तालियां बजानी चाहिए, एंजॉय कीजिए।

0: क्या गाना सुनवाया निकले जी आपने, जीना यहाँ मरना है यहाँ, बहुत ही प्यारी पसंद है।
1: वाह वाह वाह, व्हाट ए वंडरफुल सॉन्ग निखिलेश जी, वाह वाह वाह वाह वाह, व्हाट ए नाइस फरमाइश है आपकी। और मैं सभी दोस्तों को यही कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी अपनी पसंद के खूबसूरत खूबसूरत गाने भेजा भेजा कीजिए, जिसे हम अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकें। और दोस्तों, आपको फिल्मों की जानकारी की आज मिली, उसके बारे में बताइएगा आपको कैसी लगी। और मैं हमारे अगले प्रोग्राम में अगले संडे को 3 बजे रेडियो गाना पर फिर आइएगा और सुनिएगा अपना पसंदीदा प्रोग्राम फिल्मी बातें। हिमांश
0: थैंक यू
1: का जी,
0: जी
1: सुनाइए आप
0: जी
1: किसकी पसंद
0: बिल्कुल।
1: का गाना
0: और
1: सुनाएंगे।
0: यहाँ पे निकले से लिखते थैंक यू सो मच आज वंशिका जी एंड परमार जी, आपने मेरे गाने को प्ले किया। ये गाना मेरे दोस्त की मम्मी को बहुत पसंद, यानी कि सिमरन जी को। और कुंता भी नीचे लिखती है बहुत ही ब्यूटीफुल फरमाइश है निकले जी, इतना प्यारा गाना सुनवाया। मोहम्मद कौशल न्याजी जी कहते हैं जी बिल्कुल, लग रहा गाना आप ही का है, निकी और पूछ पूछ। और अमीना खान जी लिखती है प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले ये कहूंगी कि आप दोनों के जरिए हम उस दौर में चले गए जिसका तसव्वुर बहुत खूबसूरत है, एक एक गम नुमा और मशकूर है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमीना खान जी। और ओके जी, थैंक यू सो मच जी।
1: और मैडम जी, वंशिका जी, मैडम वंशिका जी, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, अमीना खान जी के जो फीडबैक होते हैं बहुत ही खुश और बहुत ही प्यारे हैं। तो श्रोताओं, आप भी ऐसे ऐसे फीडबैक दीजिए हमें। और मैं अमीना खान जी का तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ, शुक्रिया अदा भी करता हूँ कि वो हमारे प्रोग्राम से जुड़ी और इतना अच्छा उन्होंने फीडबैक दिया और इतने प्यारे प्यारे गाने भी भेजे। तो
0: जी इसी
1: दोस्तों,
0: बात पे
1: सुना दीजिए।
0: मोहम्मद कौशल नियाजी जी का गाना सुनाएंगे, फिर एक और गाने के साथ इजाजत लेंगे जल्द ही। तो लिखते हैं गाना सुनना है, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का, जी बिल्कुल कैसे जीत लेते हैं, हमें भी जानना है, हमें भी जीतना है। एंजॉय कीजिए।

0: क्या गाना सुनने को मिला है, कैसे जीत लेते हैं लोग दिल किसी का। बिल्कुल जीत लेते हैं, और ऐसे जीतते हैं कि वो फिर वो जिनका दिल होता है उसका वो रह ही नहीं जाता।
1: वंशिका जी, मैं ये कहता हूँ, एक क्वेश्चन नेहा जी का जो गाना था बेहद खुश और बेहद प्यारा और लाजवाब था। मैंने इसे पूरा सुना और पहले भी सुना, ये गाना बहुत ही खूबसूरत और प्यारा गाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया क्वेश्चन नेहा जी, आपका ये जो गाना आपने भेजा।
0: और आई सिंधी थे आज के प्रोग्राम, बहुत ही काबिले तारीफ। अनसुनी कहानियां सुनने को मिली, फिल्मों से जुड़ी हुई बातें सुनने को मिली। लाजवाब प्रोग्राम आज परमार जी, आज वंशिका जी, थैंक यू सो मच। मोहम्मद कौशन याजी जी कहते हैं थैंक यू सो मच, आपने मेरा सॉन्ग प्ले किया। और निकलस जी का वॉइस ब्रेक है, वो भी सुन लेते हैं क्या कहते हैं।
2: थैंक यू सो वेरी मच आरजे वंशिका जी
0: हाँ जी,
2: एंड मिस्टर आरजे परमल, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आई एम सो हैप्पी एंड आई एम प्ले सो क्लेवर। थैंक यू, आई टेक केयर, आई लव यू बोथ, गुड बाय एंड टेक केयर, बाय बाय,
1: गुड बाय एंड टेक केयर मिस्टर निकलस। I like you very much and your feedback is so beautiful.
0: थैंक यू सो मच। अमीना खान जी लिखती है प्यारी सी आरजे वंशिका जी, प्यारी से आरजे परमा जी, आपने इतना दिल खुश वाला करने वाला प्रोग्राम किया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपको भी शुक्रिया अमीना खान जी, इतने
1: बहुत
0: दिल खुश
1: बहुत
0: करने वाले
1: शुक्रिया,
0: फीडबैक्स
1: बहुत
0: देने
1: बहुत
0: के लिए।
1: शुक्रिया अमीना खान जी। और जितना भी आपका शुक्रिया अदा करें वो बहुत कम है, और बहुत ही प्यारा लगा हमें आपका फीडबैक देना।
0: जी बिल्कुल, आपने जो जिस प्रकार से फीडबैक्स दिए हैं ना, और आपने जो हमारे शो का जो स्पेशल सा नाम दिया है, उसके लिए भी शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं। और यहाँ पे रोहित सिंह जी लिखते हैं बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला, आज के प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच। और कुंता बेनी जी भी जुड़ी हैं, कहती हैं कि बहुत ही प्यारी फरमाइश है, इतने प्यारे प्यारे गाने सुनने को मिल रहे हैं, आज तो प्रोग्राम में चार चांद लगे हुए हैं। बिल्कुल चार चांद लगे हुए हैं। और
1: कौन
0: जी
1: कौन कहती है?
0: जी कुंता बेनी जी कहती हैं।
1: कुंता बेनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना खूबसूरत और प्यारा फीडबैक दिया, और मैं दिल से आपका धन्यवाद कहना चाहूंगा।
0: जी, और एक और जानकारी अगर मैं देना चाहूँ तो ये है कि अगले हफ्ते का जो प्रोग्राम होगा उसमें हम मेन टॉपिक ये भी लेके चलेंगे कि कपूर फैमिली के ऊपर, यानी कि मोस्टली जो बातचीत होगी कपूर फैमिली ट्री के ऊपर बातचीत होगी, चाहे वो पृथ्वीराज कपूर जी से लेके आज के रणबीर कपूर से लेके राहा कपूर तक की बात हो, पर उनके ऊपर बातचीत करेंगे, है ना परमार जी? क्योंकि फैमिली ट्री काफी लंबा है और बहुत सी कहानियां उसमें छिपी हुई है, सुनी अनसुनी कहानियां छिपी है, चाहे वो करीना जी की हो या चाहे किसी की भी हो, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी बातचीत है, और इतने प्यारे प्यारे गाने हैं ना, क्या कहें। और भी मैं अगर हो सकेगा तो मैं भी कुछ कुछ कहानियां लेके आऊंगी, जैसे आज परमार जी ने पुरानी मूवीज के बारे में कहानियां खोली है ना, तो मैं नई मूवीज के बारे में कहानियां खोलूंगी। मेरे ख्याल से परमार जी आपको नहीं पता होगा नई मूवीज के बारे में इतना कुछ।
1: देखिए ऐसा है वंशिका जी, सुनता तो मैं रहता ही हूँ और ज्यादा मैं गहराई तक जाता भी नहीं हूँ, क्योंकि अब मेमोरी भी थोड़ी वीक हो गई है मेरी।
0: कहाँ मेमोरी वीक है, आपको हर चीज तो याद है, आपको अभी तक।
1: चलो ये पुरानी बातें हैं, पुराने किस्से हैं, ये तो याद रहते ही हैं वंशिका जी, बाकी नए किस्से थोड़े नए हैं जो मेरी समझ से
0: तो बिल्कुल वही नए नए किस्से मैं
1: फिर
0: आपको
1: भी कोशिश करूंगा मैं कुछ ना कुछ बताने की,
0: और मैं आपको
1: आप बताएंगे
0: जी
1: ही।
0: बिल्कुल, आपने हमें बताया ना आज इतनी सारी स्टोरियां सुनाई, आपने मीना कुमारी जी के बारे में बताया, आपने मधुबाला जी के बारे में बताया आपने, और इसके साथ साथ में आपने और भी बहुत
1: किशोर कुमार जी,
0: जी किशोर कुमार जी के बारे में बताया आपने, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी आपने कि किनका किस सिलसिला मूवी जी सिलसिला मूवी के बारे में बताया आपने, और इसके साथ वो जो एक और मूवी के बारे में, हाँ साहेब बीवी गुलाम, उस मूवी के बारे में बताया आपने, और मुगले आजम के बारे में बताया आपने, अनारकली के बारे में बताया आपने, मतलब सारी की सारी महादेव ज्यादा मूवीज के बारे में तो आपने बता ही दिया है, और आपने यही बताया कि इनका किससे रिश्ता होने वाला था, किनका किससे नहीं हो पाया रिश्ता, मतलब
1: बिल्कुल बिल्कुल, जब बातें बात चलेंगी तो सारे किस्से उधड़ेंगे और बाहर आएंगे भी।
0: जी जी
1: तो हम बताना चाहेंगे,
0: बहुत सारी जानकारी आज आपके थ्रू मुझे मिली, मैं आपको दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी, और आप सभी से भी कहना चाहूंगी कि आप सभी ने इतने प्यारे प्यारे जो सवाल पूछे कि इस बारे में हमें जानकारी चाहिए, इस बारे में हमें जानकारी चाहिए, वो आप पूछते नहीं है तो हम बताते नहीं, आपने पूछा इसलिए बताया, इसलिए आप सभी को भी शुक्रिया। और अगले हफ्ते भी आप इससे बढ़िया बढ़िया सवाल, इससे बढ़िया बढ़िया जानकारी पूछने के लिए अपने दिमाग में क्वेश्चंस लेके आइएगा, ताकि हमारे गूगल प्रमाण जी हमें बता पाए, और मैं भी कुछ कुछ चीजें साझा कर पाऊँ आप सभी के साथ, अगर नई मूवीज की कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मैं भी साझा कर पाऊंगी आप सभी के साथ। आज का शो काफी खूबसूरत रखा आप सभी ने, और
1: देखो खूबसूरत तो हमारे श्रोताओं ने, हमारे भाई बहनों ने इसे बनाया है, और इतना प्यारा शो इन्होंने किया, और इतने प्यारे प्यारे प्रश्न पूछे, क्वेश्चन पूछे उनका, जो हमने जवाब भी दिया।
0: जी बिल्कुल,
1: तो बहुत ज्यादा खुश हूँ मैं आज अपने श्रोताओं से, और जितने ज्यादा श्रोता और जुड़ते हैं उनके बारे में उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा।
0: बिल्कुल, अब बस एक काम करते हैं, इजाजत लेते हैं आप सभी से, यही कहेंगे खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए रेडियो गाना, बजाते रहो दिल से, है ना कुमार जी?
1: देखिए ऐसा है, बजाते रहो दिल से रेडियो गाना, ये तो करिएगा सभी। और जाने से पहले वंशिका जी मेरी पसंद का भी ये गाना सुनवा दीजिए।
0: जी बिल्कुल, उसी को सुनवा के जा रही हूँ साथ में। और यहाँ पे कुंता बेनी जी लिखती है, आज के प्रोग्राम में मैं देर से जुड़ी हूँ, नेक्स्ट संडे जल्द से जुड़ने की कोशिश करूंगी क्योंकि आज मुझे कुछ काम था। परमा जी और राजेश, परमा जी राजेश खन्ना जी के बारे में पूछना है क्योंकि मेरे पापा राजेश खन्ना के जबरदस्त फैन थे। मैं कुंता जी जरूर, मैं हम आपको बताएंगे राजेश खन्ना जी के बारे में,
1: पूछेगा जी
0: अगले संडे बता पाएंगे
1: आपको। अगले संडे को आपको राजेश खन्ना जी के बारे में पूरी डिटेल से बताएंगे और जो जो आप पूछना चाहती हैं जरूर पूछिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुंता बनी जी, आप इतना अच्छा फीडबैक देती हैं, इतनी
0: और आपने जो इन्फॉर्मेशन पूछी है ना, अब हमने नोट डाउन कर लिए प्रमाण जी ने दिमाग में। अगले हफ्ते मेरे ख्याल से सबसे पहला टॉपिक राजेश खन्ना जी के बारे में ही खुलने वाला है।
1: बिल्कुल बिल्कुल जी, और बहुत ही खूबसूरत प्यारे अभिनेता हुआ करते थे राजेश खन्ना जी,
0: जी
1: उनके बारे में भी बहुत जानकारियां हैं जो मैं सभी साझा करूंगा अगले संडे को।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए इजाजत लेते हैं और सुनवा के जाती हूँ परमार जी की पसंद गाना, इजाजत लीजिए परमार जी।
1: ठीक है श्रोताओं, अब चलता हूँ मैं और साथ में वंशिका जी भी चल रही हैं, और जाने से पहले आप मेरी पसंद का गाना सुनिएगा और हो सके तो फीडबैक भी दीजिएगा। ये जो फीडबैक है अगले प्रोग्राम में मैं पढ़ूंगा आपकी।
0: जी जी,
1: और
0: आज जो
1: लीडर
0: हम लीडर बोर्ड देख लेते हैं कि लीडर बोर्ड में टॉप पे कौन चल रहे हैं ये भी देख लेते हैं, नजर डाल लेते हैं। लीडर बोर्ड पे फर्स्ट पोजीशन पे अमीना खान जी, सेकंड पे नाहिद जी, थर्ड पे मोहम्मद कौसर नियाजी जी, फोर्थ पे निकलस जी, फिफ्थ पे कुंता बेनी जी, सिक्स पे आरिफ जी, सेवन्थ पे एमडी नाजिम जी, एट पे सर्वजीत सेठी जी, नाइन्थ पे मनीषा जी, टेंथ पे गजानन जी।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी शाम
1: के
3: 5 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से।
0: गुड इवनिंग, बाय जी। बिल्कुल, टेक केयर, बाय बाय बाय,
1: थैंक यू वेरी मच,
0: एंजॉय कीजिए, बाय बाय बाय।
1: सुनिए मेरी पसंद का गाना
0: जी, बिल्कुल तेरा जाना, दिल के अरमानों को लूट जाना, नहीं जाना हमें पर जाना पड़ेगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।

0: कहिए, क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए, कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार मूडी चॉइस आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में सुनिए 1960 से लेकर 1985 तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
1: हाय, हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। आ गया दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त अमन, एक बार फिर से संडे स्पेशल में। और आज के संडे स्पेशल का नाम है मूडी चॉइस। बिल्कुल मूडी चॉइस में आज नंबर वाले गाने प्ले होने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मेरे पसंद के गाने एंजॉय कीजिए। भाई, आते हैं इस गाने के बाद आपका वेलकम।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत से दोस्त जुड़ते गए हैं, सभी का वेलकम करते हैं। सबसे पहले जुड़ने वाले सरफराज जी साउथ अफ्रीका से, बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम असलाम भाई जान। और उनके बाद है संध्या पटेल जी, वेलकम दीदी आपका भी। और साथ ही साथ राजेश कुमार जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है राजेश कुमार जी। साथ ही साथ जुड़ चुके क्या नाम है, सुनीता गोप जी सरायकला झारखंड से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। बीके पंत जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है बीके पंत जी। और नाहिद अंसारी जी जुड़ चुके हैं, वेलकम है नाहिद जी। साथ ही साथ सर्वेश भगत जी क्या कह रहे हैं,
1: अरजय अमन सर जी शुभ संध्या, नमस्कार नमस्ते जी, हम भी जुड़े हुए हैं। और आपका ओपनिंग सॉन्ग बहुत लाजवाब, अच्छा लगा गाना सुन के, थैंक यू,
0: वेलकम जी आपका भी। और साथ ही साथ अशोक देशमुख जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अशोक देशमुख जी। संतोष गौंड जी हैं, वेलकम है। और आत्माराम पाटिल जी हैं, वेलकम करते हैं आपका भी। जाकिर खान जी हैं, और मीना इब्राहिम जी हैं, और आरिफ सिंधी जी हैं, तो सभी का वेलकम करते हैं। और बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो मैसेज नहीं करते हैं, सिर्फ सुनते रहते हैं, सभी का वेलकम करते हैं। और रवि मोहन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। आज के प्रोग्राम का आगाज मैं इस गाने के साथ करना चाहूंगा, गाने की डिमांड आई है इन कायनात जी का। कायनात जी 12 महीने में 12 तरीके से तुझ

0: वेलकम बैक। बहुत से फीडबैक आ चुके हैं मेरे पास और नाजिम जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत वेलकम है नाजिम जी आपका भी। और ये असलम राणा जी बहुत दिन बाद जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है असलम राणा जी। लगता है आज सूरज पूरे के बजाय पश्चिम से निकल गया है। बहुत बहुत वेलकम है, वालेकुम सलाम आपका भी। और हुकुमचंद जांगड़ जी जुड़ चुके हैं कोटा राजस्थान से, बहुत बहुत वेलकम करते हैं। आत्माराम पंडित जी बहुत बहुत वेलकम है आपका भी, ओपनिंग गाना इनको बहुत अच्छा लगा है। बाबूलाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं बाबूलाल रंजना जी। और ये फीडबैक क्या कहते हैं
1: अमन सर जी, नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: मैं सरबजीत सेठी फाजिलका पंजाब से, कैसे हैं आप?
0: बहुत अच्छा, आप बताइए।
1: हम भी अपने स्थान पर ठीक हैं, हम भी आपके कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं, तो सुनते रहिए रेडियो होस्टार जो सबको दीवाना बना देगी।
0: ओके जी, धन्यवाद आपका भी। और रवि मोहड़े जी जुड़ चुके हैं, क्या कहते हैं?
2: भाई हम तो अमन सर की बारात में पैदल नहीं जाएंगे, नजदीक पास होगा आधे किलोमीटर तक, तो फिर ठीक है। ओके
0: ओके जी। और यहाँ पे मुबारक हुसैन जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और अब अगला जो गाने की डिमांड है वो हमारे राजेश कुमार जी का है, ग्रेटर नोएडा हबीबपुर से सुनना चाहते हैं। 12 महीने लाइन मारी फिर भी इनका लगा नहीं नंबर। ओहो।

आज बहुत मुश्किल है अकेला लौट के घर को जाना, लौट के घर को जाना। मेरे दिल का कमरा खाली है।

0: वेलकम बैक। और अशोक पाल जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है अशोक पाल जी आपका। नाजिम जी भी लिखते हैं कि ओके ओके, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और अगला जो डिमांड है राधे जी का, राधे राधे जी, और व्हाट इज मोबाइल नंबर, क्या बात है जी, तो सुनाऊंगा क्योंकि मुझे भी नंबर चाहिए ना। और हाँ, आपने कहा है कि अगर आपका वो मतलब अगर आपके फोन में स्पीड एरर में कोई नंबर होगा तो वो किसका होगा? जी बिल्कुल, वो मेरा समन स्पेशल जी का होगा। एंजॉय कीजिए, एंजॉय द ट्रैक राधे जी, राधे राधे आपको।
1: हेलो 9821026212 BPL। अरे 9820262 35 मैच टच।

व्हाट इज मोबाइल नंबर? ओह माय गॉड, कास्ट मुझे भी मिल जाता। वैसे यहाँ पर राजेश कुमार लिखते हैं थैंक यू सो मच अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। और नाहिद जी लिखते हैं सुपर सुपर फरमाइश सुनने को मिला है, बहुत अच्छा लगा है। और यहाँ पे बाबूलाल जी लिखते हैं राधे जी के पसंद बहुत ही प्यारा लगा है, राधे राधे। एंड यहाँ पे रवि मोहड़े जी लिखते हैं कि वाह क्या बात है सर जी, इतना फ्रेश हो जाता हूँ कि बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाता है आपका प्रोग्राम सुन के, और बहुत ही शानदार लगता है, थैंक यू सो मच। और इनके पास से मनीषा शर्मा जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका भी। इसलिए अगला जो मैं ट्रैक प्ले करने वाला हूँ वो है हमारे एमडी नाजिम जी का, और अब तो भाई पूछना पड़ेगा चलती है क्या 9 से 12, चलो ना।

और बता दूं कि आज जाकिर मुरानी जी के शहजादी वो स्वयं मतलब सुमैया मुरानी जी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल।

बिल्कुल टन टना टन टन टन टारा चलती है क्या 9 से 12। वैसे यहाँ पे एमडी फैची जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं आपका। और नाजिम लिखते हैं थैंक यू सो मच, मेरा गाना आपने प्ले कर दिया है। एंड सर्वजीत जी लिखते हैं कार्यक्रम जबरदस्त चल रहा है। और नाहि जी लिखते हैं कि नाजिम जी की पसंद मुझे सुपर हिट लाजवाब लगी है, इसी बात पर जाकिर जी की पसंद को मैं प्ले करने वाला हूँ ये डिमांड। और ये क्या सुनना चाहते हैं कि मैं 16 बरस की ना भाई 18 बरस की होने को आई हूँ।

बिल्कुल आपको आज नंबर वाले गाने भेजने हैं। नंबर कोई भी नंबर हो सकता है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, नंबर वाले गाने भेज सकते हैं। और बहुत से नंबर वाले गाने हैं जो शायद आपको समझ में नहीं आ पा रहे हैं,

0: वेलकम बैक और फीडबैक मेरे पास आए हुए हैं। मीना कुमारी जी जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत वेलकम है मीना कुमारी जी। और बिल्कुल आप वहाँ पे सॉन्ग रिक्वेस्ट के माध्यम से आप मुझे गाने भेज सकती हैं। अभी तक तो आपका मुझे दिख नहीं रहा है, नहीं आया है शायद मेरे ख्याल से। और यहाँ पे नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है जी, बिल्कुल ऑसम सॉन्ग तो है। और सरवजी शेट्टी लिखते हैं बहुत ही शानदार खूबसूरत गाना है ये। और जाकिर खान जी लिखते हैं थैंक यू सो मच अमर सर जी मेरा डम मेरे डिमांड को प्ले करने के लिए। और आत्मराम जी लिखते हैं कि जाकिर मुरानी जी को कि वो शहजादी यानी कि सुमैया मुरानी जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, वो जिए हजारों साल। और अजय कुर्जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका। लिखते हैं कि हिट सॉन्ग सुनने को मिला है। मोहन हमारे लिखते हैं कि कार्यक्रम सुपर हिट चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, थैंक यू सो मच। नाही जी लिखते हैं कि बहुत ही ब्यूटीफुल चॉइस है जाकिर जी, थैंक यू सो मच आपका। और बीके पंजी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है धमाकेदार। अगला जो गाने की डिमांड आई है वो मैं बता दूं, अशोक देशमुख जी का ग्रुप है, उसमें हमारे अशोक देशमुख जी तो हैं ही, साथ साथ आत्माराम पाटिल जी भी हैं। और आत्माराम पाटिल जी के साथ साथ हैं हमारे सर्वेश भगत जी। ओके, तो आप सभी के पसंद पे सुनवा रहा हूँ ये वाला गाना, 18 बरस की तू होने क्यों आई, और कौन पूछेगा, जरा इनका ऑडियो भी सुन लेते हैं सर्वेश भगत जी का।
1: जय अमन सर जी, सुसंध है, नमस्कार।
0: नमस्ते जी,
1: हमारा फरमाइश का फिल्म है सुहाग, गाने का बोले 18 बरस की तू होने को आई रे। हॉट स्टार जो सबको दीवाना बना दे, सभी बड़े को प्रणाम, सभी छोटे को आशीर्वाद, हम सर्वेश भगत हजरत अंदा जिला वैशाली बिहार से बोले, हमारा परिवार सतीश भगत हेमंत भगत वर्ष किशोर भगत आनंद शेखर कुमार सुनी कुमार मनोनी कुमारी सूर्य कुमार मनोज जायसवाल अशोक देशमुख भाई जी आत्माराम पाटिल जी नंदलाल यादव जी अनिल मेहता जी आर जे अमन सर जी आपका सुंदरता की मूरत जी आर जे रत्ना जी आर जे वंशिका जी आर जे एम एस परमार जी आर सभी आर जे आर सभी भाई आर सभी बहन आर सभी
0: एंजॉय कीजिए आत्मा राम जी आप अशोक देशमुख जी।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं जिसमें कि सर्वजीत जी लिखते का शो दस मुझे ग्रुप की फरमाइश बहुत शानदार लगी है और आर्य सिंधी जी लिखते हैं कि सभी दोस्तों के मिलने के लिए फरमाइश बहुत ही शानदार रही है और मोहन अमन लिखते हैं कि ये वाला गाना तो मुझे बहुत पसंद आया है और ये क्या कहते हैं सुनते हैं।
1: आरजे अमन सर जी
0: जी जी
1: धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हमारा फरमाइश और दो भाई का मिली, तीनों भाई का मिली जुली फरमाइश आप शामिल कर दिए, थैंक यू, धन्यवाद सर।
0: वेलकम जी आपका भी। और अशोक देशमुख जी कहते हैं, सुन लेते हैं इनके भी।
2: धन्यवाद अमन सर, आपने हमारी फरमाइश का गीत सुनवाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा गीत सुनकर सभी दोस्तों ने फीडबैक दिए, उन सबको भी हम धन्यवाद देते हैं। मैं निम्बोरा महाराष्ट्र से अशोक देशमुख।
0: बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और अजय कुछ लिखते हैं, लाजवाब गाना सुनने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वीके पंत जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है वीके पंत जी। और एमडी फैज लिखते हैं जी एकदम झक्कास लाजवाब गाना, दिल से शुक्रिया धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए। और इसी बात पर और ये क्या कहते हैं जरा सुन लेते हैं।
1: अजय अमन सर जी धन्यवाद, लाख लाख धन्यवाद। हमारा फरमाइश
0: तो आपका तो यानी कि प्ले हो गया है ना, दोबारा फिर क्यों भेज दिए हैं। ज्योति जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम करते हैं ज्योति खटपटे जी। और अब अगला जो डिमांड है वो हमारे किन का है जरा देखता हूँ मैं। अभिषेक तिवारी जी कितू लड़की नंबर वन है जी, बिल्कुल लड़की नंबर वन है भाई, आठवां अजूबा है ना, नंबर वन तो होगा।

बिल्कुल तू लड़की नंबर वन है और लड़की नंबर वन है, वाह। ओके फिलहाल, लेकिन अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो हमारे गजानन जी का ग्रुप का वो गाना है। वैसे मैं फीडबैक बाद में लूंगा इसके बाद, लेकिन गाना मैं प्ले करूंगा। और वो उस लड़की को देखा तो ऐसा लगा, क्या बात है, जितनी तारीफ करें उतना ही कम है ना। तो एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। एंजॉय द ट्रैक गजानन ग्रुप।

बिल्कुल, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे आठवां अजूबा। ओहो, मीना कुमार जी लिखते हैं कि एक नंबर, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, और बहुत अच्छा गाना। और अच्छा ओके, और यहाँ पे लिखते हैं यानी कुंता बेनर्जी के, मैं भी जुड़ गई जी, बहुत बहुत वेलकम है कुंता बेनर्जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और नाजिम जी लिखते हैं सुपर हिट पसंद चल रहा है, थैंक यू सो मच। और सर्वजीत जी लिखते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग जी, बिल्कुल ब्यूटीफुल तो है। और यहाँ पे अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, गजानंद जी के गुरु की फरमाइश मुझे बहुत अच्छी लगी है, थैंक यू सो मच। आत्मा राम जी लिखते हैं कि अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम सभी दोस्तों का गाना को प्ले कर दिया है। और मोहन भाई लिखते हैं कि ग्रुप की फरमाइश बहुत शानदार लगी है, थैंक यू सो मच। नाही जी लिखते हैं कि सो स्वीट सॉन्ग है जी, बिल्कुल। और अशोक कुमार जी लिखते हैं कि शुभ संध्या अमर सर जी, आदरणीय मित्र गजानंद सुलकार जी और उनके दोस्तों की बेहतरीन पसंद सुनने को मिला, बहुत अच्छा लगा है। और जाकिर खान जी लिखते हैं कि दिल की हसरत जुबान पे आने लगी है, अच्छा लिखते हैं कि दिल की हसरत जुबान पे आने लगी और तुमको देखा और जिंदगी मुस्कुराने लगी, यह दोस्ती की इम्तिहान थी या मेरी दीवानगी, हर सूरत में तेरी सूरत नजर आने लगी। हाय क्या बात है भाई, सच में। ओके, तो इसी बात पर एक गाना मैं प्ले करने वाला हूँ जिसे भेजा है बिंदिया जी ने, और वो बहुत ही प्यारा पसंद है, जो मुझे मतलब बहुत पसंद है वो गाना, मतलब वो फिल्म एक रिश्ता का वो गाना है कि तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला, बस एक दिल है, एक दिल है, एक दिल है।

0: बिल्कुल तुझे प्यार से देखने वाला, तुझे अपना समझने वाला एक दिल ही तो है। बाबूलाल जी लिखते हैं कि हमारे दोस्त गजानंद जी के गुरु की फरमाइश मुझे बहुत पसंद आई है। सरवजीत जी लिखते हैं कि बहुत ही लाजवाब ये गाना चल रहा है। और जागीर खान जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत ये चॉइस है, थैंक यू सो मच बिंदिया जी की। और मोहन हमारे लिखते हैं कि सुपरहिट गाना बिंदिया जी का, थैंक यू सो मच बिंदिया जी। और बी के पंच जी लिखते हैं कि सुपरहिट फरमाइश चल रहा है। और मीना जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत गाना है। राहिल जी लिखते हैं कि वंडरफुल चॉइस है। और ये क्या कहते हैं भाई, इनकी सुन लेते हैं
1: जी। दिल की बात चली है तो दो लाइन अर्ज कर रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: उनकी चाहत में दिल मजबूर हो गया।
0: अच्छा।
1: दर्द देना उनका दस्तूर हो गया।
0: है, है, है।
1: कसूर उनका नहीं हमारा ही था, हमने चाहा ही इतना कि उनको गरूर हो गया।
0: ओहो।
1: गाना बहुत जोरदार था। MD फैज आलम, मोहिउद्दीन नगर
0: जी। इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो डिमांड आई है अशोक पाल जी की। अशोक पाल जी, सुनवा रहा हूँ आपका ये प्यारा सा पसंद। और कह दो एक बार सजना, बहुत प्यारा नगमा है।

वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं और यहाँ पे मोहन वाले लिखते हैं कि अशोक पाल जी के पसंद मुझे बहुत पसंद आ रही है और कुंता बनर्जी जी लिखते हैं कि ब्यूटीफुल फरमाइश चल रही है और यहाँ पे नाहिद जी लिखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत पसंद है। थैंक यू सो मच अशोक पाल जी। इसी बात पर जो अगला जो पसंद है वो मैं सुनाना चाहूँगा, ये सुनीता गोप जी के पसंद है, वो मुझे बहुत पसंद है। बता मुझको सनम मेरे, तुझे मैं कैसा लगता हूँ, बताओ ना कैसा लगता हूँ।

वेलकम बैक, एक से लेकर दस तक नंबर वन है तू, क्योंकि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। वैसे मैं बता दूं, अगला मैं गाना प्ले करने वाला हूं मनीषा शर्मा जी का, लेकिन फीडबैक आया हुआ है, मैं बाद में शामिल करूंगा फीडबैक, लेकिन मनीषा जी का गाना प्ले होना अभी जरूरी है, क्योंकि गाना ऐसा ही इतना प्यारा है कि मैं क्या बताऊं। और गाना है इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा, वो भी न्यू वर्जन में सुनना चाहती है, तो सुनवा रहा हूँ मनीषा शर्मा जी। एंजॉय कीजिए अपने इस

बिल्कुल इतना ना मुझसे के प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा बहुत ही प्यारा गाना सुनने को मिला है, लेकिन इसका जो ओल्ड वर्जन है वो भी बहुत ही प्यारा लगता है, तो क्यों ना थोड़ा सा इसका ओल्ड वर्जन भी मैं थोड़ा सा आप सबको सुनवाता हूँ, थोड़ा सा सुनवाता हूँ थोड़ा सा।

0: और यहाँ पे असलम राणा जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग, सभी एक से बढ़कर एक, और अभी जो जो ये प्ले हुआ था एक से लेकर दस तक नंबर वन है, तो ये भी बहुत अच्छा लगा है। और सुनीता गोपी लिखते हैं अमन जी बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना सुनवाने के लिए, और MD5 जी लिखते हैं वाह जबरदस्त मजा आ गया गाना सुन के, और मोहन भाई लिखते हैं कि बहुत ही सुपरहिट अमेजिंग पसंद था, थैंक यू सो मच। मनीषा जी लिखते हैं बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी आपने मेरा गाना प्ले कर दिया है। साथ ही साथ सर्वजीत जी लिखते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड, ये तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में मुझे बहुत पसंद आया, और ये क्या कहते हैं
1: असली आवाज तो असली है जी, उसका कोई मुकाबला थोड़ी है। ये न्यू वर्जन तो बस अपने जो जिन्हें नए सुनने पसंद है उनके लिए बनाओ ये
0: जी।
1: धन्यवाद,
0: ओके जी। और यहाँ पे आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि ओरिजिनल सॉन्ग तो जी बिल्कुल ओरिजिनल होता है, मजा आ गया सुन के। वैसे अगला गाना मैं जो यानी प्ले करने वाला हूँ वो भेजी है RJ सोनी जी, और सुनना चाहती हैं लाखों में हजारों में है मेरा महबूब। अच्छा जी ये बात है, सुनवा दे।

0: बिल्कुल लाखों में हजारों में है मेरा महबूब, सिर्फ मेरा महबूब, सिर्फ और सिर्फ मेरा महबूब। वैसे मैं अगला जो गाना डिमांड मेरे पास आया हुआ है वो बहुत ही प्यारा है, जिसे अमीना खान जी सुनना चाहती हैं। और अमीना खान जी बिल्कुल मैं हूँ वो हीरो, और लेकिन मैं भी जीरो भी हूँ। अब मैं क्या हूँ अब तो ये आप ही बताएंगी, लेकिन आपका जब मैं गाना प्ले करूँगा तब। अमीना खान जी आपका गाना मैंने प्ले कर दिया है, एंजॉय द ट्रेक, मैं हूँ हीरो।
1: दोस्तों आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए कौन है हीरो और कौन है

करता नहीं कोई मुझे सलाम, लेता नहीं कोई मेरा नाम, दस कम

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं, और यहाँ पे आरिफ सिंधी जी लिखते हैं आरजे सोनी जी के पसंद, मुझे बहुत पसंद आई है, थैंक यू सो मच आरजे सोनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मीना जी लिखते हैं कि थैंक यू सो मच कि मैं भी कामयाब हो गई हूँ अपना गाना भेजने में। जी जी बिल्कुल, और अभी जो सॉन्ग चल रहा है वो मुझे बहुत

यार है और वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। ओके और ओके जी, और यहाँ पे एम्पलीफाई जी लिखते हैं कि जी ये गाना भी नंबर वन है, दिल से शुक्रिया इस गाने के लिए। और एमडी नाजिम जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और अमीना खान जी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम आरजे अमन जी। और लास्ट में झक्कास है, अच्छा ओके

0: हीरो।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं।
2: वेलकम बैक। और मेरे पास और भी यहाँ पे ये लिखते कि थैंक यू सो मच आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। कुंता जी लिखते हैं कि अमीना जी की पसंद मुझे बहुत ही पसंद आई है। और मोहन नवाज लिखते हैं कि सुपर प्रोग्राम चल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस गाने के लिए भी। वैसे अगला मैं गाना प्ले करने वाला हूँ और ये गाना लेके आए हैं रोहित कुमार जी, अमिताभ जी का सुनना चाहते हैं, अमर अकबर एंथोनी का माई नेम इज एंथोनी गोंजालवेज। एंजॉय द शो।
3: You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babasate.
4: What?
5: My name is Anthony Gonsalves.
4: Gonsalves?
5: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: और आरजे सोनी जी की यानी माता जी सुन रही हैं, यानी मम्मी जी सुन रही हैं, उनको उनको मेरा प्रणाम है।
1: By the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.

0: जन्नत वाली। अरे जिसमें याद आए जब चाहे चली आए, जिसमें याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 4।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, वैसे मेरे पास बहुत सारे फीडबैक भी आए हुए हैं, शामिल करता हूँ मैं। और यहाँ पे जुड़ चुका नाम है उनका, यानी कमर शंकर पांडे जी, बहुत बहुत वेलकम है आपका भी। और सर्वेश भगत जी क्या कहते हैं, सुनते हैं।
2: जय अमर सर जी, सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को भी धन्यवाद देते हैं जी।
1: ओके, थैंक यू, वेलकम जी आपका भी। और अजय कुछ लिखते हैं कि आप तो हीरो हो गए जीरो जी। अच्छा जी। और यहाँ पे नाहिद जी लिखते हैं सुपर हिट लाजवाब फरमाइश रोहित जी, थैंक यू सो मच जी। और मोहन वाले जी लिखते हैं कि सुपर हिट पसंद सुनने को मिला, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि रोहित कुमार जी की पसंद मुझे बहुत पसंद आई है। और अमीना खान जी लिखते हैं कि आज के प्रोग्राम 4K एंड 6K लगाएंगे जी, बिल्कुल लगाते रहिए, थैंक यू सो मच अच्छे फीडबैक के लिए, और आज तो मजा आ गया सुन के। ओके, और अगला जो मैं गाना प्ले करने वाला हूँ वो शिवम जी का, और चूंकि गली वाली बात हो रही है ना, तो गली वाला में मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है, एक मेरे गली की लड़की। ओहो, काश मेरे भी कोई गली में

0: बिल्कुल, एक मेरी गली की लड़की चुपके से दिल ले गई और फीडबैक भी आ गया। क्या कहते हैं सुनते हैं भाई?
1: अमन सर जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं कमल शंकर पांडे।
0: आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है, बहुत ज्यादा स्लो आ रही है। अमन और अमीना खान जी लिखते हैं कि अच्छा ओके, आपने शट आउट भेजा है जी। मैं बताता हूँ, शट आउट में अमीना खान जी लिखते हैं कि ये सुमैया मुरानी जी को बहुत बहुत आज जन्मदिन की मुबारकबाद हो और आपको बहुत सारी खुशियाँ नसीब हो। एमडी फैज जी भी उन्हें बहुत बहुत बधाइयाँ दिए हैं, थैंक यू सो मच। और नाजिम जी लिखते हैं कि लाजवाब सॉन्ग चल रहा है। और ये क्या कहते हैं फैज जी?
2: जी बिल्कुल खूबसूरत गाना था, एकदम चुपके से दिल ले गई। बहुत बहुत धन्यवाद एमडी फैज आलम मोहिउद्दीन नगर।
0: ओके धन्यवाद देते हैं आपको। और सर्वजीत जी लिखते हैं कि यह गीत मैं पहली बार सुन रहा हूँ, बहुत बेहतरीन लगा। मनसा जी क्या अच्छा आपका आया हुआ है वही ना 100 साल पहले वाला। और बाबूलाल जी लिखते हैं कि शिवम जी की फसल बहुत खूबसूरत लगी है। और रविंद्र गोरखपुर जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है रविंद्र गोरखपुरी जी। अगला जो डिमांड है वो मैं प्ले करने वाला हूँ, यानी मीना कुमारी जी का। मीना जी सुनवा रहा हूँ आपके पसंद का गाने को, एक नंबर की लड़की। अच्छा तो सुनवा दिया, एंजॉय कीजिए।

0: और एमडी फैज जी आप अपने गाने का लिंक मुझे भेजे क्योंकि वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है और ये उनका फीडबैक मैं शामिल कर लेता हूँ।
1: वाह वाह क्या गाना सुनाया है, एक नंबर की लड़की एक नंबर का लड़का, एकदम जबरदस्त गाना, डांसिंग सॉन्ग था, मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद एमडी फैज आलम मोहिउद्दीन नगर।
0: ओके जी तो अपना लिंक भी भेज दीजिए जो आप गाने के वहाँ पे भेजे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और कुंता जी लिखते हैं कि सभी गाने सुपरहिट चल रहे हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पे मीना कुमारी जी लिखते हैं थैंक यू सो मच आपने मेरा गाना प्ले किया, दिल से धन्यवाद। इसी बात पर अगला जो गाना मुझे और डिमांड आया हुआ है संतोष गौंड जी का, संतोष गौंड जी सुना रहा हूँ आपके पसंद में, वो कर गई मोहल्ले में हल्ला, छोकरिया 15 साल की, ओहो ये भी बात है, सुनवाते हैं।

और जुड़ी है हमसे यहाँ पे इन प्रियंका जी, बहुत बहुत वेलकम है प्रियंका जी आपका। और संतोष गौंड जी लिखते हैं अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा गाना सुनाने के लिए। और आर्य सिंधी जी लिखते हैं अमन सर जी,

बिल्कुल कुछ उम्र ही ऐसी होती है। और यहाँ पे एमडी देंगे आपको से बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मेरा गाना प्ले करने के लिए। और कुंता बेनी जी लिखते बहुत ही खूबसूरत ये नगमा चल रहा है। और यानी कि प्रियंका जी लिखते हैं कि एक नंबर सॉन्ग चल रहा है। ओके, और इसी बात पर जो अगला मैं गाना प्ले करने वाला हूँ वो डिमांड आई है यहाँ संध्या पटेल जी का। और संध्या पटेल जी एंजॉय कीजिए अपने ट्रैक को, क्योंकि तू है 16-17 साल, उस पर लड़की है कमाल, तुझ पर दिल आ गया।

0: और इनका फीडबैक भी आ गया, शामिल करता हूँ।
1: थैंक यू सर मेरा गाना प्ले करने के लिए। और आज ना नंबर वाले गाने सुन के ना मजा ही आ रहा है, एक से एक गाने चल रहे हैं।
0: ओके धन्यवाद आपका संध्या पटेल जी। और रविंदर गोरखपुर जी लिखते हैं मस्ती वाले गाने बहुत अच्छे लग रहे हैं। और अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि एक और यानी कि 15, 17, 18 इस संग पर बहुत सारे गाने अनसुने मिल रहे हैं और कार्यक्रम शानदार चल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है जी, धन्यवाद देते हैं आपको। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि औसम सॉन्ग, इसी बात पे अनिशा सिंधी जी का गाना मैं प्ले करने वाला हूँ, एक आंख मारूं तो क्या हो जाए।

0: आपने ट्यून किया है रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना और संडे स्पेशल में सुन रहे हैं स्टार मूडी चॉइस आरजी अमन के साथ। कल शाम 6 बजे स्टार ओल्ड इज गोल्ड स्पेशल में सुनिए 1960 से लेकर 1985 तक के गाने। आप मैसेज या वॉइस रिकॉर्डिंग फरमाइश कर सकते हैं सिर्फ रेडियो हॉटस्टार की ऐप से। तो अभी डाउनलोड कीजिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना गूगल प्ले स्टोर से और सुनते रहिए रेडियो हॉटस्टार या रेडियो गाना, जो बना दे दीवाना। बजाते रहो दिल से।
1: ओके जी, वेलकम बैक है आपका। और अमीना खान जी लिखते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू, एक मोहब्बत और एक इंतजार, एक चाहत एक दाग, एक गुस्सा एक प्यार, और एक हम और एक तुम्हारा प्यार। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लिखा आपने अमीना खान जी। और साथ ही साथ यहाँ पे प्रियंका जी लिखती हैं कि अच्छा ओके बिल्कुल, मैं आपके गाने को प्ले करने वाला हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। और अनिशा सिंधी जी लिखते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया अमन जी, आपने मेरा गाना प्ले कर दिया। साथ ही साथ यहाँ सरवजीत शेट्टी जी लिखते हैं कि प्रोग्राम शानदार चल रहा है, सभी गाने एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बाबूलाल जी लिखते हैं कि विनोद जी की पसंद मुझे बहुत प्यारी लगी है। और मोहन वाले जी लिखते हैं कि बहुत ही अच्छा गाना ये लगा मुझे, बहुत बहुत ही प्यारा लगा है, धन्यवाद देते हैं। कुंदा जी लिखते हैं कि एक से बढ़कर एक सभी गाने चल रहे हैं, सभी के लिए थैंक यू सो मच। और इस प्रसाद जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है आपका। और ओके जी, और यहाँ पे और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं कि बेहतरीन फरमाइश है। और साथ ही साथ नाजिम जी लिखते हैं कि

ऑसम सॉन्ग चल रहा है एमडी फैजी, तो वह क्या बात है, आज तो मजा ही आ गया सभी गाने एक से बढ़कर एक सुन सुन के। वैसे अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ बीके पंत जी का दो दुनी चार, अब दो दुनी चार सुनने के बाद ही मालूम चलेगा।

ओके जी, और मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं बहुत सारे, लेकिन मैं शामिल करूंगा थोड़ी देर के बाद। अच्छा चलिए शामिल करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे नाइज लिखते हैं कि आज के सभी गाने सभी गाने एक से बढ़कर एक चल रहे हैं, और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि लाजवाब पसंद है, और बाबूलाल जी लिखते हैं कि ये बीके पंजी का गाना मुझे बहुत ही पसंद आया है। अशोक देशमुख जी लिखते हैं कि दो दुनी चार हुआ रे ये प्यार हुआ रे, ये गाना मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ बीके पंजी को। और बीके पंजी लिखते हैं कि सर जी थैंक यू सो मच, आपने मेरी पसंद का गाना शामिल किया प्रोग्राम में। अमीना खान जी लिखते हैं कि एक नंबर पसंद है जी बिल्कुल, और मैं भी फर्स्ट टाइम सुना हूँ। नाजिम जी लिखते हैं कि वाह सुपर पसंद लगा ही है। अगली पसंद असलम राणा जी का मैं सुनवा रहा हूँ। असलम राणा जी एंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं, शामिल करता हूँ अमीना खान जी। थे ये हंस रही है, लगभग 20 रुपया वाला गाना ये करेंगे, मैं पहली बार सुन रही हूँ। भाई दे दो भाई, जितने भी 20 रुपया लिया मैं दे दो भाई 20 रुपया। और ये फीडबैक
1: अरजय अमन सर जी, असलम राना जी अपने गाने में शामिल किए हैं
0: जी,
1: और सभी भाई और सभी बहन अपने अपने गाने में शामिल करते हैं, सभी को धन्यवाद देते हैं।
0: ओके जी, आपका भी धन्यवाद है। और कुंता जी लेते हैं, असलम राना जी के फरमाई सुपर लाजवाब, सबसे मजा गया गाने 20 रुपया के लिए। ये तो भाई 20 रुपये के लिए पीछे ही एकदम इन पड़ गए। अगली पसंद में सुना रहा हूँ, यानी प्रियंका जी और सुनना चाहती है ये कन्याकुमारी है, सुना दिया।

0: अब बारी आ रहे हैं यानी प्रियंका जी के।
1: दरोगा जी
0: बोलो।
1: दरोगा जी
0: बोलो ना।

एक मोड़ आया, मैं उठ दिल छोड़ा है, वैसे फीडबैक भी आ गया है। एमडी असलम राणा लिखते हैं कि अमन भाईजान बहुत बहुत शुक्रिया मेरा गीत चलाने के लिए, और दोस्तों का भी धन्यवाद देते हैं फीडबैक देने के लिए। और नाहिद जी लिखते हैं कि वाह आज के अमेजिंग पसंद है, बहुत अच्छा लग रहा है। आरिफ सिंधी जी लिखते हैं कि आज का प्रोग्राम बहुत लाजवाब लगा, एक से बढ़कर गाने सुनने को मिले हैं। और प्रमोद कुमार लिखते हैं कि सुपर फरमाइश। इसी बात पर नाहिद जी का गाना मैं प्ले करना चाहता हूँ, और नाहिद जी ने भोजपुरी गाने की डिमांड किया है, इंजॉय द ट्रैक।

और फीडबैक आया हुआ है मेरे पास। नाहिद जी लिखते हैं थैंक यू सो मच मेरा गाना प्ले करने के लिए। कुंता जी लिखते हैं कि ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगा, सच में मजा आ गया, थैंक यू सो मच नाहिद जी। अशोक पाल लिखते हैं कि लाजवाब लल्लन टॉप गाना अच्छा। और यानी कि प्रमोद कुमार लिखते हैं कि नाहिद जी की फरमाइश मुझे बहुत अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। और विजय राजी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत वेलकम है। और लिखते हैं कि हम भी भोजपुरी गाने के दीवाने हैं अच्छा। अमीना खान जी लिखते हैं कि महाराष्ट्र में अगर नींबू मिर्ची लगाए तो लोग डर के भाग जाएंगे, बोलेंगे जादू टूटने वाली है अच्छा ये बात है। और रविंद्र गोरखपुरी जी लिखते हैं कि ये गोद ये गीत मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ओके थैंक यू सो मच। इसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ उसकी डिमांड हमारे ज्योति खटवड़ जी ने किया है, तो ज्योति खटवड़ जी एंजॉय द

0: लड़की शहर में नहीं हो, सुंदर हो, क्यूट लग रही हो,
1: अच्छा
0: वैसे सिंगल हूँ, दिल का भी अच्छा, क्या हस्बैंड ढूंढ रही हो?
1: ओहो
2: कुछ भी कर...

0: पूरा।
1: इसी बात पर मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे, और यहाँ पे नाहिद जी लिखते हैं वेरी नाइस फरमाइश है, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे रवि महाराज जी लिखते हैं सुपर सॉन्ग, लाजवाब सॉन्ग है, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और यहाँ पे आत्माराम पाटिल जी क्या कहते हैं सुनते हैं।
2: बहुत ही सुपर प्रोग्राम,
1: थैंक यू सो मच। बोलिए आगे, कुछ नहीं बोल रहे, कोई बात नहीं है। और यहाँ पे अमीना खान जी लिखते हैं कि डम डम डिगा डिगा आवाज तू, मतलब मैं नहीं समझा, आवाज तो तू कीजिए, मतलब मैं नहीं समझा, मतलब आप क्या करना चाहती हैं। और जितेंद्र जी लिखते हैं कि मैं भी जुड़ गया हूँ, बहुत बहुत वेलकम है सर जी आपका भी। और रवीना गोरखपुरी जी लिखते हैं कि एक्सीलेंट सॉन्ग, मजा आ गया इस गाने को सुनकर। और प्रमोद जी लिखते हैं कि ये शाहिद जी की पसंद मुझे बहुत ही बेहतरीन लगी है, धन्यवाद देते हैं उनको। और ज्योति जी लिखते हैं कि थैंक यू अमन जी, आपने मेरा गाना बजा दिया है। और हाँ, फिर से दोबारा, अगर आप आज बनी है सॉन्ग के विनर, आप भेज सकते हैं कोई भी गाना जो सुनना चाहती हैं आप। और यहाँ पे नाजिम जी लिखते हैं कि नाहिद जी का पसंद मुझे बहुत ही पसंद है, इसी बात पर मैं सुनवाना चाहूंगा आपको रितु जी की पसंद, सात समुद्र पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, बिल्कुल एंजॉय द ट्रैक।

वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आने लगे हैं, लेकिन मैं फीडबैक को बाद में शामिल करूंगा। अभी हमारे साथ जुड़ी हैं यहाँ पे, नाम है उनका नियति जी। तो बहुत बहुत वेलकम है नियति जी। और लिखती है कि मैं गाना सुनना चाहती हूँ, तू मेरा हीरो नंबर वन। ये लिखती है कि आपसे एक सवाल भी है कि आप भी किसी के हीरो हैं? अरे काश मैं भी किसी का हीरो होता, हाय रे मेरी फूटी किस्मत। कोई बात नहीं, गाने एंजॉय कीजिए और एंजॉय द ट्रैक। सोना कितना सोना है।

वेलकम बैक। और मेरे पास फीडबैक आए हुए हैं लेकिन मैं बाद में शामिल करूंगा। और अगला गाना में जो मैं प्ले करने वाला हूँ वो महक जी के पसंद है, और महक जी सुनना चाहती है पहली बार दिल यूं बेकरार हुआ है, ऐसा लगता है जैसे प्यार हुआ है।

बिल्कुल, ये भी गाना बहुत लाजवाब था। और यहाँ पे कुंता जी लिखते हैं कि ऑसम सॉन्ग, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। एंड यहाँ पे हमें सरफराज जी लिखते हैं कि हमारे हॉट स्टार के सभी सभी श्रोताओं के हीरो आप ही हैं भाईजान, अच्छा थैंक यू सो मच। और यहाँ पे रविंद्र गोरखपुरी जी लिखते हैं कि वाह ये गाना मुझे बहुत पसंद है, ब्यूटीफुल सॉन्ग है, थैंक यू सो मच। और आत्मराम जी लिखते हैं कि ज्योति खटवड़ जी की पसंद मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू सो मच। अजय भगत जी लिखते हैं कि अमन जी आपकी आवाज बहुत कम हो गया, सच में का आवाज नहीं जा रही है मेरी। और महेश जी लिखते हैं कि शानदार फरमाइश है, बहुत ही बेहतरीन लगा, पहली बार दिल यूं बेकरार हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे प्यार हुआ है। और अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ वो डिमांड आई है हमारे डिम्पी जी का, तो डिम्पी जी गाना मैंने प्ले कर दिया, एंजॉय कीजिए।

और खूबसूरत फरमाइश से पूजा भास्कर जी आपकी पसंद। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अगला गाना जो मैं प्ले करने वाला हूँ उसकी डिमांड हमारे दोस्त इन प्रमोद कुमार जी ने भेजा हुआ है। एक मुलाकात जरूरी है, अब वो कौन सी मुलाकात है तो इंजॉय कीजिए, एक मुलाकात जरूरी है।

और ये गाना तो शायद हमें लग रहा है कि एआई वाला गाना है, और एआई मतलब एआई वाला गाना जो हर मतलब यानी कि सभी गाने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ वो सुनना चाहते हैं हमारे क्या नाम है इनका, मोहम्मद जलील जी। मोहम्मद जलील जी सुनना चाहते हैं कि सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा यार। इंजॉय द ट्रैक।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक आए हुए हैं, शामिल करता हूँ।
1: हेलो अमन सर जी, गिम्पी जी का सॉन्ग एक मैं और एक तू, वंस मोर प्लीज सर।
0: अच्छा,
1: शुक्रिया। मैं आत्माराम पाटिल
0: एक बार फिर से सुनना चाहेंगे। ओ माय गॉड, अब तो बहुत गाना को डिलीट कर दिया बहुत पहले। और नहीं चीनी देंगे, वाह क्या बात है, क्या पसंद, झकास पसंद के लिए थैंक यू सो मच। वाह जनाब, दिल खुश कर दिया इस गाने ने, सच में मजा आ गया। कुंता जी देंगे सुपर फरमाइश है। और यहाँ पे जुड़ चुकी है काजल झक्का जी बहुत देर बाद, बहुत बहुत वेलकम है। अमीना खान जी लिखते हैं कि मेरा लकी डे आज है जी, और आज मैं सुनना चाहूंगी। ओके जी, आपके गाने को ही मैं प्ले करता हूँ। अमीना खान जी ने गाना भेज दिया है, और इनके बाद ज्योति जी का

अमीना खान जी, सच में आपने मुझे डांस करने पर मजबूर कर दिया। मजा आ गया आपके गाने को सुनकर सच में। और काजल से काज लिखते हैं, मैं तो 6 बैस ही सुनी हूँ। अच्छा सच में। और कुंता जी लिखते हैं कि बहुत खूबसूरत फरमाइश है अमीना जी, थैंक यू सो मच, इतना प्यारा खूबसूरत गाना सुनवाया। और इसी बात पर अगला जो मैं डिमांड प्ले करने वाला हूँ वो ज्योति खटवड़ी जी, जो आज की विनर बनी हुई है, सॉन्ग विनर।

0: वेलकम बैक। और मेरे पास वैसे फीडबैक बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा फीडबैक को साइड में रखते हुए अगला गाना मैं जल्द से प्ले करने वाला हूँ। और अभी 11 नहीं बजे हैं, तो ये सुनवाना चाहती हैं कुंता बेनी जी सभी दोस्तों के लिए। सुनवा दिया
1: लेकिन

वेलकम बैक। और उसी बात पर अगला जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ उसकी डिमांड हमारे आरिफ सिंधी जी ने किया हुआ है, ऐ काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता, इश्क में तो तकलीफ ना होती, जीने में इंजॉय कीजिए।

तो इसी गाने के साथ आप मुझे दीजिए प्रोग्राम से निकलने की इजाजत। मिलते हैं फिर कल शाम 6:30 बजे, तब तक लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब खैर, बाय बाय, अपना ख्याल जरूर रखें।

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 12 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 12 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 1 बज रहा है। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 1 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 2 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 2 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

0: यह कमबख्त याद ही तो तबाह कर देती है डॉक्टर साहब। उस गली से गुजर हुआ नहीं कि पलटना मुश्किल हो जाता।
1: फिर तो जरूर कोई ऐसी याद होगी जिसका वास्ता आपके दिल से होगा।

सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी रात के 3 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 3 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.

आप सुन रहे हैं रेडियो गाना और इंडिया में अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। रेडियो गाना बजाते रहो दिल से। You're listening to Radio Gaana and it's 4 AM in India. Keep listening to Radio Gaana. Thank you.